0: solo.
1: Que

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडे बालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: इस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
5: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
7: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

कहते हैं जैसे जैसे ये मौसम बदलता है, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे वैसे इंसान को भी अपने अंदर परिवर्तन लेकर आते रहने चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आओगे, चेंज नहीं लेकर आओगे, तब तक लाइफ जो है ना, जो आप लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा नहीं मेरे दोस्त। तो इसलिए जब तक आप समय समय पर खुद को अपडेट नहीं करोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, अपनी चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा मेरे भाई। वेलकम बैक है सुप्रभात, नमस्कारम। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, एक और नई ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक प्यारी सी सुबह है। 24 जुलाई यानी 24 जुलाई 2026 फ्राइडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वक्त हुआ है स्टूडियो क्लॉक में 8:22। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो यानी कि FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद के साथ। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग और अब से लेकर 10 बजे तक रहेंगे आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां करेंगे आपसे ढेर सारी बात चीत। कुछ आप करेंगे, कुछ हम आपसे करेंगे और ये मिलजुल के इस कार्यक्रम को और भी स्पेशल बनाएंगे। बाकी बहुत सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, आप सभी का मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक पहुँचा दिए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आने से पहले इतने सुंदर मैसेज आ जाते हैं। श्रोताओं, आज का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज के दिन क्या कुछ खास है, क्या कुछ स्पेशल है, ये सब कुछ आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। हाँ जी, और आपको जो है मेरा साथ निभाते रहना होगा। फिलहाल मैं निभाऊंगा अच्छे गानों से आपका साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक जिसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मैं और आप। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज की इस कड़ी में शामिल होना चाहते हैं, तो जुड़िए ना 9837896896। ये स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की सुबह एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए रेडियो सेट पे मैंने निकाल दिया है, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग, आप हैं आनंद के साथ। उदित नारायण, श्रेया घोषाल की बेहतरीन आवाजों में ये बेहतरीन ट्रैक आज की सुबह आपकी मॉर्निंग को और भी सुपर डुपर अमेजिंग बनाने के लिए निकल गया है हमारे स्टेशन से आपकी रेडियो सेट पर। चलिए इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी मॉर्निंग की करते हैं बेहतरीन शुरुआत। आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम है, लौट कर आता हूँ कुछ स्पेशल बातों के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: क्या बात है यार, बेहतरीन ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, बैक टू बैक गाने, और उसके बाद मेरी एंट्री हो गई यहाँ पर, जहाँ आपसे करेंगे हम ढेर सारी बात आज की सुबह।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा, मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: चलिए जी, अब काम की बात हो जाए।

श्रोताओं, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बताते ही हैं, लेकिन मुरादाबाद में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना देसी रेडियो। एंड ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन क्यों खास है, 24 जुलाई को हम क्या क्या स्पेशल चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, और हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है, हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही आज की तारीख है। आपको बता दें एस विजय लक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी सन 2000 में आज ही के दिन। और आपको बता दें अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित जो है वो किया गया था आज ही के दिन। एंड श्रोताओं आपको बताते चलें सन 1999 में जो है ये कोलंबिया अंतरिक्ष में इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित जो है वो किया गया। एंड इसके अलावा

सन 2004 में इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा कॉल सेंटर शुरू करने का जो निर्णय था वो आज ही के दिन लिया था 24 जुलाई को। हां जी श्रोताओं, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन जो है जन्मदिन होता है एक बहुत ही भारतीय प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार जी का। 1937 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। एंड इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है एक और खास नाम जो इस दिन को और भी खास बना देता है। हाँ जी श्रोताओं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। आज का जो दिन है वो इसलिए भी खास है कि 1943 में जीसी मल्होत्रा जो भारत के भूतपूर्व लोकसभा में महासचिव रहे उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ श्रोताओं। इसके अलावा रामपाल उपाध्याय जो 12वीं लोकसभा के सदस्य थे 1935 में उनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। एंड नजीश प्रतापगढ़ी उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर वे कवि रहे 1924 में इनका भी जन्म हुआ श्रोताओं। और आज के दिन पन्नालाल घोष जो भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे सन 1911 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने आपके साथ फटाफट से शेयर कर दी हैं। इसके अलावा आज बहुत ही खास और स्पेशल दिवस भी मनाए जाते हैं जिस पर डेफिनेटली चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी देर में। 8:49 हो रहे हैं, ढेर सारे लिसनर्स जुड़े हैं हमारे पास, गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है यहाँ पर। प्रणव का लिखते हैं, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ब्रो, कैसे हालचाल है। आई एम वेरी गुड। एक मैसेज और आ गया है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कड़क चाय के साथ कड़क आरजी आनंद की बातें सुन के बहुत मजा आता है। हाय कैसे हो, माय नेम इज शिखा, गुड मॉर्निंग, मानसरोवर से मैसेज कर रही हूँ। आनंद क्या हालचाल है आपके। आई एम एब्सोल्युटली गुड मैम एंड आई होप आप भी बढ़िया होंगी। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया, आनंद सुबह सुबह आपकी आवाज सुन के अच्छा लग रहा है, आपको जुकाम हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी बहुत भयंकर वाला हुआ है, तो प्लीज आप जरा अपना खास ख्याल रखिए। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है सहारनपुर से, जोन रोजी पलविलीस मेरे रेगुलर लिसनर लिखते हैं, आनंद हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हालचाल हैं, दिलों में रहना सिखाती है। और ये लिखते हैं, वो है हमारी एक कप चाय जो जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं हम सब के साथ रहती है। बिल्कुल जी सही बात है, चाय बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत कुछ सिखाती भी है। आगे लिखते हैं कि देख कर हैरान हूँ मैं रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। वाह वाह वाह क्या बात है, कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आप कर चुके हैं आज की सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और संदेश मेरे पास पहुंच रहा है, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हालचाल है, ये जो आप गाने लेकर आते हो 90s वगैरह के, इसको सुनकर ना हम तो पूरी तरह फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। आय हाय क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, इतनी मोहब्बत के लिए मैं आपका दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं बढ़िया हूं जी। ये इन्होंने अपना नाम बताया है, प्रीतम गुड मॉर्निंग, ये लिखते हैं मुझे, आनंद जी मैं इस वक्त हनुमान मूर्ति में जो हूं इधर की रोड पर हूं और आपको सुन रहा हूं। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने अमेजिंग अमेजिंग मैसेजेस आप करते हो ना, मजा आ जाता है कसम से बता रहे हैं, इतने अच्छे मैसेजेस जो है सुनकर देखकर पढ़कर मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और संदेश इस बीच पहुंचा है, हाय हेलो आनंद, मौसम बहुत औसम है आज, हवाएं काफी अच्छी चल रही है। बिल्कुल मैं बताऊंगा, हवाएं जो है काफी तेज रफ्तार से जो है आज चलने वाली है, तो आज की जो सुबह है आपकी वो काफी ब्यूटीफुल रहने वाली है। चलो एक काम करते हैं, बहुत देर से बातें हो रही है, अच्छा से गाना सुनते हैं और इस अच्छे से गाने के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे और भी ढेर सारी बात करूंगा ना स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज और क्या स्पेशल है ये सब कुछ आपको बताऊंगा, मुरादाबाद में क्या स्पेशल चल रहा है उस पे भी हम डेफिनेटली बात करेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप आनंद के साथ हैं।

हेलो आनंद, कैसे हाल चाल है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सुबह सुबह यार मेरे मैसेज को भी पढ़ लिया कर। तू बहुत लेट मेरे मैसेज को पढ़ता है, फिर मैं ऑफिस निकल जाती हूँ तो मैं मैसेज नहीं सुन पाती हूँ तेरा। तो अपनी आवाज़ में जरा हमारा भी ये प्यारा सा मैसेज पढ़ दे यार। अरे वाह, थैंक यू सो मच पल्लवी ये मैसेज करने के लिए। चलो एक गाना निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, इसी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग उदित साहब की आवाज़, कविता कृष्णमूर्ति जी देंगी साथ। जी भाई साहब, शुरू हो जाइए।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। वेलकम बैक है वंस अगेन, आप आनंद के साथ हैं और श्रोताओं आपको दिल से थैंक यू करना चाहते हैं इतने प्यारे प्यारे मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ भी निकल रहे हैं आपको आज के दिन की ढेरों मंगल शुभकामनाएं। अगर आप कुछ पहुँचाना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम तक शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप डेफिनेटली हम तक पहुँचा सकते हैं अपनी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको लगता है कि ये रेडियो पे डेफिनेटली जानी चाहिए। सो आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे डेफिनेटली पहुँचा सकते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपको जो भी लगता है यार आनंद रेडियो पे ये चीज़ डेफिनेटली पता होनी चाहिए हमारे लिसनर को, हमारे मुरादाबादीज को, तो आप मुझे 100% मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% उसका रिजल्ट दूंगा, डोंट वरी, मैं उसको ऑन एयर पढ़ूंगा। एंड अभी मेरे पास ढेर सारे संदेश आ रहे हैं, आप लोग अपनी वॉइस नोट भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आज की सुबह हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। स्टेशन क्लॉक में 9 बजने को है श्रोताओं, और अभी लौट कर आते हैं तो उसके बाद बताते हैं ढेर सारी चीज़ें जो हैं आजकल चल रही हैं हमारे आसपास वाले एरिया में। आपको भी पता है कितनी सारी चीज़ें जो है हम जैसे सोशल मीडिया खोल रहे हैं हमें तुरंत देखने को मिल जा रही हैं नई नई चीज़ें, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी बात करूंगा अभी थोड़ी सी देर में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6। अभी मीटा एक नया फीचर लेकर आया है जिसका नाम है सेल्फ होम पेरेंट्स। हाँ जी, ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये क्या है इसके बारे में डेफिनेटली आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड एक बहुत ही कमाल की रिसर्च हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आपके साथ, और एक और बहुत ही अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करनी है। तो आप ट्यून इन रहिए मेरे साथ 89.6 पे, सुनते रहिए आरजे आनंद को। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया एक मैसेज आ गया है, सपने वहीं सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाती है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आपके सपने जरूर जरूर जरूर पूरे होंगे। क्या बात है, ये मेरे पास मैसेज आया है दिनेश चौहान जी का, बहुत ही खूबसूरत थॉट जो है आपने पहुंचा दिया है। जुल्फी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं आनंद जी गाने बहुत अच्छे प्ले करते हो और साथ ही साथ आप बातें बहुत बढ़िया करते हो। क्या बात है यार, काश ऐसा होता कि सारी टेंशन जो है 24 घंटे में डिलीट हो जाती, जैसे व्हाट्सएप के स्टेटस है ना 24 आवर के बाद वो गायब हो जाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसा हमारे लाइफ में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता तो कितना बढ़िया होता। वैसे आज का एक सवाल भी है मेरे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जिसका जवाब डेफिनेटली आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप पे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, तो हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। हाँ जी, आपको व्हाट्सएप करके बताना होगा। मैं कुछ तो आपसे खास और स्पेशल पूछने वाला हूँ आज की सुबह, उसके लिए बस आप ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही जुड़े रहिएगा, एंड लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे मैं क्या आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल बताना इतना चाहता हूँ कि सुबह के स्टेशन क्लॉक में 9 बज चुके हैं, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ पाजी, छठी की सारी गल और आ जाओ मेरे नाल, करो ढेर सारी बात, एंड अभी लौट कर आएंगे उसके बाद बताएंगे कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत कमाल की है।
2: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
3: मम्मा का नालायक बेटा।
4: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
5: बिंदास मॉर्निंग।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने, तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
11: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: देखो देखो वहाँ क्या।
1: अजय आनंद इज बैक।

वेलकम बैक है वंस अगेन आप आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज माय लास्ट आवर, 9:03 हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए अच्छी बातें और अच्छे गाने फौज आते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप आनंद को सुन रहे हैं। हाँ जी, यह है फ्राइडे की सुबह, 24 जुलाई है आज, बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है। एंड फाइनली आप जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने का टाइम हो गया है। और सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप जो है अब आपके लिए एक नया बहुत ही अच्छा फीचर इनरोल करने वाला है। जी, व्हाट्सएप आपको दे रहा है यूज़र नेम रिकवर करने का एक ऑप्शन। हाँ जी, तो आपको बता दें व्हाट्सएप यूज़र नेम फीचर जो है चुनिंदा यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है, जिससे जो है मोबाइल नंबर की बजाय सिर्फ यूज़र नेम से आप जो है चैट शुरू कर सकेंगे। भारत में सुरक्षा चिंता के चलते इसका लॉन्च फिलहाल तो रुका हुआ है, लेकिन फीचर चेक के जो है भाई साहब सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो डेफिनेटली चेकआउट किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी आपके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, है ना। तो बिकॉज अगर आपका नंबर नहीं होगा, यूज़र नेम से आप चैट करेंगे, तो फ्यूचर में चल के थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आजकल इतने सारे हैकर्स एंड सो मेनी स्कैमर्स आ गए मार्केट में, तरह तरह के स्कैम्स आ रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसी को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल जो व्हाट्सएप यूज़र नेम का जो फीचर है वो अभी इसका जो मतलब इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया में रोक दी गई है। और आगे बढ़ते हुए मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं अभी फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो भैया मत करो, रुक जाओ, बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें फीचर चेक करने के लिए सेटिंग्स में आपको जाना है, अकाउंट्स ऑप्शन को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, वहाँ पर आपको यूज़र नेम का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे, 4 अंकों का अपना जो पिन कोड होता है उसको सेट करेंगे, आपका नंबर छिप जाएगा, यूज़र नेम आपका स्टार्ट हो जाएगा जो आप डालेंगे, उससे फिर आप जो है जब किसी से भी चैट करेंगे तो आपका नंबर वहाँ शो नहीं होगा, सिर्फ आपका यूज़र नेम ही शो होगा। तो भैया ये कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ट्रेन में क्या चल रहा है इस पर रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और अभी ट्रेन में तो बहुत कुछ चल रहा है, आप सभी को पता है। सोशल मीडिया खोलते ही हम सब जंतर मंतर में पहुंच जा रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ ना होकर भी वहीं मौजूद है ना, मतलब सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर है, हमारी आत्मा वहीं भ्रमण कर रही है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन आई टोटली अग्री स्टूडेंट के साथ जो चीज़ वहाँ पर हुई है, स्टूडेंट ने जिस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई है उसको तो डेफिनेटली मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। बिकॉज जो हमारा स्टडी मैनेजमेंट है, जो हमारा शिक्षा वाला डिपार्टमेंट, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे फ्यूचर की बात है, जिंदगी के फ्यूचर की बात है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अपना राइट एक मांगा है, उस राइट पे डेफिनेटली बात होनी चाहिए। फिलहाल सोनम बागचू ने भी जो है अभी जो वो भूख हड़ताल पर थे, फाइनली वो खत्म हो गई है कल रात को, एंड डॉक्टर्स की जो है निगरानी में वो हैं, और लगातार वो अब खाने पीने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है सोनम जी का, तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक बहुत ही हेल्दी गुड न्यूज़ है जिसे कह सकते हैं। एंड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है रात 12 बजे, एंड जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो है बातें रखी स्टूडेंट को लेकर भी, और तमाम सारी बातें की हैं, तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पर चेकआउट कर सकते हैं पीएम साहब ने क्या कहा है कल। एंड आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद में क्या स्पेशल हो रहा है इस पे हम बात करने वाले हैं, और एक थोड़ा सा सवाल भी होगा जिस पे हम डेफिनेटली आपसे चर्चा करेंगे। बिकॉज आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आने वाला एक अच्छा सा गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी झकास एंड फैबुलस। ये है फ्राइडे मॉर्निंग, 9:07

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: होए होए, क्या बात है यार, क्या गाना है, मतलब सुन के मजा आ गया जी। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती है ढेर सारी दिल से दिल तक। हाँ जी, कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? हाँ जी, बढ़िया चलना चाहिए। देखो वीकेंड है, छुट्टी वाला दिन आ गया है, सो ढेर सारे मैसेज भी आ गए मेरे पास। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जोरदार तालियां आपके लिए सबसे पहले यार, ये आप डिजर्व करते हो। एवरी मॉर्निंग आप हमारे साथ इतना साला साथ निभाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 9:15 हो गए, अब आपके दिमाग का बत्ती गुल मीटर चालू करेंगे। Yes, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपने ना मेरे को एक मैसेज करके ना मेरे सवाल के जवाब देना है, ठीक है? तो आपको मुझे बताना है ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन कभी छू नहीं सकते, क्या लगता है वो कौन सी चीज हो सकती है? बहुत ही सिंपल पहेली है, फ्राइडे मॉर्निंग है, मैं सोच रहा हूँ आपके दिमाग के थोड़ा सा जो है ना बत्ती गुल मीटर चालू कर ही डालू। तो आप मेरे को मैसेज करके बताइएगा ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते हैं। आप मुझे जरा बताइए मैसेज करके, जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो रैंडमली बिना गूगल की आप मुझे बता सकते हैं 9837896896। फ्राइडे मॉर्निंग में बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते, बाबा क्या लगता है कौन सी चीज हो सकती है ये? आप जरूर बताइएगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके, एंड हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंचा है, आइए जरा जरा इनके दिल की बात सुनते हैं। जी सर,
1: गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग,
1: FM मुरादाबाद में भी जुड़ गया हूँ।
0: हाँ जी,
1: और गाने बहुत ही अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं, 9 के बाद तो गाने आपके चेंज हो जाते हैं, तो सुनने में बहुत ही आनंद आता है। सभी लोग सुनते रहें FM मुरादाबाद, जो सबको दीवाना बना दे। मैं मोसी मंसारी बनारस से।
0: मौसम भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपका दिल से शुक्रिया कि आप बनारस से हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। हम आपका किन शब्दों में थैंक यू करें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यार। लेडीज जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं। मुरादाबाद में जो है श्रद्धालु को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही, दिल्ली रोड कांट रोड पे। मैंने कल भी आपको कुछ चीजें बताई थी, आज भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। एंड बताते चले अभी आज का टेम्परेचर क्या कह रहा है। फिलहाल वेदर अभी 29 डिग्री सेल्सियस है, हवाएं काफी अच्छी खासी चलने वाली है आज। हाँ जी, तो अभी फिलहाल वेदर चेक कर लेते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बादल होने की भी संभावना रहेगी, यानी कि हल्के फुल्के बादल और धूप दोनों का जो है मिक्सचर आपको मिलने वाला है। एंड ये आगे चल के 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यानी कि गर्मी के साथ साथ आपको बादल शादल भी देखने को मिलेंगे। एंड फिलहाल हवाएं जो है आज काफी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं आज की सुबह। हाँ जी, और ये शाम होते होते थोड़ी कम हो जाएंगी। फिलहाल एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है आज, एंड कल भी बेटर थी। फिलहाल मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, आप जहां भी जा रहे हैं आप बस पहुंचते जाइए अच्छे गानों के लिए, जो है ना अच्छे प्यारे प्यारे गानों के लिए आनंद को ऐसे ही ट्यून इन रखिएगा। एंड जो मैंने पहली पूछी उसका आंसर भी आप मुझे पहुंचाइएगा। मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, मुरादाबादी क्या लगता है, आप बता रहे हो ना मैसेज करके। हाँ, मुझे यकीन है, पूर्ण रूप से भरोसा है आप मुझे जरूर इसका सही जवाब दोगे, सो फटाफट से आप मुझे इसका सही जवाब दे दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको देता हूं एक सही वाला गाना जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा आज की मॉर्निंग। एक अच्छा गाना आपके लिए निकाल रहा हूं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही सुनते रहिए आरजे आनंद को। ये है आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। हाँ जी, फिलहाल मैं आपसे एक और चीज कहना चाह रहा था, एक बड़ी अच्छी चीज है जो आज के दिन सेलिब्रेट की जाती है ना, तो उस पे हम बात करेंगे। देखिए, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, जितना जरूरी सेल्फ लव है ना उतना ही जरूरी सेल्फ केयर है, और जब आप सेल्फ केयर करोगे तो आपका सेल्फ लव अपने आप बाहर आ जाएगा। आने वाला गाना बहुत अच्छा गाना है, सुनते हैं इसको। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6, ये है आपकी शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग, आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। 9:19 हो रहे हैं, इस गाने के बाद कुछ एड ब्रेक, उसके बाद मेरी धाकड़ एंट्री होगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बिकॉज आप आनंद के साथ हैं ना, तो ये कहना बहुत जरूरी है। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। कुछ कहना चाह रहे हो, खुल चुका है यार नंबर भी, एंड वॉइस मैसेज दोनों जो आप करना चाहते हो कर सकते हो।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
9: नलायक बेटा।
10: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
11: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
12: बिंदास मॉर्निंग।
13: अच्छी गाने आप सुन रहे हैं आरजी आनंद के साथ। फ्राइडे की सुबह है, वीकेंड है, अच्छी वाली वाइब आपको दे रहा हूँ। 9:25 हो रहे हैं 24 जुलाई की सुबह, दिस इज अमेजिंग मॉर्निंग। अच्छे गाने हैं, अच्छी एनर्जी है, अच्छी वाइब्स है, सब कुछ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड एक सवाल भी है, और साथ ही एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ। लौट के ना दूं उस गाने के बाद, आई विल बी राइट बैक।

0: beautiful track. आपको गाने कैसे लगते हैं यार, ये भी आप मुझे बता सकते हो यार, ये भी तो एनर्जी का डोज होता है। ओए होए। कुणाल गांजावाला की आवाज, आप एंजॉय कर रहे हैं फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ। क्या गाना था यार, सच में मजा आ गया, इतना अच्छा गाना सुन के एकदम माइंड जो है ना फ्रेश हो गया यार, मेरे को तो फुल ऑफ एनर्जी मिल गई है और ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है अंदर। आपको मिली या नहीं, आप मुझे बता सकते हो। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और यार हम ना अपने लोकल की बातें जरूर करते हैं, अपने मुरादाबाद की बातें जरूर करते हैं, क्या चल रहा है मुरादाबाद में। मुरादाबाद का रेडियो सुन रहे हो तो मुरादाबाद की इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली आप तक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो बस आप ऐसे ही मेरे साथ ट्यून इन रहा करो, क्या चल रहा है अपने शहर में सब कुछ आपको पता लगता है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे प्यारे अमेजिंग मैसेजेस करने के लिए। यार मैंने आपसे क्या सिंपल सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको दिखाई तो देती है बट आप उसको कभी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मतलब हाँ आपको दिखाई देती है, आपके सामने होती है लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे छू भी नहीं सकते। मामा तो कौन सी चीज है, यही आपसे पूछ रहा है आपका दोस्त आनंद। और यहाँ पर आनंदित वाली बातें कर रहे हैं। वैसे यार जुकाम होने के बाद ना आवाज की जो बैंड बचती है ना, मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता यार, शायद आप भी नहीं बता सकते हो। हाँ फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं फटाफट से ये पढ़ लूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास मैसेज आ रहा है ये, गुड मॉर्निंग नमस्ते आनंद जी, मैं अमित हूँ एंड मूल रूप से मुरादाबाद के नए लाखड़ी फाजलपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं मेरठ में रहता हूँ। मैं रोज आपका एफएम मुरादाबाद सुनता हूँ, आपका जो प्रोग्राम है वो सुनता हूँ, आपकी आवाज़, आपके बोलने का अंदाज और जो आप श्रोताओं से जुड़ते हैं, जो आपका एक तरीका है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत पसंद आता है। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच अमित जी, आपने तो मेरा दिन बना डाला यार। आगे लिखते हैं, आपका शो सुनकर दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो जाती है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आने लगती हैं आपको सुन के। ओहो, मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी सारी टेंशन छू मंतर हो जाती होगी। एंड आगे लिखते हैं, ये जब आप पूरे मुरादाबादियों को जो है अपने साथ नमस्कार करते हैं तो मतलब मजा आ जाता है एंड शहर की यादें और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और शहर की याद मुझे बहुत आती है यार, बिकॉज आप इतनी शानदार आवाज में प्रस्तुति देते हैं और मुरादाबाद की इतनी बातें करते हैं तो अपने शहर को थोड़ा मिस करता हूँ। भाई लंबा चौड़ा चिट्ठा भेजा है जी आपने, मतलब मजा आ गया आपका मैसेज पढ़ के ना, मतलब मेरे को लग रहा है कि यार सच में कुछ तो अच्छा कर रहा हूं यार लाइफ में। थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए एंड ये मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और साथ में लिखते हैं, आप हमेशा अपनी शानदार आवाज और बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आते रहिए, आपका दोस्त अमित। क्या बात है अमित जी, आपने तो मेरे को सेंटी कर दिया यार, मतलब अब आपको चॉकलेट देनी पड़ी यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। वैसे मैं चॉकलेट थोड़ी कम ही खाता हूँ यार। आप सभी के लिए तालियां। भाई साहब क्या दिमाग लगा रहे हैं, एक बंदे से मतलब एक बंदे से ना मेरे को कमाल ही कर दिया उन्होंने, मेरे को ऐसा आंसर किया कि आनंद जी जो आपने पूछा ना, दिखाई नहीं देती, हम दिखाई देती है पर उसको छू नहीं सकते हैं, वो मेरे को समझ में आ गया वो कौन सी चीज़ है, बस इन्होंने इतना लिखा और उसके आगे लिखा ही नहीं है। भाई ऐसे कैसे चलेगा, आपको समझ में आया लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा, ये तो आपको मेरे को लिख के बताना पड़ेगा बड़े भाई। भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं एंड और भी मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं, जैसे हमारे पास ये अमर का मैसेज आया है, विकी सागर जुड़े हैं, लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग। एंड ये हमारे साथ विजय ब्यूटी सेंटर से भरत नागपाल जी जुड़े हैं। साथ में हमारे पास मैसेज आ रहा है नैनीताल से, जय श्री राम जी, कैसे हालचाल है, आई रियली होप आप अच्छे होंगे। एंड साथ में लिखते हैं, कड़क चाय के शौकीन शहनशाह, बात बात पर मैच्योरिटी का ज्ञान देने वाले रेडियो जॉकी, आपको चाय की तलब बढ़ती जा रही होगी आई एम श्योर, लीजिए चाय पी लीजिए। वाह वाह वाह, ये वर्चुअल चाय जो आप लोग पहुंचाते हो ना भाई, मैं क्या ही बताऊं, मतलब चाहकर भी नहीं पी सकता हूँ, शायद ये भी हो सकता है मेरा आंसर, नो डाउट, देखता तो हूँ लेकिन छू नहीं सकता हूँ यार, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आनंद जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। रिहाना मेरे साथ जुड़ी है एंड मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ गए, लिखते हैं आनंद सर आपके तमाम सुनने वाले साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी शुक्रिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जापान में एक ऐसा फ्रिज बनाया गया है जिसके अंदर इंसान बैठेगा तो उसे गर्मी नहीं लगेगी, मतलब खाने पीने के लिए फ्रिज बनाना तो अच्छी बात है यार, लेकिन इंसानों के बैठने के लिए फ्रिज बना दिया, आई कॉन्ट बिलीव दिस यार, ये क्या चल रहा है। और ये सारे आविष्कार इंटरनेशनली क्यों होते हैं यार, मतलब बड़े अजीबोगरीब जो है चीजें होती हैं यार। और सोशल मीडिया पे यार कब क्या वायरल हो जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है, मतलब आप किस चीज़ के साथ जो है शुरुआत कर रहे हो और आगे चल के वो चीज़ आपको कहाँ ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए लौट कर आएंगे तो बात करेंगे बॉलीवुड के तमाम सारे जो सेलेब्स हैं वो कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उस पर डेफिनेटली हम बात करेंगे अभी जरा सी देर में। आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए आनंद के साथ। और बाकी मुरादाबाद के बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं आपकी शहर का अमेजिंग लोकल रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्पिटिशन जो है शुरू हो गया है जिसमें आप 50 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा ही कॉम्पिटिशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जानना है आपको, तो डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ गाइज। मैं अभी लौट कर आता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ ये कौन सी फैंटास्टिक चीज है जिसके बारे में आनंद बात कर रहा है आज की सुबह जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बताया ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, क्लू दे रहा हूँ सबसे बड़ा, तो बस उसी से रिलेटेड है, अभी लौट के बताऊंगा।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या? मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है तो क्या आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं? अभी भी कुछ ऐसा ऑप्शन है? चलिए मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। भैया आपको बताते हैं, बंद नहीं हुआ है 2,000 रुपए का नोट, RBI ने बताया है आपको करना क्या है। सो भैया RBI ने कहा है कि 2,000 का नोट अभी पूरी तरीके से वैध है, मतलब लीगल ट्रेडर है। अगर आपके पास ये 2,000 का नोट है तो आप इसे जो है 19 इशू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं, RBI के 19 इशू ऑफिस में जाकर इसको जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और आपको बताते चलें, वहाँ पर जो है इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है भाई, मैं आपको बता देता हूँ एंड ये फटाफट से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप RBI 19 ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया वही जो लोग जो हैं वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वो लोग इसे मतलब जहाँ अगर आप इस ऑफिस में नहीं विजिट कर पा रहे तो उन्होंने एक ऑप्शन और दिया है कि वो इंडिया पोस्ट के ज़रिए भी जो है RBI इशू ऑफिस में नोट भेज कर जो है इसकी राशि को अपने बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला 200,000 का नोट है तो डेफिनेटली आप इसको चेंज करा सकते हैं, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जापान में एक ऐसा फ्रिज बनाया गया है जिसके अंदर बैठकर भाई आपको भीषण गर्मी से जो है राहत मिल सकती है। जी 5 मिनट में छू मंतर हो जाएगी गर्मी। जापान में एक ऐसा जो है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, फ्रिजरेटर जो है बना दिया गया है कि मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब कूलिंग बूथ पेश किया है ऐसा बताया जा रहा है, जो कुछ ही मिनटों में जो है आपके शरीर को पूरी तरीके से ठंडा कर देगा और आपके बॉडी के अंदर से जो भी स्मेल है वो भी गायब कर देगा। एडवांस कूलिंग जो है इसमें आपको मिलने वाली, जो आपके शरीर को ताज़ा तरीन कर देगा। यार ये जापानी लोग ना बड़ी अलग अलग चीज़ों का आविष्कार करते हैं, मतलब कभी थप्पड़ मार के जो है पैसे कमाओ, कभी कुछ नहीं करके पैसे कमाओ।

0: अरे यार वो बीच में ना ये बिन बुलाए खांसी मेरे गले में बाहर आ गई थी, तो मैंने कहा जरा होल्ड करके पहले इसी को इसी से बात करके आता हूँ। तो ये जो खांसी ना ये मुफ्त में आपको मिलती है भाई, प्लीज अपना ध्यान रखो। ये जुकाम अगर आपको हो गया ना बॉस, तो साथ में जो ये खांसी है ना कुंडली मार के आपके साथ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल कोशिश तो यही है कि आपको ऐसे मैं रियलाइज ना होने दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो यार फील हो ही जाती है। आप लोग इतने प्यारे हो, पकड़ ही लेते हो यार। आगे बढ़ते हैं, और अभी आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट से। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना एक कॉम्पिटिशन के बारे में, उसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तरफ से शुरू की गई है। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आयोजित जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी का जो है एक बहुत ही सुंदर योजना का जो है शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें इसमें जो है जो स्नातक जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है, और भाई साहब उनको उनके मेरिट के आधार पर जो है स्कूटी मिलेगी। हाँ जी, तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल पे जाके चेकआउट कीजिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। एंड अगर आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल्स जाननी, क्योंकि कहीं ऐसा ना मौका आपके हाथ से निकल जाए, है ना, स्कूटी के साथ ही पंजीकरण, बीमा एंड इसके अलावा हेलमेट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2025 या 2026 में, तो ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल जो है एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जाइए, यू हैव टू गो एंड चेक आउट रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर डेफिनेट मिल जाएंगी। मैं देख पा रहा हूँ वैसे इन्होंने जो है यहाँ पर कुछ अपनी पेजेस भी दिए हुए हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। हाँ जी, तो आप www.upgovit पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इनकी YouTube चैनल पे जाके भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यूपी इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल पेज पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधा जो है Instagram पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेलिंग में बता देता हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। आप Instagram पे टाइप करेंगे UPGOVT, जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको जो है इनका इंस्टाग्राम हैंडल दिखेगा, वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो फिलहाल ये हुई काम की बात, एक कड़क क्वेश्चन है जिसका जवाब डेफिनेटली आप मुझे पहुंचा सकते हैं। अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके आंसर्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप आनंद के साथ हैं और लगातार मेरे पास संदेश पहुंचते जा रहे हैं। राजा कश्यप गली चौराहा से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग है कि बड़ा वाला, गुड मॉर्निंग आपको भी, थैंक यू वेरी मच इतना बड़ा गुड मॉर्निंग देने के लिए। इसके अलावा एक और मेरे पास मैसेज पहुंच गया है आज की मॉर्निंग, और ये हमें लिखते हैं मुंबई से बबलू सैनी जी मेरे साथ जुड़े हैं, मुंबई महाराष्ट्र से। एंड साथ ही साथ ये बबली, गीता कश्यप एंड लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं हेलो आनंद सर, कैसे हालचाल है आप सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जी जी, थैंक यू सो मच। आगे हमारे पास मैसेज आ रहा है दुर्गेश जी का, इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये कल्याणपुर से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, थैंक यू सो मच। एंड डीके अरोड़ा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग जी। अगला मैसेज हमारे पास अमित वर्मा का आ रहा है, हिमगिरी हरथला कॉलोनी से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, और इन्होंने मेरे को मैसेज किया है, इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, आपने जो पूछा है ना, आपको जो चीज़ दिखाई तो देती है बट आप उसे कभी छू नहीं सकते हैं, उसका राइट आंसर है परछाई, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मोनू, सोनू, रीना, वंशिका, रुचि, ईशिका लाइन पार मंझोला से मैसेज कर रहे हैं पुतली घर रोड। एंड नोनेश कुमार जी ने भी यही आंसर दिया है, क्या सच में यही जवाब है या फिर कुछ और, ये तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, लिखते हैं सुबह की धूप ने दस्तक दी है, चाय की प्याली ने हंसी बिखेरी है, उठ, और साथ में लिखते हैं कि उठो दोस्तों एक नया दिन आया है, आओ मिलकर इसे खूबसूरत बनाएं, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है। एक और मैसेज आ गया, जिंदगी में मेहनत करोगे तभी सफलता हासिल होगी, आप आगे बढ़ सकते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप वहीं रुके रहोगे जहां आप रुके हुए हो, क्या बात है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बनारस से जुड़े हैं मोहसिन अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, सबने अच्छे मैसेज किए। चलिए फिलहाल अभी एक अच्छा सा गाना आ रहा है, अभी 9:47 हो गया यार, एक तो टाइम बहुत तेजी से भागता है यार, ऐसा लगता है ये पंख लगा के बैठा हुआ है टाइम, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अभी तो मैं आया था मुझे ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी टाइम भाग जाता है, आपको भी ऐसे लगता है ना। वेल, कुछ लोगों ने अभी रेडियो खोला है तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप आनंद के साथ हैं, लौट कर आते हैं एक अमेजिंग म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। प्यारे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना

0: ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
3: बिल्कुल सही स्टेशन पे हैं आप। यह है बिंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को, एंड अभी लौट कर आने वाला हूं मैं। उसके बाद एक कड़क सवाल होगा मेरा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है हमारे इस गेम का, तो डेफिनेटली मैं अभी आपको बताता हूं, एंड आप ऐसे ही मेरे साथ ट्यून इन रहिए। लौट कर आ रहा हूं मैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के बाद, उसके बाद मैं इसके विषय में बात करने वाला हूं स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: की पार्टी खत्म।
1: अरे भाई चल घर को चल। हाँ, पार्टी खत्म होगी भाई। अभी पार्टी खत्म ना हुई है, मैं कह रहा हूँ अभी पार्टी खत्म होने में टाइम है थोड़ा सा। आप ज्यादा टेंशन ना लो, अभी पार्टी जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। हाँ जी चलो पाजी, वक्त हो गया है कड़क वाले सवाल का। अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप बनेंगे हमारे शो के आज की मॉर्निंग सुपरस्टार। अगर आप बनना चाहते हैं सुपरस्टार तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द म्यूजिकल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना है गाना कौन सा है। फ्राइडे की सुबह में आनंद के साथ हैं आप और 9:52 हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉपुलर वाला गाना है जो आज की सुबह मैं प्ले कर रहा हूँ, बस इसको आपको पहचानना है ये कौन सा गाना है। बहुत ही कमाल की मूवी थी, बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी। सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट। ये लीजिए गाना, मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए लगा दिया है। अब आप मुझे बताओ ये जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का म्यूजिक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली वेरी वेरी सिंपल, ये गाना कौन सा है।

चलो चलो चलो, अभी इतने पैसे में इतने मिलेगा जी, छोरू उठाओ अपना फोन, ड्राइव करो अपना नाम, अपने शहर का नाम। भाभी जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ, प्रजाजी तू भी मैसेज कर दो ना यार, आज की सुबह बड़ा सिंपल सवाल है। मुझे पता है आप लोग 90s लवर हो, आप लोग को भर भर के सारे गानों की नॉलेज है, पूरी स्टडी एकदम PhD करके बैठे हुए हो, आई नो दैट। सारे लोग बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन आज की मॉर्निंग, ये 24 जुलाई है, जहां पर आपसे एक बहुत ही अल्टीमेट सवाल पूछा जा रहा है। एक बहुत ही प्यारा एक चुटकी सॉन्ग का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, मतलब ये जो गाना है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। वंस अगेन रिपीट करूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। कौन सा सवाल है ये लीजिए, सुनिए जरा। बहुत ही कमाल की फिल्म है, गाना बहुत प्यारा है, जरा पहचानो। चलो चलो चलो चलो, मैसेज करो मुझे फटाफट से 9837896896 पे अपने नाम के साथ, एकदम से सही जवाब पहुंचा दो बिना किसी

देरी के अब जो है कोई एक्सक्यूजेस मत देना यार, है ना। अब मुझे मैसेज करना है आपने फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। नंबर बता दूं क्या एक बार फिर से, कितनी बार बताऊं यार, चलो ठीक है बता देता हूँ। चलो सुको नाराज ना हो, 9837896896। आने वाला गाना दिलजीत दोसांझ इन द हाउस, आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, आई विल बी राइट बैक।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक ब्यूटीफुल ट्रैक, आई लव दिस सॉन्ग यार। अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना है, अरशाद कामिल ने लिखा था। बहुत ही अल्टीमेट गाना, गहरा हुआ, और सच में मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, ये और गहरा होता जा रहा है, और ज्यादा इसमें जो है अच्छी अच्छी चीजें होती जा रही है, और ये जो कनेक्शन है वो वैसे भी दिल से दिल तक वाला है। तो ऑफकोर्स यार, ये रिश्ता और ये प्यार और ये जो आपके और मेरे बीच में एक कारवा है, जो एक सिलसिला है, ये और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं। फ्राइडे मॉर्निंग है, 24 जुलाई है। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है सुबह के 10:03।
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
2: मम्मा का नालायक बेटा।
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
5: बिंदास मॉर्निंग।
6: थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
10: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
11: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
12: चाय चाय चाय,
5: बिंदास मॉर्निंग
1: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: जी 10:00 इनफैक्ट 10:05 हो गए हैं आज की सुबह आनंद के साथ। यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपको आइडेंटिफाई करना था ये कौन सा गाना है।

0: क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं गलत, इसलिए तालियां नहीं बज रही क्योंकि सही जवाब भी दिए हैं आप लोगों ने। आप टेंशन मत लो, फिलहाल अभी हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं क्योंकि देखिए सुबह सुबह का टाइम है, तो ऑफकोर्स अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हमारा आपसे ये छोटा सा एक जिसे कह सकते हैं रिक्वेस्ट है यार। चलो भाई, अभी फिलहाल मैं देखो यार एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें ना हमारी ज़ुबान पे ना ऐसे कुंडली मार के बैठ जाती है। जैसे अभी ना मेरी ज़िंदगी में फिलहाल नाम का शब्द कुंडली मार के बैठा है, मैं कल ना पक्का इसको लिख कर लाऊंगा, ये बार बार बहुत रिपीट होता है।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
0: कुछ लोगों ने इतने महान जवाब दिए हैं, मैं क्या बोलूं यार। खैर कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ पहुँच गया हूँ भाई साहब, मैं अपने शो के लास्ट बिल्कुल अंतिम वाले मौके पर आ गया हूँ जहाँ मुझे आपसे कहना पड़ेगा बाय बाय। लेकिन बाय बाय करने से पहले आपको एक कड़क अपडेट देता हूँ फटाफट से। 15 अगस्त पर शहर को मिलेगा एक बहुत ही कमाल का तोहफा। यस, आपको बता दें अगले माह जो है वॉर मेमोरियल, खेल पार्क और राम वाटिका है वहाँ पर जो है जनता को जो है जाने के लिए उनके जो द्वार मार्ग है भैया वो खुल जाएंगे। यस, तो आप जो है वॉर मेमोरियल, खेल पार्क और राम वाटिका में जो है बिल्कुल जा सकेंगे अगले महीने। जो है बहुत ही कमाल की चीज़ आपके लिए जो है यहाँ पर खुलने वाली, यानी कि अभी तक आप सोच रहे होंगे यार कैसे एंट्री होगी, कितना खूबसूरत बना हुआ होगा, अंदर से कितनी सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी, कब मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अगले महीने मिलने वाली है। आप जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे राम वाटिका, ये वॉर मेमोरियल, खेल पार्क, इन सब में आप जा पाएंगे। आने वाली 15 अगस्त जो है बहुत ही कमाल की तारीख होने वाली है मुरादाबाद शहर के लिए, और भी जो है महानगर वासियों को तमाम सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। तो बस इंतज़ार करिए, हौले हौले बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता लगता है लोकल फॉर वोकल मुरादाबाद के जरिए इसी रेडियो स्टेशन पर कि क्या चल रहा है अपने शहर में। एक और चीज आपको बताते चले, अगर आपके अंदर फिल्म बनाने का हुनर है तो आपके लिए एक शानदार मौका है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वंदे मातरम फ्रेम्स फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया जा रहा है, इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप 1 मिनट तक की रील, 3 से 5 मिनट तक की AI फिल्म या 15 मिनट तक का कोई लघु फिल्म बनाकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हिस्सा ले सकते हैं। कुल विजेताओं को 50 लाख रुपए तक के आकर्षक नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अपनी एंट्री भेजने के लिए जो भाई साहब इसमें इन्होंने तारीख दी है वो 31 जुलाई 2026, यानी कि 31 जुलाई तक जो है आप अपनी एंट्री इसमें भेज सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, अगर अपनी क्रिएटिविटी पे आपको बिलीव है, तो ये राष्ट्रीय मंच आपको देना चाहता है एक गोल्डन चांस, तो भैया इस अवसर को बिल्कुल मत गवाइए, ये जो है आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो दोस्तों कैमरा उठाइए, अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दीजिए और देशभक्ति की भावना को अपनी फिल्म के जरिए दुनिया तक पहुंचाइए। संस्कृत मंत्रालय लेकर आया है आपके लिए वंदे मातरम फ्रेम्स फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, एक बहुत ही कमाल का कंपटीशन है जहां पर AI से भी आप एक फिल्म जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्रिएटिविटी करने का एक कह सकते हैं कि चस्का है, जज्बा है, तो ज़रूर आप इसमें जो है पार्टिसिपेट करिए। बाकी डिटेल्स के लिए जो है आप अपनी एंट्रीज़ कहाँ भेज सकते हैं, www.vandematram150.in पर जाकर आप जो है विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। या अगर आप अपनी एंट्री सबमिट करना चाहते हैं तो फटाफट से आप विजिट कर सकते हैं, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, www.vandematram150.in पर जाकर आप कर सकते हैं अपनी एंट्री सबमिट। ठीक है, चलो अभी के लिए 9:09 हो गए हैं भाई, मैं फटाक से बताता हूँ कौन है आज के शो का लकी वाला सुपरस्टार। एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक, तब तक मैं आइडेंटिफाई करता हूँ आज की सुबह कौन है हमारे शो का लकी वाला सुपरस्टार, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो फटाफट से मैं अभी लौट कर आ रहा हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ किसने दिया है सबसे पहले सही जवाब, कौन बना है आज हमारे शो का सुपर वाला लकी वाला विनर। तो बस आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, एक बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, गुरु रंधावा की आवाज में गाना है। आप इस गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुरु रंधावा की आवाज में गाना एंजॉय कर रहे थे आप। मेड इन इंडिया, आई लव दिस सॉन्ग यार। आज की सुबह मैंने बहुत डांस किया इस गाने पे, लेकिन अच्छा नहीं कर पाता हूँ। मम्मी हमेशा डांटती है, इसलिए मैं कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करता, डर बहुत लगता है यार। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ये फ्राइडे मॉर्निंग है, ढेर सारी बातों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सवाल। आपको बताना था ये जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का?

0: Yes, और यही बताने के लिए हमारे साथ आज की सुबह कौन जुड़ी है, चलिए आइए जरा इनसे बात करते हैं एंड बताते हैं क्या है आज के सवाल का सही जवाब। ये मैं नहीं, हमारे बीच में जो कॉलर हैं वो आपको देंगी इसका सही जवाब। तो आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए और अभी मैम से बात करने का टाइम आ गया है। तो आइए जरा बिना किसी देरी के मैम को जो है यहाँ पर करते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से कौन जुड़ी है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर।

0: जी आपने रेडियो तो ट्यून इन नहीं किया है ना, पक्की बात?
1: क्या सर?
0: आपने रेडियो ट्यून इन किया हुआ है क्या पीछे गाड़ी में?
1: वो हमारा रेडियो भी चल रहा है।
0: ओके ओके ओके। सो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू बिंदास मॉर्निंग। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए।
1: मैं भारती बोल रही हूँ और मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी और मैं आपका एफएम रेडियो सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आज मेरा डे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी वॉइस सुन के या आपकी लोकल न्यूज सुन के बहुत अच्छा दिन निकलता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैं इसको ऐड कर लूंगा अपनी पॉजिटिविटी में। वैसे आपको पता था आज कॉल आने वाला है आरजे आनंद का, ऐसा कुछ आपको फील तो नहीं हो रहा था सुबह सुबह?
1: नहीं सर, एक्चुअली मेरे को ना आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है।
0: मैंने कहा आज सुबह आपको ऐसा लगा था कि आज की मॉर्निंग आपको आरजे आनंद का कॉल आएगा रेडियो से?
1: नहीं, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी और जब मैंने आपका क्वेश्चन सुना, मैंने आंसर किया, आफ्टर देन आई रियलाइज कि मुझे फील आया, रियली मुझे फील आया कि आज जरूर मेरे पास आपका कॉल आएगा।
0: अरे वाह, मतलब आपकी इंट्यूशन सच हो गई है ना?
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया,
1: अंदर से बहुत फील आ रहा था।
0: अरे वाह,
1: आपने तब तक कोई सिलेक्ट नहीं किया था और ये वाला सॉन्ग मुझे पता था, तो मुझे फील बहुत फील आ रहा था।
0: अब बिना किसी देरी के जल्दी से इसका सही जवाब बता दो भारती जी, वेट कर रहे हैं हम।
1: सर, ये करीब मूवी का सॉन्ग है, चोरी चोरी जब नजरें मिली।
0: अरे वाह, क्या बात है मैम, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। कंग्रेचुलेशन आपके लिए, जोरदार तालियां आज की सुबह, ढेर सारी तालियां। भारती जी, आपका तो नाम ही इतना गजब का है, मैं क्या बोलूं, इसमें मुझे बहुत सारी टैगलाइन आ जाती है, राइमिंग आ जाती है, मैं बट अभी बोल नहीं पाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है मैम, इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, क्या बोलते हो? सो भारती जी, मतलब देखो यार, काम अपनी जगह है, बाकी चीजें अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो फिर मुझे लगता है कि सारी चीजें अच्छी हैं। और जब आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है लोगों को एंटरटेनमेंट का डोज देने की,
1: ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो आपको उसको बहुत अच्छे से निभाना होता है और पूरा टाइम देना पड़ता है।
0: बिल्कुल। एंड व्हाट यू डू भारती जी, क्या करती हैं प्रोफेशनली, आप जरा ये बता दें फटाफट से।
1: सर, मैं यूपी कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में सीनियर अकाउंटेंट हूँ और अब ये हमारी यूपी लेवल की एक संस्था है जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन में डील करती है।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब ऑफिस पहुंच गई है मुझे लग रहा है आप, या ऑन द वे हैं अभी?
1: सर बस मैं बिल्कुल पहुंचने ही वाली हूँ।
0: वेरी नाइस। भारती जी, कितना चैलेंजिंग होता होगा ना आपके लिए सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट और ये सब, फिर ऑफिस, यू नो, बहुत हेक्टिक हो जाता होगा, आई एम श्योर।
1: सीरियसली हेक्टिक हो जाता है, लेकिन कभी कभी मजा भी बहुत आता है।
0: क्या बात है,
1: सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, ऑफिस में, घर पे, बच्चों को संभालना, फैमिली को टाइम देना, तो सब चीजें लेकिन मैनेज हो जाती है। मुझे लगता है कि एक लेडी सब कुछ मैनेज कर सकती है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। ये बोल के आपने मेरा 1 किलो खून बढ़ाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी तमाम मुरादाबादी को?
1: अगर आपके हौसले बुलंद हो, आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो और आपको अपने ड्रीम के लिए एक डिटर्मिनेशन हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
0: क्या
1: एक मेल या फीमेल होने की जरूरत नहीं है, आप मेल है तब भी कर सकते हैं, फीमेल है तब भी कर सकते हैं, बस एक अपना ड्रीम के प्रति आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, बहुत ही सही बोला भारती जी, मजा आ गया आपसे बात करके, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये जोरदार तालियां आज की सुबह आपके लिए, बहुत मजा आया। दो शब्दों में कुछ कहना चाहती हैं आरजे आनंद के लिए आज की सुबह? मेरा भी डोज बढ़ा दो कुछ बोल के अच्छा सा।
1: वैसे आनंद बहुत अच्छे हैं, सीरियसली मैंने एफएम रेडियो मुरादाबाद में आके ही सुना है और मुझे लगता है कि मैं रोज आपको सुनूं।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच, और हम भी चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमेशा ऑलवेज हमें सुनते रहें भारती जी। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच एंड फैबुलस वीकेंड मैम, लवली टॉकिंग टू यू,
1: थैंक यू,
0: बाय बाय बाय।

चलो भाई बाय बाय, कल मिलते हैं अपन सैटरडे की मॉर्निंग में। अभी फिलहाल 10:20 हो गए। सोचो ना यार, 10 बजे का टाइम होता है, 10:20 हो गए। आई कॉन्ट बिलीव दिस यार। मोहसिन अंसारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से। मोहसिन जी, आप एक मिनट पीछे रह गए थे यार, बोले आपने सही जवाब दिया था, थैंक यू सो मच। एंड बाकी ज्यादा जो है आप लोग इतने सारे मैसेज कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी। सब लोगों ने एकदम बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। ये चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये हरियाणा से यशपाल जी, अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से जुड़ी थी, लक्ष्मी जी माता मंदिर से जुड़ी थी, डॉक्टर सुरेश जुड़े थे, नॉनेश कुमार जी राइट आंसर के साथ जुड़े थे, इसके अलावा टीना कुंदनपुर से सही जवाब के साथ जुड़ी थी, ललिता कश्यप जी नवीन नगर से राइट आंसर के साथ जुड़े, मोहन स्वरूप जी जुड़ चुके हैं, नासर हुसैन साहब जुड़े रहमत नगर से, एंड इनको गाने बहुत अच्छे लगते हैं, इनको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, इनको हमारा शो बहुत ही जबरदस्त लगता है। नासिर भाई थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत बाग से अंसार हुसैन साहब जुड़े, एंड इसके अलावा मेरे पास वंशिका का मैसेज आया, रुचि का मैसेज आया, यहाँ पर और भी तमाम सारे मैसेज आप लोगों के आए, उसके लिए भर भर के शुक्रिया। 10:20, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, कल सुबह सैटरडे मॉर्निंग में होगी आपसे ढेर सारी बात। कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट मैसेज भी किए थे, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद, आप कैसे हैं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, नमस्ते सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, नहीं अभी बहुत ही परफेक्ट है मेरी तबीयत, आई एम एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्क मी बाय द वे। मुस्कान मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह, एंड इसके अलावा मेरे पास एक और मैसेज आया था, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हालचाल है, नमस्ते जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग एंड हैप्पी वाला वीकेंड, बाय बाय।

0: अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। फ्राइडे की मॉर्निंग है दोस्तों, वक्त हुआ है 10:30। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है बाहर का, कभी धूप निकल जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं और हवाएं भी चल रही हैं। दोस्तों आरजी खुशी है आपके साथ, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी की हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की गलतियों से सीखने का और आज को मुस्कुराकर जीने का। याद रखिए एवरीवन, सक्सेस सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि रोज की मेहनत से, अच्छे विचारों से और सकारात्मक सोच से मिलती है। जिस इंसान के इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए हर मुश्किल सिर्फ एक नया रास्ता बन जाती है। और दो पंक्तियां आपके लिए कि उम्मीद की रोशनी कभी मत खोने देना, उम्मीद की रोशनी कभी खोने मत देना, मुश्किल सफर, जी हाँ मुश्किल सिर्फ एक नया रास्ता बन जाती है। कहते हैं कि उम्मीद की रोशनी कभी खोने मत देना, हर नई सुबह को अपने सपनों से रोशन कर देना। तो आप भी, मुझे पता है अभी ऑन द वे कार में हैं, अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं और बहुत सारे श्रोता तो अपने काम पर भी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस फंटास्टिंग सी फ्राइडे की शुरुआत करते हैं प्यारी सी मुस्कान, अच्छे विचार और पूरी पॉजिटिव वाइब के साथ। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और दुआ करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए खुशियाँ, सफलता और ढेर सारी मुस्कान लेकर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल सेशन में कनेक्ट हो सकते हो, ब्यूटीफुल शो में जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों आज 24 जुलाई है, दिन बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्राइडे का, शुक्र है कि शुक्रवार है। और आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक आज की मॉर्निंग खुशी ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो चलिए जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए। ब्रेकफास्ट कर लिया है? वेरी गुड, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम तो नाश्ता वाश्ता करके आ चुके हैं भैया, सुबह सुबह थोड़ा सा पेट पूजा होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिएगा सुनते हैं एक शानदार से गाना, उसकी बात करते हैं आपसे और ढेर सारी बातें एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी है।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना अद्वित नारायण साथ में कैलाश खेर जी की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा गाना। दोस्तों, जिंदगी भी ना एक खूबसूरत सफर है, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी से ज्यादा रास्तों का आनंद लेना भी जरूरी है। कभी धूप मिलेगी, कभी छाऊं, लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद हो तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। यूं ही चला चल रहा है, मुस्कुराते चलना, क्योंकि ये दुनिया सच में बहुत हसीन है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर दिन हमें एक नई कहानी लिखने का मौका भी देती है। और दोस्तों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये बात में सबसे खास तौर पर अपनी सभी प्यारी जो फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, है ना, जो गर्ल्स मुझे सुन रही हैं एंड जो मामा मुझे सुन रही हैं, उन सभी के लिए है। देखिए, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं ना, वो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, बच्चों का, हस्बैंड का, माता पिता का, सास ससुर का, लेकिन जब बात खुद की आती है ना तो अक्सर कह देती हैं अभी नहीं, पहले सबका काम कर लूं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो खुद को संभालता है वही पूरे परिवार को संभालने की ताकत भी रखता है। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत रखना कि आप हर रिश्ते को प्यार से निभा सकें। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए, अपनी पसंद की चाय आराम से पीजिए, कोई किताब पढ़िए, सुबह 15 मिनट टहल लीजिए, अपना पसंदीदा गाना सुनिए जो आपको बहुत पसंद हो, और सबसे ज़रूरी, बिना किसी वजह के भी मुस्कुराइएगा। याद रखिए, आप सिर्फ किसी की बेटी, बहू, पत्नी या माँ नहीं हैं, आप अपनी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। और आज का मेरा क्वेश्चन भी है, हाँ जी, क्या आप जो मुझे सुन रही हैं ना इस समय, हमारी लेडीज लिसनर्स, उनके लिए एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या आप दिन के 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकाल पाती हैं, बताइए मैम। जी हाँ, दिन के पूरे 24 घंटे में क्या 20 मिनट सिर्फ आप अपने लिए निकाल पाती हैं, ज़रा मुझे बताइएगा। नंबर हमारा रहेगा 9837896896, और आप उस 20 मिनट्स में क्या करते हैं। जब तक आप अपने मैसेज पहुंचाती हैं, तब तक हम यहां पर जो संदेश आए हैं उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर मैसेज आया है बबलू सैनी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। आज की सुबह हम एवरी डे अच्छे होते हैं, और जब आप सबसे बातचीत हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं। और बताइएगा सर, मुंबई का वेदर कैसा है, वहाँ बारिश हो रही है या नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, आपको भी जय श्री राम सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। कहते हैं कि आप कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं, जानकारियाँ भी बहुत ही अमेजिंग लेकर आती हैं, और जब आप बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई, ओहो हो, नहीं नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो गया है इतना भी नहीं, एंड कहते हैं कि कोई शुरू सुर की मलिका बात कर रही हो, ओहो हो। और आप हमारा ऐसे ही मनोरंजन करती रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमें चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि खुशी जी हमें एक ट्रैक भी सुनवा दीजिएगा। जी सर, इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं, मुस्कुरा कर जीना असली ज़िंदगी है, मुस्कुरा कर जीना असली ज़िंदगी है, वरना तकलीफ तो यहाँ सबको है। एग्जैक्टली राइट सर, आई एग्री विद यू। मैं अपने श्रोताओं से बार बार यही बोलती हूँ कि आप भी मुस्कुराया कीजिए, और आप जब सब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारे श्रोता मुस्कुराते हुए भी शर्मा जाते हैं। अरे शर्माना किस बात के, हाँ इतने अच्छे तो लग रहे हैं आप सब। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, कपिल का मैसेज हमारे पास आया है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, कहती हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और कहती हैं आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और जो मैम ने हमें आंसर पहुंचाया है उसको हम जरूर रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, एड ब्रेक के बाद कुछ शानदार गाने, तब तक आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाएगा। और जितने भी हमारी लेडीज लिसनर्स मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप 24 घंटे में से अपने लिए 20 मिनट्स निकालती हैं या नहीं? और अगर वो 20 मिनट्स आप निकालते हैं तो उसमें क्या करती हैं आप, बताइए मुझे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आप, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, अपने बारे में तो बताओ। आज हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। देखिए हमें सब भी सुन रहे हैं, जो मेल हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल नहीं है, सिर्फ आप बस मैसेज पहुँचाइएगा। एंड हमारी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं उनसे हम आज सवाल करना चाहते हैं, तो जल्दी से पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। आप देखिए इतना सोचिए मत, हम आपसे चाय कॉफ़ी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे आपके हॉबीज़ के बारे में जान रहे हैं, ठीक है? तो इसे बताने में तो आप इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा ना, फटाफट से पहुंचाइए मैसेज। अगेन नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ 9837896896। यह है आपकी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और खुशी आपसे कहेगी हौले से मुस्कुराते भी रहिए।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आई टी एम यूनिवर्सिटी

0: डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और एवरीवन, वक्त मैं आपको बता देती हूँ, देखिए 11:03 हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और बता देते हैं आज और क्या स्पेशल है दोस्तों। देखिए 24 जुलाई है और आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कजन्स डे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कज़न जो बहन भाई होते हैं, सिस्टर ब्रदर, बहुत ज़्यादा शरारती भी होते हैं, बहुत प्यारे भी होते हैं। आज थोड़ी उनकी भी बातें कर लेते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्ती अगर घर के अंदर मिल जाए, दोस्त अगर घर के अंदर मिल जाए ना, तो उसे कज़न कहते हैं। कज़न वो होते हैं जिनके साथ बचपन की शरारतें, गर्मियों की छुट्टी, चोरी छिपके आइसक्रीम खाना और बिना वजह लड़ना, सब कुछ यादगार बन जाता है। कभी एक दूसरे के साथ सबसे बड़े साथी तो कभी सबसे बड़ी शिकायत करता है ना, लेकिन दिल से हमेशा अपने होते हैं। और दोस्तों मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप सब कज़न एक साथ मिलकर एक ही रूम में शरारत कर रहे हो लेकिन डांट सिर्फ एक ही को पड़ी हो? हाँ, कभी ऐसी शरारतें की हैं आपकी कज़न ने मिलकर और आपने साथ में? दोस्तों मेरे साथ भी एक बड़ा ही, मेरी कज़न सिस्टर का किस्सा है, मैं उसका किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आपके जो मैसेज यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, और ये कहती हैं कि मैम हम तो एवरी डे अपने लिए 20 मिनट्स निकालते हैं और 20 मिनट में मैं क्या करती हूँ। ओके, ये कहते हैं कि 20 मिनट में दोपहर में डस्ट करने के लिए ज़रूर निकालती हूँ, मैं उस समय सोती हूँ। और मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रहा है मैम बाहर। थैंक यू सो मच मैम, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, हम सबका ख्याल रखते हैं सिवाय अपने। लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबका ख्याल तो तभी रख पाएंगी ना जब आप खुद हेल्दी रहेंगी, फिट एंड फाइन रहेंगी। तो खुद से भी प्यार कीजिए, खुद के लिए भी समय निकालिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें आप टाइम दीजिए थोड़ा। लाइक जैसे आपको सिंगिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, मेकअप आर्टिस्ट एंड आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहंदी आर्टिस्ट, या फिर आपको सिलाई करना पसंद है या कुकिंग करना, तो कुछ स्पेशल भी बना सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं। रीडिंग करना, सबकी अपनी चॉइस होती है, अपनी हॉबीज़ हैं सबकी, क्योंकि डिफरेंट होती हैं, सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती हैं। बाकी मुझे आप बताइएगा कि आपको 24 घंटे में से अगर आप 20 मिनट्स अपने लिए निकालती हैं तो उस 20 मिनट्स में आप क्या कुछ करती हैं, बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार है। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, और ये कहते हैं खुशी जी एक महीना हो गया है इधर हमें आए हुए और धूप तो देखने को ही नहीं मिली है, इस समय भी बरसात हो रही है हल्की फुल्की, अच्छा वहाँ पर बारिश हो रही है ना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये अपनी फैमिली के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों कुछ और मैसेज आए हैं उनको मैं आकर रीड करूंगी, लेकिन मैंने आपसे जानना चाहा है कि आपके घर में भी आपके कजन्स हैं, सिस्टर ब्रदर, तो बताइएगा वो कभी ऐसा हुआ कि आप एक साथ एक रूम में सब मिलकर मस्ती कर रहे हो लेकिन सिर्फ डांट एक ही को पड़ी हो? हाँ बताओ बताओ, आप शरारती हो या आप वो बच्चे हो जिनको डांट मिली हो सबके साथ और बाद में सब बहन भाइयों ने मिलकर आपको मजाक बनाया हो कि देखिए गलती तो हमने की थी लेकिन पनिशमेंट आपको मिल गई? वो नोक झोंक आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जब तक आप अपने किस्से शेयर करते हैं तब तक मैं आप तक एक प्यारा सा गाना सुनवाती हूँ आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनों के साथ रहिए।

0: हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एफएम मुरादाबाद 89.6 को सुन रहे हैं आप, और मुझे पता है आप भी फटाफट से मैसेज टाइप करने में बिजी हैं। आपकी जो उंगलियां हैं ना, वो रुक नहीं पा रही हैं। एंड अच्छी बात है दोस्तों, मैसेज पहुंचाइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके संदेशों का। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, पंजाबी गाना। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को थोड़ा सा नचा देते हैं, नाश्ता कर बैठे हैं। अगर ज़्यादा बैठे रहोगे ना तो लाला जी बन जाओगे। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ना बैठना भी ठीक है, क्योंकि काम बैठने का भी होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना आप 20-20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में ना थोड़ा थोड़ा अपनी चेयर से उठ के थोड़ा वॉक किया करो, इधर उधर टहला करो, ताकि आप थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो एकदम फिट रहे। और जब आप फिट रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हैंडसम भी लगेंगे, नो डाउट। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे पूछा था एक सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है आज नेशनल कजन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वो नटखट से बहन भाई जो होते तो छोटे हैं, लेकिन बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और मेरा जो भाई है ना, जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, कज़न सिस्टर हैं, मतलब भाई में अगर मैं बात करूँ, जो छोटा मेरा कज़न ब्रदर है वो क्या करता है, देखने में तो वो छोटा नहीं लगता, मतलब मुझसे ही बड़ा लगता है और उम्र में छोटा है, लेकिन हाँ उसकी बातें और उसकी केयर, उसका लव हमेशा ऐसा होता है जैसे कितने, मतलब कि मुझसे कितना बड़ा है, इतना प्यार करता है मेरे को। और अगर मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक करती हूँ ना तो मुझे डांटता भी है, लेकिन उतना प्यार भी करता है। कभी ऐसे फील नहीं होने देता है कि उसका, मतलब बड़े भाई वाला ना पूरा वो हक जताता है मुझ पर। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ इसको, लेकिन मैं डांटती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं डांटना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब बहुत गुस्सा दिलाता है तो डांट देती हूँ, पर प्यार से मना भी लेती हूँ, मान भी जाता है, ये बात उसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरे साथ में ना यहाँ पर एक बड़ी क्यूट सी, बहुत प्यारी सी, यहाँ पर हमारे पास एक ब्यूटीफुल लिसनर आई है हमारे स्टूडियो, नाम है परी। और परी से हम भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एंड डायरेक्टली बातचीत करते हैं परी से, और जानते हैं परी से भी उनके कज़न की कुछ बातें स्पेशल। तो यहाँ पर हमारे साथ में जो स्टूडियो में बैठी हैं परी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई परी, हाय वही यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: आई एम फाइन, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसा लग रहा है सुबह सुबह आज स्टूडियो आप आए हो?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको तो बस मैं सुनती हूँ और आज आपके सामने बैठ के आपसे बातचीत हो रही है तो थोड़ा नर्वस भी हो रही हूँ, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है।
0: नर्वस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं नर्वस होने देती नहीं हूँ। मैं, मेरा जो नेचर है ना वो हमेशा फ्रेंडली रहा है, एक बहन की तरह मैं सबको ऐसे ही प्यार करती हूँ, तो नर्वस होने की बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा लगता है जब माइक के सामने हम आते हैं तो अच्छे घबरा जाते हैं, हाँ ये चीज़ ही ऐसी है। वैसे ये बताइएगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नेशनल कजन्स डे, मोस्ट वेलकम डियर। तो बताइएगा मुझे आप कि आपके कज़न ब्रदर की क्या खासियत है और क्या वो शरारतें करते हैं, आज आप उनका भांडा फोड़ ही दो।
1: मेरा जो कजन ब्रदर है उसका नाम है अथर।
0: हाँ, अथर्व, हाँ, नाम बहुत प्यारा है।
1: अंश,
0: ओके।
1: और वो शरारती भी बहुत है और मेरी केयर भी बहुत करता है और मुझे बहुत परेशान भी करता है। मुझसे छोटा है 2 साल,
0: ओके,
1: हाइट पर्सनैलिटी में बड़ा है।
0: अच्छा।
1: और अपना बड़प्पन मुझको बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है।
0: अरे वाह।
1: और हम लोग शरारत भी बहुत करते हैं, डांट भी खाते हैं पापा मम्मी से।
0: हाँ।
1: और कोई भी हम शरारत करते हैं तो एक दूसरे को नाम लगा देते हैं कि मैंने नहीं किया, इसने किया।
0: लेकिन अच्छा, ये आपने कहा कि शरारत हम सब करते हैं लेकिन इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मम्मी को किस पर डाउट होता है कि ये ही हर शरारत कर सकती है, ये कर सकता है?
1: उस पे
0: अगर वो ना करे तो भी उस पर आप इल्जाम लगा देते होंगे ना बेचारे पे, हाय अथर
1: वो करता ही शरारत।
0: अच्छा, वो शांति से नहीं बैठ सकता, नटखट बालक है,
1: बहुत नटखट।
0: ओके, तो ये तो उनकी शरारती वाली आपने बात की, नटखटपन उनका, लेकिन जो अच्छी बातें हैं कुछ, जैसे आपने कहा कि उम्र में छोटे हैं लेकिन उनकी बातें बहुत बड़ी हैं, तो कुछ होशियारी वाली बातें भी उनकी बताइए, जो इंटेलिजेंस,
1: जैसे कि वो बाहर बहुत रहा है, छोटे से बाहर रहा है।
0: अच्छा।
1: तो और मैं अब जाके निकली हूँ बाहर।
0: हाँ।
1: और उसने मुझे समझाया कि किस तरीके से हम बाहर रह के चीजें सीखते हैं।
0: हाँ।
1: क्या सही गलत होता है, लोग भी आजकल सब तरीके के होते हैं।
0: एग्जैक्टली राइट,
1: समझना पड़ता है।
0: हाँ।
1: मुझे समझाता है कि इस तरीके से रोड क्रॉस करनी है, तो जो ट्रेन यहाँ से मिलेगी, बस यहाँ से मिलेगी, ध्यान से रखना, अपना फोन अंदर रखना, बैग को संभाल के रखना, या फिर अनजान लोगों से बात मत करना, कोई अपनी लोकेशन ऑन रखना, मुझे भेजना, कोई भी परेशानी हो या दिक्कत हो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पर उसके संग अगर मैं स्कूटी या बाइक पे बैठ गई तो मेरा कनेक्शन सीधा यमराज के साथ होता है।
0: अच्छा जी, मतलब वो स्कूटी चलाते नहीं, सीधा उड़ाते हैं। ओके, और जब आप बैठकर चलाती हो वो पीछे बैठते हैं, आप चलाती हो?
1: मेरे पीछे बैठता ही नहीं है।
0: अच्छा,
1: मैं बहुत धीरे चलाती हूँ।
0: ओके, और जब आप उनके साथ बैठती हो तो तिगड़म हो जाती है भैया, वो कहता है कि नहीं मैं ही चलाऊंगा स्कूटी, तो आप मुझे पहुंचाओगे 10 मिनट में, मैं पहुंचा दूंगा 5 मिनट में। ओके, वैसे अथर्व की बातें बहुत प्यारी हैं और मुझे अच्छा लगा, उसकी नटखटपन, उसका जो इंटेलिजेंस है, जो जो आपके प्रति परी प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। सो थैंक यू सो मच। बाकी और क्या कहना चाहोगे आज, इतने सारे तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं इस वक्त?
1: मैं सबको बस ये कहना चाहूंगी कि लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते हैं।
0: हाँ।
1: और बस हमें अपने रिश्ते को बचाना है, और गलतियां सबसे होती हैं, कोई बात नहीं होता है, बस माफ कर देना है। और भाई बहन के रिश्ते में अगर झगड़ा नहीं है तो फिर किसके रिश्ते में है?
0: हाँ, वो तो और हाँ, अभी हम राखी भी तो आने वाली है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, राखी आने वाली है, मैं उसको राखी और टीका करती हूँ।
0: हाँ, हाँ।
1: तो वो घर पे आता है, राखी टीका करती हूँ।
0: हाँ।
1: मिठाई खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और वो बिना कहे मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लेके आता है। वो समझ जाता है कि मेरी बहन को ये चीज चाहिए, मेकअप का सामान हो या किट हो, पेंसिल हो, पेन हो, या फिर मेरे लिए ज्वेलरी हो, सब चीज मेरे को उसको पता होती है कि मुझे क्या चाहिए, वो लेके आता है। तो फिर है तो मेरा प्यारा भाई।
0: यार कुल मिलाकर तो बहुत क्यूट भी है, इतनी सारी आपने बातें बताई हैं। लेकिन पता है आपको, मेरे भी भाई ना मतलब बहुत प्यारे हैं दोनों, जो बिग ब्रदर हैं वो तो सच में बहुत प्यारे हैं। एक्चुअली मेरे बिना बोले वो मेरी हर चीज़ पसंद के लिए आते हैं, और उनकी चॉइस बहुत प्यारी है, मुझे मैं कभी उनकी चॉइस को रिजेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ। लाइक हर एक चीज़ उनकी बहुत प्यारी होती है। अभी मेरा बर्थडे था 20 जुलाई को, तो उन्होंने मुझे को ड्रेस गिफ्ट किया। मैं कभी शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद के लिए खुद शॉपिंग नहीं की है मैंने अभी तक, हमेशा ब्रदर ही कर लेकर आते हैं मेरे लिए। तो अभी उन्होंने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया, इतना प्यारा था सच में, मुझे लगा नहीं था कि लाइक मैं इतनी प्यारी लगूंगी। उनका प्यार बहुत है, और जो भी मेरी भाभी जी आएंगी वो बहुत लकी होंगी। या और जो छोटा भाई है वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन उसका ये है कि कभी भी जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कहीं मार्केट में जा रही हूँ, तो हमेशा मेरे को साइड में नहीं रखता है, मतलब साइड में छिपा के रखता है कि कहीं गाड़ी से चोट ना लग जाए, कहीं कोई आके टच ना कर दे। बहुत केयर करता है, हमेशा संभाल कर लेकर जाता है, और बहुत प्यारा भी है।
1: भाइयों की ये बात बहुत अच्छी होती है कि वो अपनी बहनों को बिल्कुल फूल की तरह रखते हैं,
0: बहुत संभाल कर रखते
1: हैं। उनको सिखाना होता है कि कहाँ पे डिफेंस करना है, वो सिखाते भी हैं।
0: हाँ, वो सिखाते भी हैं, बिल्कुल पापा जी का भी निभाते हैं ब्रदर उसी तरीके से। और आज तो बहुत ज्यादा तारीफें हो गई है उनकी, तो वो बहुत खुश हो गए होंगे।
1: हाँ,
0: अब पता है रक्षाबंधन में डबल गिफ्ट मिलने वाला है, इसलिए थोड़ी सी तारीफ मैंने एक्स्ट्रा इसलिए की है। तो चलो अभी तो ये हमारी गपशप हुई परिधि से, और खुशी की आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी। आई होप आपने को भी अपना बचपन याद आ गया होगा, वो प्यारी सी बहन भाई वाली यादें, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं ये परी मेरा ये मानना है कि जो हमारे पास टाइम है, जो अभी इस पल हमारे पास वक्त है, उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल कैसा होगा, किसी को नहीं पता होता है। तो जो पल है उसमें खुश रहो यार, जो होगा देखा जाएगा, क्यों टेंशन लेनी, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसे मुस्कुरा कर जियो और प्यार
1: ऐसे जियो
0: जैसे कि आखिरी हो। या एग्जैक्टली, तो चलो फिर यही वाला गाना सुन लेते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम आ गया है दोस्तों, तो एड ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। बने रहिए, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए
0: और मुस्कुराते रहिए परी एंड खुशी की तरह।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक है आप सभी का. आरजी खुशी अगेन वेलकम करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और दोस्तों अभी वक्त हुआ है 11:41 और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, आज 24 जुलाई का दिन सिख इतिहास में बेहद प्रेरणादायक माना जाता है. आज मनाया जाता है मीरी पीरी दिवस, जो हमें आध्यात्मिकता और शक्ति के अद्भुत संतुलन का संदेश देता है. गुरु गोविंद साहिब जी इस दिन दो तलवारें धारण किए थे, मीरी और पीरी. मीरी का अर्थ सांसारिक जिम्मेदारियां, न्याय और समाज की रक्षा, जबकि पीरी का अर्थ है आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा. गुरु हरि गोविंद सिंह साहब जी ने सिखाया है कि एक इंसान को केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी रखना चाहिए. जीवन में भक्ति और शक्ति, दया और वीरता दोनों का संतुलन ही सच्ची इंसानियत की पहचान है. और आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में प्रेम, सेवा, साहस और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तथा हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. मीरी पीरी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. वाहेगुरु जी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे. और दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे आपके मैसेज आए हैं, संदेश आए हैं, उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, खुशी जी नमस्ते. ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सलीम अंसारी जी, साथ में चमन जी हैं एंड इनाया सनाया, और साथ में इनके बेटे भी हैं सुहान अंसारी. कहते हैं हमारी दोस्त भी मैम कासिम अलवी जी, खुशी जी आपका शो हम सुनते हैं लगातार पर मैसेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम टाइम नहीं मिल पाता है, और आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम सुनते हैं. परसों आपका बर्थडे भी था. जी हाँ सर, मेरी बर्थडे मंडे में था और आपको याद रहा, उसके लिए शुक्रिया. ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं अपने मिसेस के लिए, बीवी नंबर वन. हाँ जी, बीवी को हमेशा नंबर वन बोलिएगा, तभी वो गर्मा गर्म खाना बना कर देंगी आपको, समझ रहे हैं. चलिए आगे एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शैयद इशारी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप. मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका मॉर्निंग मसाला शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आज आपके स्टूडियो में एक लिसनर भी आए हैं, उन्होंने भी उनकी भी हमने बातें सुनी, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सवाल कर गई, बहुत प्यारा गाना है, सुनवाएंगे इसको भी. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं पाकिस्तान से, एक सर हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना वॉइस नोट हमें पहुँचाया है, तो आज की सुबह क्या पहुँचाते हैं सर, जरा सुन लेते हैं उनकी आवाज भी.
1: आदाब अर्ज है, मैं पाकिस्तान कराची से राशिद नास बात कर रहा हूँ. आपने कहा हमारे शो में शामिल हुए, तो हमने फिर सोचा कि क्यों उन्हें हैं शो में शामिल किया जाए, कोई इतने प्यार से बोल रहा है, तो आपके शो में शामिल भी हो गए. और गाने जो आप सुना रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा, ज़बरदस्त गाने हैं, और आपने अगर इसका जवाब दिया कुछ तो फिर मैं आइंदा भी आपके प्रोग्राम में इसी तरह शामिल होता रहूँगा. थैंक यू.
0: मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना संदेश हमें पहुंचाया. एंड देखिए दोस्तों, इंडिया में भी हमें सुन ही रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से भी मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतनी दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ हैं. ये रेडियो का ना, रेडियो एक ऐसा ही माध्यम है दोस्तों, चाहे आप इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, ये हर जगह आप तक पहुँच ही जाता है, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता जो है आपका और हमारा. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मन पसंद आरजे खुशी जी, राधे राधे, आपको भी राधे राधे. ये मैसेज अपना पहुंचा दें अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं. थैंक यू सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दूल्हा अंसारी जी भी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, हैव अ नाइस डे, सेम टू यू सर। एंड इन्होंने एक ओल्ड ईयर ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको प्ले करने की। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। हम लौट कर आते हैं अभी प्यारे से गाने के उस पर, आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

हाय एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। देखिए दोस्तों, टाइम बताते हैं हम आपको, 11:56 हो गए हैं और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक बीवी नंबर 1 टाइटल ट्रैक। एंड दोस्तों, कुछ गाने ने बड़े प्यारे होते हैं और जो इस समय हमारी विमेंस जो हमें सुन रही हैं, विमेन सुन रही हैं, जो गर्ल्स हमें सुन रही हैं एंड जो अभी फीमेल्स हमें सुन रहे हैं, तो वो तो बड़ा खुश हो रहे थे। जो मैरिड हैं, ओहो वाइफ की इतनी तारीफ सुनकर सुबह सुबह चेहरा ही खिल गया। क्यों हो जाता है? देखिए, आपकी जो मिसेज हैं वो घर में इतनी जिम्मेदारी निभाती हैं, आपका इतना ख्याल रखती हैं, तो आज की सुबह उनके लिए एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट तो बनता है ना दोस्तों। तो चलिए, आपकी जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचवाते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी, साथ में इन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। पूरा प्रयास करेंगे सर उसको सुनवाने की। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है सलीम अंसारी जी का और ये कहते हैं, थैंक यू खुशी जी, मोस्ट वेलकम सर। देखिए, खुशी का काम है खुशियाँ बांटना और अच्छा लगता है जब आप सब कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैम बहुत ही अच्छे हैं। ये मैसेज हमारे पास मुस्कान जी का आया है मुरादाबाद से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अमरोहा से नेहा जी का, कहती हैं, खुशी मैम कैसे हैं आप? आप अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें देती हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। नेहा जी, इंटरटेनमेंट का डोज देना खुशी का काम है और जानकारियाँ भी पहुँचाना, उसके साथ साथ अच्छे गाने भी सुनवाना। और जब आप सब मुस्कुराते हैं तो हमारा दिन ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में ना तकलीफ तो सब दे देते हैं लेकिन खुशी बहुत कम लोग देते हैं, और हम वो लकी हैं जो आपको खुशियां पहुंचाते हैं। तो फिलहाल दीजिए मुझे अभी जाने की अनुमति एवरीवन, मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपको 3 बजे, ठीक है? तो कॉल जरूर कीजिएगा आप। बाय बाय, टेक केयर।

0: फास्ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ मिलने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75

रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तय किया था। इस दिन का मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए काम करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराना होगा।
0: भैया, क्या ये सिर्फ जागरूकता के लिए है या इसके पीछे और भी उद्देश्य हैं?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सके। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: इस साल की थीम क्या है और इसका क्या मतलब है?
1: इस साल की थीम है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, जरा आसान भाषा में बताइए, मलेरिया आखिर होता क्या है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुँच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ,
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
0: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: भारत का लक्ष्य क्या है?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। PHC और सब सेंटर से मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सेहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा फैले।
0: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
1: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गाँव में नियमित रूप से इंडोर रेसिड्यूअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
0: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
1: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है, इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
0: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
0: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
1: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पे जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
0: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
1: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं, बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में ना ले।
0: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
1: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अभी डॉक्टर ने 3 या 7 दिन की दवा दी है, तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
0: तो आखिर समाधान क्या है?
1: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
0: तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
1: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुँच जाएगी, तब मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहाँ सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
1: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई, जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
0: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
1: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
0: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
0: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
1: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
0: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा।
1: अब हम कर सकते हैं
0: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ कई। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ FM मुरादाबाद 89.6 MHz।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां, तेरे मेरे फासलों के बीच।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्जरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आर्जरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आर्जरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन ने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी, यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
0: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: देखिए आर्जरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखें, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
2: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
1: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
2: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
2: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
1: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलो अप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
2: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी

0: बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षेप और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज

0: केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
4: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
5: कुछ नया है
4: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
5: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
4: जी
5: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
4: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
4: जी।
6: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
4: जिसका नाम है सोच बदलो।
6: जिसका नाम है सोच बदलो।
4: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
7: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
4: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
5: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
4: करेक्ट?
5: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं? तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
4: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
5: चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
4: एडवाइस
5: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं, तब सुनिए आप उनकी।
4: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना? बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
6: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
4: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
7: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
4: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो शैली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: को मेरा तो मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: आज से नहीं, मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। और वो आगे बढ़ने का अवसर है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव ही चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजिंग यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक,

0: में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
1: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
0: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है। बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी, अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: है। फैमिली ज्यादा आती
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
0: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
1: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
0: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
1: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
0: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
1: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
1: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
0: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
1: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
0: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
1: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
0: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
0: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
1: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
0: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
1: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
0: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे वैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पूर्वी

0: उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है।
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
2: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक नए सफर में। नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: करो।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

0: बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
6: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @eairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
7: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स. द इंडिया ईयू एफटीए इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है. ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया. भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया. अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है. एक रिपोर्ट.
8: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है. पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है. किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है. दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए. नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित. सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए. और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी डे आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम महिला मंच में बात करने वाले हैं। आज का हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने मेहनत, अनुशासन और अपनी अलग पहचान से करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे स्टार अक्षय कुमार जी की। तो एवरीवन, आज हमारे साथ में परी यहाँ पर हैं और परी से भी जानते हैं कुछ अक्षय कुमार जी के बारे में। तो हाँ जी परी, आप क्या कहना चाहेंगी?
1: आज अक्षय कुमार के बारे में बात हो रही है और उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी।
0: अब जर्नी की बात आपने की है तो अक्षय कुमार जी की जर्नी के बारे में तो हम भी जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अक्षय कुमार जी के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि एक्टर्स सभी को पसंद है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार जी का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनका जन्म 9 सितंबर 1976 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेल और मार्शल आर्ट का बहुत शौक था।
1: मार्शल आर्ट सीखने के लिए वे बैंकॉक भी गए थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक होटल में शेफ और वेटर का काम भी किया था। यह संघर्ष उनकी जिंदगी को सबसे बड़ी सीख बना।
0: जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ना कि एक्टर की लाइफ कितनी इजी होती है ना, मतलब इतना पर्दे पे आना, एक्टिंग करना, यही काम होता है। लेकिन हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है दोस्तों। अब आपकी लाइफ में भी होगा, हर कोई अपनी लाइफ का हीरो है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी की, और अभी जैसे हमें बताया परी ने कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बने हैं अक्षय कुमार जी। भारत लौटने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया।
1: मॉडलिंग के बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। उनकी पहली फिल्म सौगंध 1991 में आई थी, लेकिन असली पहचान उनको खिलाड़ी 1992 से मिली। इसके बाद उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा और वो आज भी खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं।
0: और दोस्तों, 1990 के दशक में उन्होंने कई एक्शन फिल्में की, लेकिन वो सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में भी हाथ आजमाया। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार कमिंग अभिनेता भी बना दिया। इसके बाद एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से उन्होंने सामाजिक और देशभक्ति से जुड़े विषयों पर भी काम किया।
1: साल 2001 में अक्षय कुमार ने अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी की और आज उनके दो बच्चे हैं। वे अपनी फिटनेस और अनुशासित जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और समय का बहुत सम्मान करते हैं। यही आदतें उन्हें आज भी फिट और सफल बनाए हुए हैं।
0: हाँ, अभी बात की आपने परी कि अक्षय कुमार जी एवरी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठते हैं, राइट? तो आप मुझे बताइए, मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ, आप कितने बजे सुबह सोकर उठती हैं?
1: मैं तो सिचुएशन के हिसाब से उठती हूँ। अगर सुबह को जल्दी काम है तो जल्दी उठ गए, और अगर सैटरडे संडे है तो आराम से अपना समय लिया और फिर अपना काम शुरू किया।
0: ओके, कभी ऐसा हुआ है परी कि आपने सोचा कि आज मैं जल्दी उठूंगी और आज मैं सारे काम करूंगी, लेकिन उसी दिन आपको लेट नाइट नींद आई और आप लेट उठे?
1: मैं तो हर रोज सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के सब काम करूंगी, पर आलस इतना है कि बस नींद ही नींद आती है और कुछ नहीं। काम के नाम पे भी आलस आता है।
0: ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ पर आज स्टूडियो में जब आप आई हो तो यहाँ पर तो आपके चेहरे पर कोई आलस नहीं झलक रहा है, यहाँ पर तो बहुत एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है।
1: यहाँ पे एनर्जी इसलिए है, सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के संग मैं हूँ यहाँ, तो मुझे एनर्जी आ गई है आप लोगों से बात करके, मिलके। और एक तो हमारा टॉपिक भी इतना हॉट है।

0: मिल होने तक का उनका सफर हर किसी के लिए प्रेरणा है।
1: तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है, आज से ही उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कौन जाने अगली प्रेरणादायक कहानी आप ही हो। तो दोस्तों, अभी हमने बातें की हैं अक्षय कुमार जी के बारे में, और उनके गानों का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए, अक्षय कुमार जी की फिल्म का एक शानदार गाना सुनते हैं। थोड़ा सा आपको भी थिरकाएंगे और थोड़ा हम भी थिरकेंगे। तो मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

हमें महिला मंच, और आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। तो दोस्तों, अब अक्षय कुमार जी के बारे में हमने बात की है, अब बात करते हैं उनके कुछ सुपरहिट गानों के बारे में। दोस्तों, उनका एक शानदार गाना है टू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, टिप टिप बरसा पानी, जो कि मानसून आपको बताइए चल ही रहा है। और ये गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास इतनी आती है ना एवरीवन, मैं आपको काउंटिंग नहीं करा सकती, मतलब मैं काउंटिंग करना ही भूल जाऊंगी, इतनी बारी हमें रिक्वेस्ट आती है इस गाने की। और अगर एक गाने की और बात करें, गो गो गोविंदा, दिल ने ये कहा है दिल से, फ्रॉम द मूवी धड़कन, याद आया आपको? वो राम का किरदार कितनी खूबसूरती से अक्षय कुमार जी ने उस किरदार को निभाया, और वो फिल्म तो सभी की धड़कनों में बसी हुई है, क्योंकि गाने इतने प्यारे प्यारे हैं धड़कन मूवी के। शिल्पा शेट्टी जी, साथ में सुनील शेट्टी जी, अक्षय कुमार जी का किरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक अच्छे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया, एक अच्छे पति का रोल उन्होंने प्ले किया, बहुत ही अच्छी फिल्म रही है अक्षय कुमार जी का वो।

0: मासूम सा चेहरा। और अब बात करते हैं हम तेरी ओर, कैटरीना कैफ जी के साथ ये प्यारी सी फिल्म की है। तो गाना कितना प्यारा है ना, तेरी ओर। हम आपकी ओर चले आते हैं, एवरी डे आपके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, लाल घगरा ओए होए होए, सौदा खरा खरा, आपको पता है ये गुड न्यूज मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक है। और तो दोस्तों, अभी आपने ये सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा है बाला बाला एंड जैसे गाने आज भी लोगों की प्ले लिस्ट में शामिल है। और इन गानों पर आज भी पार्टियों और शादियों में लोग झूमते हैं। मैं तो बहुत झूमती हूँ, बाकी परे आप बताओ, आप कैसे झूमती हो इन गानों पर? क्या अभी इन गानों को पसंद करती हो?
1: बिल्कुल, अक्षय कुमार के सभी गाने, उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग के तो हम सभी दीवाने हैं। और उनकी फिल्में भी हम देखते हैं, उनके गानों पर भी झूमते हैं। और वो इतनी कॉमेडी फिल्में करते हैं, उसमें भी हम सबको कितनी हंसी आती है। उनके संग जो कलाकार होते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी सब बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हंसाते हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अक्षय कुमार के संग काम करना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क है, क्योंकि उनका हम छोटा सा एक अक्षय कुमार का डेली रूटीन जानेंगे, जिसमें क्या आपको पता है दोस्तों कि वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और अपनी लाइफ को पूरे डिसिप्लिन में रखते हैं। सुबह उनके उठने का समय आप लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे, 4:30 से 5 बजे तक वो उठते हैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, वो मुंबई की बीचों पर रनिंग करते हैं, वो अपने घर में संतुलन बनाए रखते हैं, खाना पीना भी वो बहुत संतुलित मात्रा में खाते हैं। और वो शाम का सूरज जो जब ढल जाता है, सनसेट हमारा हो जाता है, उसके बाद वो ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं और वो 9:30 तक सो जाते हैं। और उनका मानना है कि अच्छी सेहत ही असली दौलत है। कितनी बढ़िया बात कही है। आजकल लोग पैसों पे मरते हैं और दौलत पे मरते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर अक्षय कुमार पहले ऐसे एक्टर हैं जो सेहत को दौलत मानते हैं। इससे बड़ी बात सीखने के लिए और हमारे पास क्या हो सकती है?
0: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा परी कि सबसे जो कीमती होती है वो होती है हमारी सेहत।
1: सही बात,
0: क्योंकि हम अगर फिट रहेंगे तभी तो हम हर एक चीज का लुत्फ उठा पाएंगे ना। और जब हमारी सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो हमारे पास कितना भी पैसा आए, कितना भी ऐशो आराम आए, हम उसका लुत्फ ही नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, जो फिट है वो हिट है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे परी?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे तो अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे और खुद का भी ध्यान रखेंगे।
0: बहुत अच्छा बोला है आपने। तो फिटनेस की बात अगर आई है तो हम से भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, एक्टर के साथ साथ ना अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना बनता है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब अपने बारे में हम थोड़ा सा गपशप करते हैं। देखो परी मुस्कुराने लगी है अभी से ही। तो परी मुझे आप बताओ, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं?
1: एक्सरसाइज तो जैसे की वॉकिंग हो गई, कि रात का खाना खाने के बाद हमने थोड़ा टहल लिए और फिर पेरेंट्स के संग थोड़ी देर क्या बोलते हैं टहलते टहलते बात करते करते आगे निकल गए, जिससे फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है और पापा मम्मी साथ मेरी वॉक हो जाती है और उनकी वॉक हो जाती है। तो वॉकिंग क्या होता है कि उससे आपका जो नसें हैं वो ठीक रहती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक रहता है। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात, वॉकिंग करने से आप ये देख पाते हैं कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपको गॉसिप्स मिल जाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और शायद लड़कियों में तो गॉसिप इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी गॉसिप इकट्ठी कर लेती हैं।
0: जब वो एक बार बोलना शुरू करती है ना एवरीवन, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है।
1: जैसे कि आप हम लोगों को ही देख लीजिए
0: जब तक कोई हमें कहना दे कि रुक जाइए। अब हम आरजी का काम ही होता है बोलने का, और दोस्तों तभी तो उस फील्ड में आए है ना।
1: वैसे तो खुशी मैम, आपने बहुत पूछ लिया मेरे बारे में, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और ऑडियंस को ये बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या है। आप सुबह कितने बजे उठती हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करती हैं, खाना पीना क्या खाती हैं, और आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करती हैं?
0: ओके, तो आपने बात की मेरी फिटनेस के बारे में कि आप कैसे क्या आपका डेली रूटीन होता है, आप कितने बजे सोकर उठती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो टाइमिंग है सोकर उठने का, वो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ। और 5 बजे उठकर पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज के लिए, एक नया सवेरे के लिए, एक नए दिन के लिए, और इतनी उन्होंने अच्छी लाइफ हमें दी है, इतना अच्छा जीवन दिया है। एंड उसके बाद मैं करती हूँ वॉक पर जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में।
2: गाइस ये सच नहीं बोल रही है
0: तो मैं सुबह सुबह वॉक करने जाती हूँ, टहलने जाती हूँ, और सुबह का वातावरण इतना खूबसूरत होता है, चारों तरफ एकदम शांत माहौल होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। और सुबह मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सीनियर सिटीजन तक, सभी लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी करना चाहिए। तो मैं सुबह सुबह ऐसे दिन की शुरुआत करती हूँ। और मैं बताना ही भूल गई कि मैं पहले गुनगुना पानी भी पीती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, फिर आकर स्नान करती हूँ, फिर घर के सारे काम करके पूजा करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर ऑफिस चली आती हूँ। उसके बाद आकर जो अपने काम होते हैं वो रूटीन वो करते हैं। फिर शाम को जब मैं अपने घर जाती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। पहले मैं आराम से सो जाती हूँ, फिर अपने काम को फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हमारा इतना बिजी होता है कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता और बॉडी आपको बताया कि थक जाती है। तो फिर मैं आराम करने के बाद शाम को फिर डिनर बनाती हूँ, कुछ हल्का लाइट वो खाती हूँ, फिर 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन है। तो दोस्तों देखिए, आपने मेरे बारे में परी ने पूछा तो मैंने बता दिया, ये मेरा डेली रूटीन है। हाँ,

0: आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है दोस्तों, क्योंकि आप सबको एफएम मुरादाबाद से प्यार है, तो हमें आपसे प्यार है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अक्षय कुमार जी की कुछ हिट फिल्मों के बारे में। अब बात करते हैं अक्षय कुमार जी की हिट फिल्मों के बारे में। दोस्तों उनकी फिल्म रही है मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, राउडी राठौर, राउडी राठौर, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, पैडमैन, गोल्डन केसरी, मिशन मंगल, सूर्यवंशी और ओएमजी जैसी फिल्मों ने उन्हें हर बार जैसी फिल्मों ने उन्हें हर वर्ग का पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
1: दोस्तों अब हम जानते हैं अक्षय कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 30 से अधिक वर्षों का फिल्मी करियर रहा है उनका, 150 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और कुछ फिल्मों में तो उन्होंने अपने स्टंट्स खुद किए हैं। फिल्मों से हटके अगर हम थोड़ी बात करें, रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी भी उन्होंने होस्ट किया है, और उससे थोड़ा और हटके बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है।
0: तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। दोस्तों संघर्ष से सफलता तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और अनुशासन उसे संभव बना देता है। कहते भी है ना कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अक्षय कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि समय की पाबंदी, फिटनेस और मेहनत की मिसाल है। इसी प्रेरणा के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक नए कार्यक्रम में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक आपका अपना बैंक, सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
4: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
3: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
4: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
3: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
4: बस एक कदम
3: और सपनों को नई रफ्तार।
4: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में आइए
3: या विजिट करें बैंक वेबसाइट।
4: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक,
3: सचमुच आपका।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना सत्येंद्र सरताज जी की आवाज में। प्यारा सा गाना किसी ऐसी ही निगाह मैंने तक किया। देखिए दोस्तों, ये जो आंखें होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। जब एक बार इनका दीदार हो जाता है ना, तो भूलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और श्रोताओं, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं एवरी डे 3 से 5 हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं। तो ये मौका आपके पास है, गोल्डन चांस है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फटाफट से फोन उठाना है और मुझे कॉल लगाना है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और अभी सुनिएगा एक शानदार सा गाना। मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, मुझे फोन लगाइए। मुझे तो यकीन है कि आपका कॉल जरूर लग जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा दिन है फ्राइडे का, और बारिश भी हो जाती है तो कभी थम भी जाती है। हाँ, मानसून स्टार्ट है, इसमें अपना ख्याल रखो। बदलता मौसम है, खांसी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना, तो आप हर मौसम का लुत्फ उठा पाएंगे। ये प्यारा सा गाना सुनो, बस मैं आती हूँ अभी।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आपने सुना केसरिया तेरा इश्क है पिया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा गाना। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारी फरमाइश करता। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज अपना नाम बताइएगा और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर, की तो वॉइस ही नहीं आ रही है, ये भगवान, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क इशू हो जाता है, बट कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लो, आप मुझे तुरंत कॉल लगाओ, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं तीरथ सिंह बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, गांव फरेदी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी ठीक है मैम, आप सुनवाइए FM मुरादाबाद में सभी लोग किस प्रकार।
0: हाँ जी, FM मुरादाबाद में सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है सर?
1: जी मौसम तो अभी बारिश हुई है,
0: अच्छा
1: धूप निकली हुई है।
0: ओके, अब धूप निकल गई है, तो बताइएगा इतना प्यारा सा मौसम हुआ, बारिश हो गई है, तुरंत धूप भी हो गई है, कौन सा गाना सुनेंगे आप आज?
1: मुझे कोई सावन का गीत सुनवा दीजिए।
0: सावन का गाना, ठीक है सर, सुनवाते हैं कोई प्यारा सा सावन का गीत आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक प्यारा सा सावन का ट्रैक, क्योंकि सावन भी मतलब आने ही वाला है एंड मानसून तो स्टार्ट है ही, तो चलिए सुनते हैं एक शानदार से गाना, उसके बाद करेंगे आपसे गुफ्तगू, आप ही मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा से गाना सुना फ्रॉम द मूवी साजन का घर। एंड इस खूबसूरत फिल्म ने एक खूबसूरत गाना फिल्माया गया था ऋषि कपूर साथ में जूही चावला जी पर। और इस गीत को खूबसूरत आवाज में गाया था कुमार सानू साथ में साधना सरगम जी ने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंसार हुसैन जी बात कर रहे हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। हाँ
1: जी
0: बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, आप सब ठीक हैं?
0: हाँ जी आपकी दुआएं हैं, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा।
1: अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है और बड़ी जिम्मेदारी से निभाती है आप कार्यक्रम का।
0: जी शुक्रिया सर, थैंक यू।
1: सब श्रोताओं का मतलब ख्याल रखती है,
0: थैंक यू सर। सच में ये एक जिम्मेदारी है और बखूबी हम पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से निभाएं।
1: और जो बातें काम की आप बताती हैं वो भी बहुत लाभदायक होती है।
0: थैंक यू सो मच सर। आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है ना?
1: हाँ सब ठीक है, मौसम भी अच्छा है, आज छुट्टी का दिन है।
0: हाँ आज फ्राइडे है तो आप घर में आराम फरमा रहे हैं? हाँ जी जी जी बताइएगा कौन सा गीत आपको सुनना है। रंग बसंती।
1: रंग बसंती रंग बसंती।
0: ठीक है सर सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: यार सब खुश रहे और सच बोलना बस यही है।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं अंसार हुसैन जी की रिक्वेस्ट पर ये शानदार सा गाना फ्रॉम द मूवी रंग बसंती से। एंड बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तो सब मिलकर आनंद लेते हैं, मौसम भी बहुत ही प्यारा है।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा से गाना सुना, रंग बसंती टाइटल ट्रैक। एंड राजा और रंग मूवी से प्यारा से गाना सुना आपने। दोस्तों आप भी कोई गीत हमें सुनना चाहते हैं FM मुरादाबाद 89.6 पर, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। और इस खूबसूरत गीत को गाया था लता मंगेशकर जी, साथ में मोहम्मद रफी साहब जी ने। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश, कौन कहां से बात करें, क्या सुनना चाहते हैं आज, बात करते हैं उन्हीं से। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? शबनम जी, प्लीज थोड़ा सा फोन के करीब आ जाइए या थोड़ा सी अपनी वॉइस को बढ़ाइए।
1: जी दीदी, अब बताइए आप कैसी हो।
0: पहले ये मुझे बताइए, आप इतना धीरे क्यों बात कर रही थी?
1: बस कुछ नहीं, बाहर लोग बैठे।
0: अच्छा ओके, तो अभी आप आराम से खुलकर बात कर पा रही हैं हमसे अच्छे से, राइट जी। बताइए शुभनम जी, कैसे हैं सब आपके यहाँ पर? और आप?
1: सब लोग अच्छे हैं, मजे में हैं, और सब लोग बैठे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: दीदी दो नाम
0: जी बताइएगा। ओके, सुन रही हैं वो इस वक्त हमें और आपको?
1: वो भी सुन रहे हैं, लाइन पर हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया शबनम जी। मोस्ट वेलकम। इतना स्वीट बोलोगे ना थैंक यू, तो हम बस आपसे ही बात करते रह जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर। तो चलिए शबनम अब्बासी जी की पसंद पर सुनते हैं ये शानदार से गाना एवरीवन, फ्रॉम द मूवी नाजायस। और इसका बड़ा प्यारा सा इस मूवी का ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत सा। बरसात के मौसम में बारिश कहीं कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। एंड जहां नहीं हो रही है तो हम तो प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि बारिश हो जाए, और जहां बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहां रिक्वेस्ट करेंगे कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी

0: सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, ओटी, एसआईसीयू, एमआईसीयू हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ खुशी के साथ। हेलो फरमाइश शो एंजॉय कर रहे हैं। एंड दोस्तों, आप भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो जल्दी से कॉल लगाइए। आलस बिल्कुल भी मत दिखाइए, क्योंकि आलस करने से ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है? तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो और अपना फेवरेट गाना सुनते जाओ। फिलहाल अभी हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है, उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका सर?
2: सलीम अंसारी बोल रहा
1: है। सलीम अंसारी जी बात कर रहे हैं
2: जी।
1: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
2: हाँ बढ़िया, खुशी जी आप सुनाइए।
1: हाँ जी,
2: सब लोग कैसे हैं?
1: सब बहुत ही अच्छे हैं, और काफी लॉन्ग टाइम की बात आज आपने कॉल किया है। कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताइएगा।
2: बहुत बढ़िया लग रहा है, हम तो याद करते हैं, प्रोग्राम तो रोज सुनना है हम।
1: अच्छा, शो रेगुलर सुनते हैं लेकिन कॉल नहीं करवाते हैं?
2: नहीं, कॉल आ रही हमारी, नहीं मैसेज आ रहे हैं। आज हमने मैसेज दिया था आपको।
1: जी जी जी बिल्कुल सर, हमने मॉर्निंग में। ओके, तो आज फ्राइडे है, आपकी छुट्टी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको परिवार के साथ?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है।
1: ओके, अच्छा लगता है जब परिवार के साथ समय बिताते हैं, और बच्चे भी बहुत सारी बातें करते हैं।
2: बच्चे बहुत सारी
1: बातें करते हैं। हाँ जी, तो आज का पूरा दिन कैसा जा रहा है आपको बताइए हमें, सुबह से लेकर अभी तक का?
2: बढ़िया जा रहा है। आज हम अपनी बात से खाना ही नहीं बनवा रहे, वही रेडीमेड आएगा सब कुछ।
1: ओए होए होए, फिर तो चमन मैम तो और खुश हो जाएंगी।
2: आज इनका दिन मना है।
1: चलिए, वो हंस भी रही है, पीछे पीछे मुस्कुरा रही है। जी अच्छी बात है सर, होना भी चाहिए ऐसा। तो आज आपने कॉल किया है, काफी समय की बात, बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका सर?
2: गाना सुनेंगे, शाम खूब है, पास महबूबा।
1: ओके, अमेजिंग ट्रैक। तो ये गाना किनकी पसंद का है मैम, की आपकी पसंद का है बताइए?
2: क्या भाई, मैम की पसंद का है।
1: ओके, तो फिर तो चार चांद लग जाने इस गाने को सुनने के बाद। चलेगा, सुनवाते ही गाना। आपने हमें कॉल किया सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, कुमार सानू साथ में उदित नारायण जी की आवाज, और अलका याग्निक जी भी दे रही है साथ। तो सुनते हैं इस अमेजिंग ट्रैक को, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे बातचीत करने वाली हूँ। आप भी मुझे कॉल लगाना ना भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896।

0: दोस्तों अभी आपने ये खूबसूरत सा ट्रैक सुना उदित नारायण कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज, शाम भी खूब है पास महबूब है। लेकिन दोस्तों सच में शाम का वेदर जो होता है ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, और हमारे मुरादाबाद की अगर बात करूँ ना तो कहीं बारिश होती है तो कहीं बारिश नहीं हो पाती है। अभी जो दोपहर में बारिश हुई थी तो हमारे मतलब कुछ जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं, उनका कॉल आया कि बताइए खुशी क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक है बारिश हो रही है इधर, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारी साइड तो बारिश नहीं हो रही है। मैंने कहा ऐसा भी होता है? तो मुरादाबाद का मौसम थोड़ा अलग है, बट हाँ मौसम भले ही अलग हो इंसान बहुत अच्छे हैं मुरादाबाद के। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: राम राम मैडम जी।
0: आपको भी जय श्री राम। क्या नाम है आपका?
1: अंकित गिरी नाम है मैडम।
0: अंकित गिरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नंबर 9 पर हनुमान नगर से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा सर कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग? हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आप क्या सुनना चाहते हैं सर? ओके ये गाना आप अपनी मामा के लिए सुनना चाहते हैं? ठीक है सर सुनवाते हैं गाना आपको, आपने हमें कॉल किया धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गाना उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। एंड आप भी मुझे जल्दी से कॉल कीजिएगा, नंबर हमारा रहेगा 9837898986।

0: कोई मिल गया,
1: कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
6: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
6: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
5: से संपर्क कीजिए।
6: नियम और शर्तें लागू।

0: दोस्तों 4:04 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी नटखट सी आरजे खुशी और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश भी यहाँ पर। हेलो फरमाइश नहीं, आप बोलेंगी तो आवाज आएगी, आप नहीं बोलेंगी तो कैसे आवाज आ जाएगी, बताइएगा हमें। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: नाजमीन,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: मुरादाबाद से। बताइए क्या करती हैं नाजमीन आप? ओके, घर पर रहते हैं एंड फैमिली के साथ हेल्प कराते हो घर में कामों में? मैंने कहा घर के कामों में हेल्प कराते हो फैमिली की या बस क्या करते हो, मोबाइल चलाते रहते हो? हाँ अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अपने फादर साहब की केयर करते हैं और बहुत ज़रूरी भी है, बच्चों का कर्तव्य है पेरेंट्स की देखभाल करना, उनसे प्यार करना। बाकी आप मुझे बताइएगा आज क्या सुनिए नाजमीन आप? सॉरी,
1: जब से तुम दगा करके जुदा हो गए।
0: अच्छा, जब से तुम दगा करके
1: बर्बाद खाना हो गया।
0: ओके ठीक है मैम, सुनवाते हैं गाना।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98-378-96-96। और ये प्यारा सा गाना आप सुनने वाले हैं मोहम्मद दानिश जी की आवाज़ में एंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हिमेश रेशमिया जी। तो सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. शो का नाम है हेलो फरमाइश. तो जल्दी से कॉल लगाइए, अपना मोबाइल उठाइए और मुझे फ़ोन लगाइएगा. नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896. दोस्तों ये कार्यक्रम जो होता है ना, एवरी डे आप सुन सकते हैं, मंडे टू सैटरडे. लेकिन हाँ, कॉल आपको सिर्फ एक ही बार करना है ताकि एंड नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए, वो भी इजीली कॉल लगा पाएँ. तो सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए ना दोस्तों. जब सब खुश होते हैं, चारों तरफ खुशियां होती हैं, तो वातावरण कितना खूबसूरत हो जाता है. और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से. हेलो फरमाइश.
1: मुलाकात ना हो तो क्या हुआ, आपकी याद मुलाकात से कब नहीं.

0: नमस्ते।
1: नेहा जी, बात तो सही कही है आपने। देखिए, इंसान दूर हो फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, रिश्ते दिल से बनते हैं और याद करना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा। नेहा जी, कैसे हैं आपके परिवार में सब?
0: आपको याद कर रहे थे, फोन लगा दी, बहुत खुशी हो रही।
1: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
0: मैं मूवी का नाम है
2: उस वाली से
0: ना।
1: ओके, ठीक है मैम, सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए,
0: बाय
1: बाय। तो चलिए रिफंड सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी विवाह, और ये प्यारा से गाना आप सब सुनिएगा। मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है।

0: क्या बात है दोस्तों, इतना खूबसूरत से गाना अभी आपने सुना अमृता राव साथ में शाहिद कपूर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इस फिल्म में। और ये फिल्म ना सभी के जहन में बस चुकी है क्योंकि बहुत प्यारी मूवी थी। श्री घोषाल जी की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश, क्या नाम है उनसे जान लेते हैं। राजश्री और साथ में श्रेय घोषाल जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना अभी आपने सुना। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैम।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम संजीव नाम है। संजीव।
0: संजीव जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइए संजीव क्या करते हैं आप?
1: मैम प्राइवेट जॉब करता हूँ।
0: प्राइवेट जॉब करते हैं
1: जी।
0: ओके ग्रेट। और एफएम मुरादाबाद सुनते हैं, कैसा लगता है आपको?
1: मैम बढ़िया लगता है, सुबह शाम अच्छे गाने अपने आप पेश करते हैं इसमें।
0: ओके सुबह शाम ट्रैक आप सुनते हैं, तो बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है आज?
1: मैम ये मालिका।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया भोले मत वाला जिया। बहुत प्यारा गाना है। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 98 378 96 896।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू माय ऑल ऑफ लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त वह है साथियों 4:50 राइट नाउ। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना। उदारता मूवी से प्यारा सा ट्रैक जो 1981 में आई थी, राजेश खन्ना साथ में हेमा मालिनी जी पर फिल्माया गया प्यारा सा गाना, लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज। और बात करते हैं अभी अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लोधीपुर मुरादाबाद जवाहर नगर
0: जी। बताएगा क्या करते हैं सर?
1: कुछ नहीं करते, आजकल घर से ही रहे, बच्चों को स्कूल ले जाना।
0: अच्छा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों को टाइम पर स्कूल लेकर जाना, फिर उनको लेकर आना, उनका ख्याल रखना,
1: खाना वाना उनके लिए
0: जी। ओके, तो सारी चीजें आप ही मैनेज करते हैं?
1: दो जने कैसे करेंगे, कभी उसकी उम्मीद आती कहीं मजा
0: आता। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: पना मूवी का गाना।
0: फना मूवी का ट्रैक सुनना है? ठीक है सर, सुनवाते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं फ्रॉम द मूवी फना से बहुत ही प्यारा सा गाना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है और करेंगे आपसे भी बातचीत। बस आप कॉल लगाइए हमें।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी फना से। और इस खूबसूरत गीत को गाया था सोनू निगम, साथ में सुनिधि चौहान एंड आमिर खान काजोल जी ने भी रोल निभाया है। और म्यूज़िक डायरेक्टर थे जतिन ललित जी। एंड दोस्तों, आप भी ऐसे ही खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं ना, तो मुझे कॉल लगा सकते हैं, चाहे आप कार में हो या फिर आप घर में हो। लेकिन हाँ, जो कार में है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड मुस्कुराइए। और आप कॉल मत लगाइए, जो आपकी बाजू में बैठे हैं ना, उनसे आप कीजिएगा, वो कॉल लगाएंगे, ठीक है? आपको बस हाँ म्यूजिक के वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई करना है, क्योंकि गाने बहुत प्यारे हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो।
2: हेलो
1: मैम, जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सो
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, फोन भी लगा रहे थे, फोन बहुत मुश्किल से लगा मैम।
1: जी सर, मुश्किल तो होता ही है, बताइएगा कैसा मौसम है एमपी का? सर
2: जी हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, हल्का फुल्का अभी चालू है मैम बारिश। आपके वहाँ का मौसम में क्या हाल चाल है?
1: हाँ जी, हमारे यहाँ का वेदर भी ठीक है। आप बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप सब?
2: जी गाने तो बोला है यार डांटिया मेरे कबूतर खत पहुँचा दे।
1: अच्छा,
2: सुनवाएंगे कितने रेडियो दो किलो खुलते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते
1: हैं। ओके ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, मुस्कुराइए और हमें फोन मिलाते रहिए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 4:47 हो चुके हैं और अभी हमारे पास एक सर का कॉल आया था। उन्होंने बताया था अपना एड्रेस, साईं मंदिर के पास से वो बात कर रहे हैं और उन्होंने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। तो चलिए दोस्तों, इस गाने की रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं, सर की पसंद पर सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। अलगा ये इस गाने को गाया था आशा भोसले साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और अगर आप भी चाहते हैं कॉल लगाना, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना तो लगा सकते हैं। एवरीवन, ये मौका आपके पास है तो जल्दी से कॉल लगाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और फिलहाल ये गाना सुन लीजिएगा, मैं तो सुनने वाली हूँ लेकिन आप सभी सुनिए और अपने सफर को खूबसूरत बनाइए।

0: बिल्कुल जी, पंजाबियों का गाना और पंजाबियों का खाना दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं, फेमस हैं। और ये भी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना आनंद राज की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा ट्रैक। और दोस्तों, मैं आपसे बता देती हूँ कि अभी वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:57, और हमारे साथ हमारे एक लिसनर भी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। सर बेटा
0: जी, क्या नाम है आपका सर?
1: मैं बेटा राजकुमार बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से, खुशालपुर बैंक कॉलोनी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप और परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: परिवार में सब बहुत बढ़िया है, आपको बहुत याद करते हैं, कभी फेस टू फेस किस दिन मुलाकात हो जाए तो ज्यादा अच्छा, आज बात हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमारे स्टूडियो से।
1: जरूर,
0: जरूर, जरूर। जी तो बताइएगा, आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया है सर, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और फर्स्ट टाइम लग गया आपका कॉल।
1: हाँ, फर्स्ट टाइम में लग गया कॉल जो है, और फिल्म फिल्म बॉर्डर का गाना सुनना चाहता हूँ मैं, कोई सा भी सुनवा दो आप।
0: ठीक है सर, धन्यवाद आपने कॉल किया, हम बॉर्डर फिल्म का आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।
1: जी
0: सर, तो चलिए एवरीवन, राजकुमार सर की पसंद पर सुनते हैं एक प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी बॉर्डर से, और

रिदी जी का जाने की अनुमति, मैं मिलने वाली हूँ आपसे संडे में, हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
0: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनपे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकेंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
6: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
5: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
6: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
5: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
7: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
8: कोई मिल गया,
9: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दम दम मस्त है, आए हाय। वैसे ही दिन भी बड़ा ही जबरदस्त है जी। आज की तारीख यानी कि 24 जुलाई, और समय की बात करूँ तो 5:23 हो चुके हैं। हरी इवनिंग मस्ती शो में आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। यानी कि अब आरजू रीना आप सभी के बीच आ गई है, यानी कि ढेर सारी बातें करने के लिए, एक पॉजिटिव थॉट जो मैंने सोचा चलिए आप सभी तक पहुंचाते हैं। अक्सर हम अपनी कमियां भूलकर दूसरे इंसान के अंदर कमियां ढूंढते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, तुम्हें ठीक करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, पहले दूसरों को ठीक करने चले जाते हैं। इससे बेटर है खुद को ठीक करिए, दूसरा आपको अपने आप देकर ठीक हो जाएगा। और भैया आज के अगर मैं वेदर की बात करूँ तो प्रीटी यानी कि भैया मौसम है, और टेम्परेचर की बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस धूप के साथ साथ, यानी कि 2 बजे कैसी बारिश एकदम हुई भाई, पता नहीं चला। ऊपर से जो छत पर कपड़े गीले हो गए तो वो अलग बात है, मेरे जैसे बहुत होंगे जिनके छत पर कपड़े गीले हो गए आज, उनको पता ही नहीं चला है। तो अगर आप भी हैं कि आपके छत पर कपड़े गीले हो गए और आपको पता नहीं चला, तो जी बिल्कुल मैसेज करके बताइए, क्योंकि आप मेरी कैटेगरी में कनेक्ट हो जाएंगे। नंबर है 9837896896। और देश दुनिया में क्या चल रहा है हर टॉपिक पर बात करने वाले हैं श्रोताओं, तो बस आरजू रीना के साथ कनेक्ट रही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार गाना, ओ बेबी डोलम सोने दी, ओ बेबी डोलम सोने दी। चलिए जी, फिलहाल सोने की भाव तो भैया बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम होने का तो नाम ले नहीं रहा है, तो हम गाने से ही काम चला लेते क्यों जी। चलिए जी,

0: पापा मम्मी के लिए।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी श्रोताओं। और समय की बात करूं तो देखिए, यानी कि 5:29 हो चुके हैं और आप सफ़र में हैं, तो इस सफ़र को और ताज़गी भरा बनाइए और इन्जॉय करिए यूं ही अपने ज़िंदगी को। और जब भी आप ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं ना, तो हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमें कोई देख रहा है या हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सच तो ये है कि आप साफ और साफ कैमरे के निगरानी में होते हैं। एक्चुअल ये ऐसा हुआ कि एक दो बार हम जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला कि यार कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही चल लेते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब कोई आएगा देखने के लिए जब देखा जाएगा। इत्तफाक उसने हेलमेट नहीं लगाया और सामने यानी कि कैमरे की निगरानी में था वो। कब उसके अकाउंट से 1,000 रुपये कट गए उसको भी नहीं पता चला। वो शॉक हो गया कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। मैं क्या बेटा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना तुमने, अगर तुम ओवर स्मार्ट बनोगे तो यही हाल होएगा ना। तो इसीलिए देखिए, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए। जब आपके पास हेलमेट सीट बेल्ट है तो मतलब वो किस चीज़ के लिए, वो लगाने के लिए है ना, तो उसको लगाइए, क्योंकि लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और वेदर का क्या ही कहना भैया, बारिश बता रखी है अगले 2-4 दिन तक। 16 राज्यों में है बारिश, आंधी तूफान। तो बस देखना ये है कि बस देखना क्या, बस आपने संभल कर रहना है कि आप अपने आसपास देखिए, एक तो सफाई रखनी है और बरसात का मौसम है इसलिए फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं। साथ ही साथ पानी अगर आपको इकट्ठा नहीं होने देना है अपने आसपास, बाहर जा रहे हैं तो रेनकोट छाता अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने साथ रखते हैं तो आप सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ जिनको भाई रहता है कि हमें बिना दवाई के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, तो अपने साथ मेडिसिन भी अपने साथ रखिए, क्योंकि कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जो वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हम रख सकते हैं ना, इसीलिए आप अपने पास रखिए और यूँ ही अपने सफ़र को एंजॉय करिए। और साथ ही साथ यही कहना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक में हैं तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि उस रूट से जो भी आने वाले हैं वो बच सके। यानी कि हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। और हौले हौले गाड़ी चलाइए जी, बिल्कुल जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, ओके जी। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार बरसात का ही गाना है, और उसके बाद लौट कर आते हैं।

बिल्कुल, क्या शानदार गाना है। अक्सर हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है ना, हम भूल जाते हैं। लेकिन सामने वाला हमें जज कर लेता है कि ये इस काम के लिए परफेक्ट है, तुम इस फील्ड में जाओगे तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं।

उमर सानू अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। और भैया जिन यानी कि बार बार हम सभी यही सुनते थे ना कि पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो अब इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब ये ऐलान हो चुका है कि जो भी अगर पेपर लीक करता है तो 10 साल तक के लिए उसको जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी और साथ ही साथ अगर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 10 करोड़। ओ माय गॉड, यानी कि अब पेपर लीक करने वाले पहले 100 बार सोचेंगे कि आखिरकार हमारे रिलेटिव में है, उनको पेपर उनके तक पहुंचाया जाए या ना पहुंचाया जाए। देखिए अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तो उनकी जॉब खत्म हो सकती है, साथ ही साथ वो 10 साल जेल की सजा काटेंगे वो अलग, 10 लाख जुर्माना भरेंगे वो अलग। तो इंसान तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जब इतनी सारी उसके ऊपर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना। तो भाई अब पेपर लीक कम होने की बहुत बहुत मतलब चांस ही नहीं रहेगा। यानी कि सही बात है, जब भैया बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, जब मेहनत का फल ना मिले उसको तो क्या ही फायदा। लेकिन अब बेधड़क बिंदास होकर आप अपने स्टडी करिए, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए, क्योंकि अब पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने वाली है, बहुत ही ताबड़तोड़ वाला। सो हर्जोरीने के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं। चलिए फिलहाल एक और गाना गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना जी, आरजो रीना के साथ कनेक्ट रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या बात है गाइस, कुछ गाने इतने शानदार होते हैं ना कि ओ हो कितना भी सुन लो मजा, मतलब आपको बार बार सुनने का मन करता है। मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ते शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 5:57 हो चुके मेरी जान, और कुछ गाने माइंड ब्लोइंग इतने शानदार होते हैं ना, इतने शानदार होते हैं। शानदार में से मेरा फेवरेट वाला गाना है। सुनिए जरा, अरे ध्यान से सुनिए, अरे इधर कान लगा के सुनिए। हाँ आप कोई बोल रही हूँ मैं आपको, आप इधर इधर क्यों देख रहे, अरे इधर देखना है आपको, इधर इधर मतलब सामने देखना है। सुनिए एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार आपने खुद के लिए कब समय निकाला था? जरा महसूस करके बताइए कि आखिरी बार अपने लिए खुद के लिए कब समय निकाला था आपने। हर रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं जनाब, है ना। अब सोच रहे होंगे कि खुद को रिचार्ज हम कैसे करें। अरे जैसे बाइक को पेट्रोल चाहिए, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे इंसान को ठीक रहने के लिए खुद के लिए समय निकालना जरूरी है ना। खुद पर ध्यान देना भी जरूरी है या नहीं है ये बताइए आप मुझे। बस सारा दिन काम काम काम करते रहते हैं, इसीलिए आज का डे हमारे लिए बहुत और बेहद खास है, क्योंकि आज है 24 जुलाई, और 24 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे, यानी कि खुद की हमें रिस्पेक्ट, खुद की केयर करनी चाहिए। देखिए खुद की अगर आप केयर नहीं करते ना, तो कोई दूसरा नहीं आने वाला करने के लिए। दूसरा बस 2 दिन के लिए यही बोलेगा हाँ भाई ठीक है ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तीसरे दिन वो पूछेगा भी नहीं आपसे। इसीलिए खुद का मतलब केयर करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी खुद से प्यार करने का दिन। थोड़ा आराम कीजिए, मन पसंद गाना सुनिए, खुलकर हंसिए, समय पर यानी कि खाना खाइए, और भरपूर मात्रा में नींद लीजिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप फिट है, खुश है, तभी आपकी दुनिया में खुशी रहेगी, और आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं श्रोताओं, पहले खुद को चार्ज करो फिर दूसरों को चार्ज करना, ठीक है। यानी कि खुद अपने अपना केयर रखिए, खुद स्वस्थ रहिए, तभी आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ध्यान रख पाएंगे, समझे। चलिए फिलहाल हमारे पास कुछ एक वॉइस मैसेज आया है, क्या कहना चाहते हैं जनाब जी, सुनिए इनकी प्यारी वॉइस। वेट वेट एंड वॉच गाइस, कभी कभी कुछ मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि आप तक आवाज पहुंच नहीं पाती है, अब पहुंचेगी बहुत अच्छे से।
1: भैया दानिश बात कर रहा हूँ आजाद नगर से, ठीक है
0: जी।
1: यहाँ करूले पे बहुत बहुत ही हैवी जाम है, बंदों को अपने बता देना, ठीक है।
0: अपने बंदों को ठीक है जी, बना देते हैं। देखिए जी, करूले के साइड से अगर आप जा रहे हैं तो आपको भरपूर भरपूर जाम मिलने वाला है, इसीलिए करूले की तरफ से आप ना जाए, वरना आपका 1-2 घंटे तो वैसे ही वेस्ट जाने वाला है। और अगर आप गलती से चले भी गए तो मैं कहती हूँ रेडियो को वॉल्यूम बढ़ाइए जनाब, क्यों आराम से बस ऑफिस से निकल गए और देखना फेस पर कोई स्माइल ही नहीं आपकी। अरे आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, हंसिए जनाब, थोड़ा सा तो हंसिए, क्योंकि ये मुस्कान वाला जो चेहरा ना वो घर लेके भी जाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए एक बहुत ही शानदार गाना सुनते हैं, लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओ।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: business funda number 40. When sales are up, it feels great. And if cash flow happens on time, it feels even better. ICICI Bank POS solution has made this possible for me. With this, my payment collections of the day...
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो श्रोताओं, यानी कि 5:57 हो चुके हैं और आप देखिए सफ़र में हैं तो भाई एंजॉय करिए, क्योंकि आप आज रीना के साथ कनेक्ट है और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और जो बच्चे, यानी कि देखिए अभी दिल्ली में जो ये सब हुआ है वो सब तो आप सभी को पता ही है, लेकिन अब आप बेधड़क बिंदास रहिए क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको सजा मिलेगी। और साथ ही साथ कांवड़ियों वालों के लिए बहुत ही, यानी कि धमाकेदार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि अपने साथ कुछ गलत चीज़ें लेकर नहीं जाना है, क्योंकि भगवान के दर पर जा रहे हैं, भगवान के द्वार पर आप जा रहे हैं। तो एक सच्ची श्रद्धा से जाइए, एक सच्चे भाव से जाइए, ना कि दिखावे के लिए जाइए। और साथ ही साथ हर जगह जगह आपके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। साथ ही साथ अब की बार कुछ रूट है वो भी चेंज कर दिए गए हैं। तो और साथ ही साथ जो हम डीजे के बहुत दीवाने होते हैं, तो हाई लेवल वाले डीजे तो आप देखिए भैया बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये साफ साफ मना कर दिया गया है कि जो हाई लेवल वाले डीजे हैं जो आप लेकर अगर जाते हैं तो वो साफ और साफ बैन कर दिया गया है, उस पर तो कोई भी कार्रवाई अब नहीं की जा सकती है। बाकी खैर देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है। सावन आने वाला है, बहुत ही कम समय रह गया, यानी कि 6 दिन और है, उसके बाद सावन की जो शुरुआत हो जाएगी भैया। और चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और उसके बाद कुछ न्यूज़, और उसके बाद फिर हम कनेक्ट होंगे, यानी कि दूसरे एक घंटे में कनेक्ट होने वाले श्रोताओं। आज 90s के गाने मैं आप सभी को सुनाती हूँ, बहुत ही शानदार।

0: ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों, अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.
6: Ja Simran, ja jee le apni zindagi.
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

तो उड़ गए तो तेरे आय हाय। अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत अपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। दिल ये धोखा धड़ी कर देगा सोचा न था। जी जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो पेट्रोल जरूर देखिए अपने स्कूटी में है या बाइक में नहीं है, फिर गाड़ी में है या नहीं है। पता चले कि आप ऐसे बीच जगह पर चले जाते हैं जहां पर आसपास आपको कोई डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए आपको नहीं दिखे शॉप, तो क्या करेंगे आप? पेट्रोल पंप अगर नहीं दिखे तो क्या करेंगे? फिर तो वही हो जाएगा ना, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा ना था। कब ये दिल धोखाधड़ी कर देगा आप भी नहीं सोच पाएंगे श्रोताओं। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ जरूरी चीजें हैं उसका जरूर ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल आप दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:11 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब हम बात कर लेते हैं जरा वेदर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वेदर की बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं तो ये बताया जा रहा है यानी कि 25 कल है 25 जुलाई, 25 जुलाई से लेकर यानी कि 29 जुलाई तक ये कहा जा रहा है कि बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है। और कहीं कहीं भाई गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो एक दिन की बारिश में ना वहाँ पर इतने ज़्यादा पानी भर चुके ना कि क्या ही कह सकते हैं। देखिए अब हमारी इंडिया में जब बारिश आती है ना तो सड़कें भी सैलाब और तालाब बन जाता है, तो उस पर आप तैर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन बारिश के पानी में जो जहाँ पर घुटने भर पानी हो, अगर वहाँ पर आप बाइक स्कूटी गाड़ी लेकर चले गए, इत्तेफाक अगर वो बंद हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको चालू करना। इसीलिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो अपनी बाइक स्कूटी लेकर जाने से बचे, अदरवाइज पानी जहाँ साइलेंसर में गया आप वहीं थप, कुछ नहीं कर पाएंगे फिलहाल। चलिए हमारे पास कुछ मैसेज भी आते हैं, वो भी शामिल करते हैं कि इनका क्या कहना है। गुड इवनिंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम बहुत मस्त, अच्छा आप प्रोग्राम बहुत मस्त पेश करती हो और बातें बहुत अच्छी करती हो, बहुत प्यारी लगती हैं और गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, आनंद ही आनंद, आनंद की अनुभूति होती है, क्या बात है जी, आनंद आ जाते हैं आपको, अच्छी बात है आनंद आता है तो। और इनका कहना है कि मैम ओ भोले गाना सुना दीजिएगा। तो देखिए कल मैं, अभी तो मैं ये वाला गाना आपको नहीं सुना सकती, बॉलीवुड से रिलेटेड अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और कल मॉर्निंग में आऊंगी तो ये जो आपने गाना बताया है ओ भोले मैं डेफिनेटली गाना आपका प्ले करूंगी सोनू जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सेक्टर 10 मुरादाबाद सोनू जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल है, थैंक यू। दीपक जी का मैसेज आता है मुरादाबाद से और इन्हें कहते हैं कि गुड इवनिंग रीना मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, और आपने भी पेपर लीक के बारे में जो अपडेट दी थी कि जो पेपर लीक कर देंगे उनको 10 साल की सजा होगी, 10

करोड़ जुर्माना लगेगा। बिल्कुल जी, ये बात सच है कि अब बेधड़क बिंदास होकर आप सब स्टडी करिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रूपाली जी मुरादाबाद से कनेक्ट होती है, गुड इवनिंग पहुंचाती है। वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि रीना मैडम, 2 बजे जो बारिश आई थी ना, छत यानी कि स्वच्छ में छत पर कपड़े सूख रहे थे और वो गीले हो गए। जैसे आपके आज कपड़े गीले हो गए ना, वैसे मेरे कपड़े भी गीले हो गए। बताइए, सूखा हुआ कपड़ा गीला हो गया जो कि मुझे फिर से धोना पड़ गया। सही बात है, मैंने भी दोबारा इस कपड़े को धोए हैं, क्योंकि बारिश वाला जो बारिश की एक भी बूंद अगर कपड़े पर गिर जाना तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उसको धो देती हूँ, दोबारा धो देती हूँ, क्योंकि उस पे ना फिर अलग से एक स्मेल आने लग जाती है, तो मेरी आदत ऐसी है। चलिए श्रोताओं, लेकर आएंगे आप सभी के लिए कड़क सवाल, बहुत ही शानदार वाला लेकर आने वाले हैं। और ये अगले मैसेज की बात करूं तो विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बिंदास होंगे। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, और भी बेधड़क बिंदास वाला, और फिर लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। फिलहाल आपसे यही कहना चाहेंगे, कहीं नहीं जाइएगा जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो, जो कि आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है। चलिए

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है ना ये, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। हाय हेलो, गुड वाली इवनिंग है जी, आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:23 हो चुके हैं श्रोताओं। और कहते हैं ना, फेल होना ठीक है लेकिन चीटिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सभी को मिलकर बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहिए कि इन फ्यूचर उनके साथ कोई भी इस तरीके की घटनाएं ना होए जिससे उनको सड़कों पर उतरना पड़े। अपना पूरा स्टडी का जो फोकस है इस टाइम, यानी कि फोकस हमारा स्टडी पर होना चाहिए, लेकिन बच्चे आजकल क्या हो रहा है कि सड़क पर उतर रहे हैं और उनकी बस एक ही मांग है कि हमारी मांग पूरी करो और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, खुद के लिए आवाज़ उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं लोग गलत है, क्योंकि हम जब खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप क्या सोच रहे कि कोई और आके आपके लिए आवाज़ उठाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए खुद के लिए आवाज़ उठाइए और आगे बढ़िए। ये सचिन तेंदुलकर जी का कहना है कि हम बच्चों के साथ हैं और कामना यही करते हैं कि आगे भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जिनसे फिर से छात्रों को यानी कि सड़कों पर उतरना पड़े। फिलहाल कोलकाता से भी यही आ रहा है कि भैया अब नारे लगाएंगे, दिल्ली चलेंगे और अपने यानी कि नीट के पेपर के लिए हम आंदोलन करेंगे। यानी कि यही कामना है कि इन फ्यूचर अगर होता है तो उसका क्या प्रूफ है? प्रूफ चाहिए मतलब पूरा, और प्रूफ देखिए मिल चुका है, यानी कि अब कार्रवाई की जाएगी। तो बस देखिए, हर किसी की अपनी ड्यूटी है, नहीं तो हम पुलिस वालों पर इंजाम लगा सकते हैं कि तुम गलत हो, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है ऊपर से कि तुम अगर ये नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो तुम्हारी नौकरी ख़त्म। और सोचिए, अगर वो नहीं कंट्रोल कर पाते तो क्या दिल्ली का आज हाल जो होता वो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। आई नो कि बच्चों के ऊपर डंडा उठाना, लाठी उठाना गलत बात है, लेकिन उनकी ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, ना स्टूडेंट को कह सकते हैं, ना पुलिस वालों को कह सकते हैं। बस यही कामना कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी ऐसी केसेस सामने ना आए। चलिए, फिलहाल कुछ मैसेज आए हैं वो भी शामिल करते हैं। राजा कश्यप जी कनेक्ट होते हैं चौराहा गली से। रीना मैडम जी, हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो रीना मैम, गुड वाले इवनिंग है इवनिंग मस्ती शो में, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास गाने सुना रही हूँ। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई है नवीन नगर मुरादाबाद से। मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, आज मुझे सच में चाय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर आज थोड़ा सा कह रहा है कि भाई हम साथ नहीं देंगे, लेकिन हम मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हवाएं ठंडी चलने लगी है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, गर्मी से राहत मिली है। इश्क सूफियाना। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, आप कैसे हैं? आपका शो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि आप सॉन्ग इतने अच्छे प्ले करती हो ना कि शाम अपने आप शानदार हो जाती है और मजा आ जाता है। ये डोली गागन मुरादाबाद से कनेक्ट होती है हमारे साथ, और इनका पसंदीदा गाना भी हम चला दे। ओके जी, तुझमे रब दिखता है। ओके चलिए जी, हम आपका ये गाना डेफिनेटली आपको सुनाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी जी कनेक्ट होती हैं हमारे साथ, संतोष कश्यप जी कनेक्ट होती हैं। रीना मैम लगातार हम आपके शो में हम सभी कनेक्ट हैं, क्या बात है जी, कनेक्ट रहिए आप सभी हमारे शो में, मजा आता है। सोचूं तुझे तो है सुभा। और देखिए जी, जरूरी नहीं है कि आप जिस टाइम मैसेज करें मैं उसी टाइम शामिल करूं, थोड़ा टाइम तो लगता है, बस पेशेंस बना के रखें, पेशेंस बना

0: विक्की सागर भैया, मुझे आपकी जो बातें हैं वो मैं समझ रही हूँ, हर कोई समझ रहा है इस बात को। बस इसमें देखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो होना है वो तो हो के रहेगा, लेकिन गलत है जो भी ये हो रहा है, ये आप बात समझ गए होंगे क्योंकि आपने मैसेज किया है। तो फिलहाल हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और आप सभी के लिए अब मैं लेकर आने वाली हूँ कड़क सवाल। और कड़क सवाल भी बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और पता होना भी चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जो मेरा ये फेवरेट वाला गाना है, जो मैं आपको ये गाना सुनवाऊंगी, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास गाने की। सो ये गाना भी मैं आपको आज ज़रूर सुनवाऊंगी, डेफिनेटली सुनवाऊंगी, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा ही औसम है, और जब मौसम अच्छा होता है तो दिन अपने आप ही खूबसूरत बन जाता है श्रोताओं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होंगे। ठीक है जी, बने रही आरजेडी के साथ।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

और इसी के बीच मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:34 हो चुके हैं। आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मिस्ते शो में। और इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। और कड़क सवाल का कड़क आंसर क्या होने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही बता पाएंगे जी। क्योंकि आज का सवाल देखिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन ये मुझे लगता है कि हर बच्चे बच्चे हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है, बहुतों को पता भी है। तो चलिए आज का कड़क सवाल पूछते हैं आपसे। यानी कि भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी, उसका आपने नाम बताना है हमें मैसेज करके। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। यानी कि भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी, सोचिए और हमें मैसेज करिए। और एक और गाना बहुत ही खूबसूरत।

0: मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो यानी कि 6:39 हो चुके हैं और इसी बीच आपके पास है गोल्डन चांस। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन चांस, देखिए जैसे शादी यानी कि अब 4 महीने के लिए शादियां बंद हो जाएंगी, शादियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो भगवान जी हैं विष्णु भगवान जी, वो अब आराम से विश्राम करेंगे, क्योंकि कल है एकादशी और कल भगवान यानी कि आराम से 4 महीने के लिए विश्राम करेंगे, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसीलिए तो भगवान, हर भगवान का हर समय होता है, वो अपने अपने डे पर आते हैं। उसके अब सावन आ जाएगा, उसके बाद यानी कि जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि, फिर जाके जब देव उठान होने के बाद फिर से नारायण भगवान जी प्रकट हो जाएंगे। और गोल्डन चांस ये है हमारे लिए कि अब ये कहा जा रहा है कि सोना चांदी की कीमतें में भारी गिरावट आ चुकी है। यानी कि गिरावट की बात करूं तो पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो 2,18,401 रुपये था, और अब वही यानी कि 24 कैरेट का अगर 10 ग्राम सोना लेते हैं तो उसकी अब भाव हो चुका है, यानी कि गिरावट हो चुकी है भैया, यानी कि 1,42,690 रुपये का आपको पड़ेगा। तो पहले से देखिए भाई कम तो हुआ है, अगर आप सोच रहे हो कि लेने के लिए तो ले लीजिए, ये मत सोचिए कि नहीं यार अभी नहीं लेते, फिर क्या पता फिर यानी कि गिरावट हो जाए, तो कुछ नहीं पता भैया, ये गिरावट कब डाउन से अप हो जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और आज का मैंने कड़क सवाल आप सभी से बहुत ही सिंपल वाला पूछा है, आपने आराम से बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को पता है, यानी कि आज का कड़क सवाल यही है कि भारत की फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर का आपने नाम बताना है। नंबर है 9823789689 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओ। फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर लौट कर आते हैं आप सभी के बीच।
1: बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन,

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

दिल ने। गुड वाली इवनिंग है जी, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:50 हो चुके श्रोताओं, चलिए आप सभी के मैस

चलिए आज का कड़क सवाल मैंने आप सभी से यही पूछा है कि भारत की फर्स्ट विमेन यानी कि जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी उनका नाम पूछा है मैंने, तो चलिए देखते भैया किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। किया इस दिल ने जय श्री राम। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। ललिता जी का कहना है कि किरण बेदी जी, ओके ये कनेक्ट होती है हमारे साथ, लेकिन भैया इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है। इनके कहने की डॉक्टर किरण बेदी जी, और ये गाना भी सुनना चाहते हैं, लेकिन मैडम आपने अपना नाम ज़रूर बताना चाहिए था। मैडम सर जो भी हैं आप अपना नाम ज़रूर बताइए। इनके नंबर के यानी कि 4 डिजिट है 9996। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि किरण बेदी जी है जो कि 1972 में भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया हुआ है। बिल्कुल जी सही कहा आपने, और इन्होंने सन भी बता दिया। ओ क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अगले मैसेज की बात करूँ तो राजा कश्यप चौराहा वाली गली से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है किरण बेदी जी, ओके। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन हंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद सारिक अली जी गुड इवनिंग, रीना जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? इवनिंग मस्ती शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, धन्यवाद। और इनका कहना है कि किरण बेदी जी है, ओके। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और राइट आंसर होता है किरण बेदी जी। थैंक यू सो मच जी, आपके गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा दीपक शर्मा जी कनेक्ट हुए थे, ओके जी शुक्रिया, थैंक यू दीपक जी अपना नाम बताने के लिए। और मैं और मैसेज देख लेती हूँ जरा। अंशिका जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि किरण बेदी जी है जो कि 1972 में भारत की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर बनी थी, ओके जी। रिंकू जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनके कहने की राइट आंसर है किरण बेदी जी, ओके। शालिनी जी कनेक्ट होती है रामलीला ग्राउंड के पास से हैं ये, और इनके कहने की राइट आंसर होता है किरण बेदी जी। सौरभ जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनके कहने की राइट आंसर होता है किरण बेदी। और

करते हैं और आप सभी के मैसेज दे के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और यूं ही अपनी जिंदगी में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय जी। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा जल्दी शो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि देखिए काम जब आ जाता है ना तो शो तो थोड़ा सा मतलब 5 मिनट रह गए। चलिए बाय, कल मिलेंगे यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में मिलने वाले श्रोताओं, करेंगे ढेर सारी बातें, धमाल मचाएंगे। ओके जी।

0: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की मह महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: कहते हैं कि ये दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगें और हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा। डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल, किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। जोरदार तालियां, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
6: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
5: जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी
6: लिसनर्स है, हाँ जी, हाँ उन लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
5: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं आप सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का। तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में हैं। सो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
6: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
5: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
6: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और सीएल गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद, और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता। रेटिना होता है आंख का पर्दा, तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है। सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लगता।
5: बिल्कुल। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
6: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं। पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
5: बिल्कुल।
6: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है। इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
5: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे आरजे आनंद और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
7: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
8: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
5: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर और आज हमारे साथ सील गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब, मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
6: हां जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है। तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट। जब मैं बनी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर, पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा, जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
5: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईज के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, क्या मुझे तो नहीं पता था, आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती है उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं?
6: हाँ जी,
5: जैसे कॉर्निया के अलग हो गए मोतिया बन के इस तरीके से?
6: हाँ जी बिल्कुल। तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी, यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिया का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ MD है, पर उसके बाद जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
5: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसकी स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम, क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
6: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है।
5: ठीक है,
6: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर BP की भी दिक्कत रहती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
5: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
6: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है। एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सीवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सीवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सीवियर होने लग जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आए और उसकी सीवियरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार न एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है। शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइन से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं, तो वो जरूरी है।
5: ओके, अच्छा मैम, अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
6: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को। पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय से शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया BP और इन सब की भी दिक्कत है तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है। इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए।
5: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
6: देखिए शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा। जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा। बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखें।
5: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, हमारे स्टूडियो का नंबर है। अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए। हमारा ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से। आनंद के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही हैं। और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
6: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
5: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में यू नो ये हो सकती है, ये प्लीज आप बताइए।
6: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, एक एज के बाद जाके आएगी। वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज,
5: ठीक है।
6: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है, जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का। तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा, एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है, तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
5: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहरी लोग या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
6: ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है। इसलिए इतना इंतजार ना करें कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके, तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
5: मैम अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
6: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है। एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
5: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं, क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
6: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता है। इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है, या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है। तो तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
5: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
6: तो आंखों का धुंधलापन इसी सबसे होता है, अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
5: ओके अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
6: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे अब सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है, कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपकी आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। तो धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
5: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में जो भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं, आई ड्रॉप, और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे। तो क्या ये करना चाहिए?
6: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं, वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप डालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत बार उन्हें काले मोतिया की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती, तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
5: ओके मैम, सो दोस्तों अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
7: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
8: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहां आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के साथ। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, ध्यान सड़क पे और कान रेडियो स्टेशन पे लगाइए। हाँ जी, फिलहाल शो चल रहा है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आंखों के पर्दे के बारे में, और अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारी नॉलेज वॉलेज हमने शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आपने बीच में गाने भी सुने मुझे पता है। वेल वेलकम बैक है मैम, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, हमने आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ लिए ना? हमारे लिसनर कह रहे होंगे ईशा जी को परेशान कर दिया आज आनंद ने, इतने सारे सवाल पूछ डाले। वेल मैम, सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि अब चलने का समय हो रहा है। फिर जाने से पहले मैं चाहूंगा जितनी भी डिस्कशन हमने की अगर इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आप बताना चाहें।
6: हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में या तो सूजन बन सकती है या ब्लड आ सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है, तो इनके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर पर्दे में सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो ब्लड और ये सब आता है कभी कभी उसमें हमें आंख में लेजर भी करना पड़ता है, पर कभी अगर एंड स्टेज तक पहुंच रहा है और पर्दा उखड़ने की स्थिति आ रही है या जो ब्लड आया है वो साफ हो नहीं रहा है तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है जिसे हम विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल और ये सब आपको ध्यान देना ही है, तो ये हमारा फुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होता
5: है। ओके, और मैम चलते चलते कोई एक जो आप देना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको मुरादाबाद में सुन रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई है, उनको आप क्या संदेश देंगे? और साथ
6: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया, तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद, यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को। तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए, बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए। तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है, और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाएं जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो आप कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए। और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है, तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप की जाए। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
5: थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में। हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑफकोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी।
6: बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
5: डेफिनेटली
6: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे।
5: थैंक यू सो मच पांच
6: दिन हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से देखते रहे।
5: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ पूरे मुरादाबाद क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते।
6: हाँ जी तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
5: क्या बात है बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस मैम थैंक यू सो मच लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज आप कहीं मत जाइए रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर ये तो चल ही रहा था बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा करेगी आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है बहुत बातें होगी तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर। एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ कहीं मत जाइए बाय बाय।

0: पग पग।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: ये चांद सा रोशन चेहरा।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी दी गई। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
4: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की वार्ता करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
6: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कड़े विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
8: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। DMRC ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सवेरे 7:30 बजे से जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था उनमें से 2 मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें भारत में टेलीविजन रेटिंग विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 ने 16 जनवरी 2014 के भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्थान ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें नेटवर्थ मानदंड को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए करना, कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर प्रौद्योगिकी तटस्थ दर्शक मापन और मीटर वाले घरों की संख्या को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके नमूना आकार में वृद्धि करना शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि निर्धारित सुरक्षा उपायों में क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्यता, हितों के टकराव को जन्म देने वाली परामर्श या सलाहकार गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकताएं, ऑडिट और पारदर्शिता दायित्व शामिल है ताकि रेटिंग एजेंसियों की कार्यात्मक और परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज श्री प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग और डिजिटल पहुंच में तेजी से विस्तार के साथ बच्चों का अनुचित सामग्री और अन्य ऑनलाइन जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में लघु उद्योग भारती, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने और उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की प्रगति के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि गाजीपुर ड्रेन में वर्षों से भारी मात्रा में गाद जमा है, जिससे इसकी पानी ले जाने की क्षमता में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों में इसी तरह की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गाद निकालने का काम तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने आज विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए भंडार रखने की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस प्रावधान को उसके मूल उद्देश्य और भावना के अनुरूप लागू किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव भी दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज नीट यूजी 2026 के शीर्ष 11 विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि विद्यार्थियों

0: कहा कि इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, नए विचार और समर्पण भाव अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर देश को विश्वास को और मजबूत करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकता अनुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल है, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, PCR तैनाती और दुर्घटना रोकथाम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिव भक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को आज सवेरे एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महापौर कार्यालय ने बताया कि आज सवेरे 10:23 पर एक अज्ञात स्रोत से ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली। धमकी मिलते ही बिना किसी विलंब के संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। महापौर कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अन्य उपकरणों में लगाते थे और UPI सक्रिय कर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद वे धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से 10,000 रुपए नकद के साथ 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान का स्मरण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई और दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: ये होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। मैं शायरा हूँ रूह से जनाब, मैं हर्फ से हिसाब, शब्दों से बवाल करती हूँ।
1: हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद और इस वक्त आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद रेडियो। और जैसे कि मैंने बताया यार, जब भी रेडियो पे आनंद आता है तो कुछ स्पेशल लेकर आता है, और आज की ये खूबसूरत सी जो वाइब है ना वो आपको मिलेगी किसके साथ? आनंद के साथ। एंड ऑफकोर्स अगर मैं आया हूँ तो कोई ना कोई स्पेशल बंदा मेरे साथ स्टूडियो में होता ही है, कोई ना कोई खास मेहमान, कोई ना कोई खास यूथ हमारे साथ होता है जो आपको ढेर सारी बातें बताता है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है। आज कौन क्या शेयर करने वाला है, ऑफकोर्स आपको पता लगेगा, बिकॉज आज की जो वाइव है फुल ऑन सेट होने वाली है। बिकॉज यार देखो, आज का दिन बहुत खास है, आज की तारीख बहुत स्पेशल है, और आज स्टूडियो की वाइव भी बहुत स्पेशल है। और आज आप ढेर सारी शेरो शायरी भी सुनेंगे एंड इसके अलावा बहुत सारी बातें भी सुनेंगे, और आज का ये कॉन्वर्सेशन जो है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। कैसे कैसे बताऊंगा ना अभी आपको, लेकिन उससे पहले वेलकम करते हैं अपने प्यारे से गेस्ट का जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है। कौन है ये? उनकी प्यारी सी आवाज में आपको हम सुनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, हाउ यू?
0: हाय आनंद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है प्रांजल हिंदुस्तानी और पहचान मेरी सिर्फ इतनी है कि होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। मैं शायरा हूँ रूह से जनाब, मैं हर्फ से हिसाब, शब्दों से बवाल करती हूँ।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। आते ही जो है इन्होंने एक वम फोड़ दिया है बॉस, तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है

0: कि शेरो शायरी के साथ साथ ना मुझे लग रहा है खाना कुना थोड़ा कम खा के आई है, इसलिए इनकी आवाज थोड़ी अंदर से बाहर नहीं आ रही है। मैं जान सकता हूँ मोहतरमा आपका नाम क्या है? बड़ी प्यारी आवाज है आपकी।
1: तो मेरा नाम प्रांजल हिंदुस्तानी है। प्रांजल हिंदुस्तानी।
0: हिंदुस्तानी क्यों लगाया पहले तो मुझे यही जानना है। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने हिंदुस्तानी क्यों लगाया?
1: हिंदुस्तानी लगाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहा है हमेशा से, और वो ये था कि मुझे कभी भी इस जातिवाद पर जो कि 1945 से पहले जो चीजें हमें कभी पता भी नहीं थी, हमें उन चीजों में उन डिविजन्स में बांटा गया, तो मैं इन छोटी मोटी चीजों पर विश्वास नहीं करती कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने का काम करती हैं जातिवाद धर्म, ये सब हमें बांटने का काम करते हैं।
0: Correct.
1: और सबसे बेहतरीन अगर कोई पहचान मेरे पास है तो वो एक हिंदुस्तानी की है, और मुझे ये नाम हमेशा से बहुत प्यारा था और फिर मैंने इसको अपना लिया।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब वो कहते हैं ना जो यूनिक काम करते हैं ना उनकी पहचान भी यूनिक ही होनी चाहिए, और हम आज इनके नाम को डीकोड करेंगे डेफिनेटली यहाँ पर। वेल प्रियांजल, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन। आपको स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है पहले ये बताओ?
1: स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव ऑरा है, एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है।
0: थैंक यू। मुझे लग रहा है कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर है भाई, आज पूरा ऑरा वोरा सब कुछ पढ़ने वाली है। मैं डर रहा हूँ कि मेरी कुंडली ना पढ़ ले, ऐसा तो नहीं होगा ना?
1: ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
0: ऑल राइट।
1: बस इतना है कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन।
0: सेम हियर यार, मुझे भी ना आध्यात्मिक की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी में कूट कूट के बिलीव करते हैं, और इसीलिए शायद मेरी और आपकी वाइब मैच कर रही है, ये भी हो सकता है। मे बी, है ना?
1: दिस कैन बी अ रीजन।
0: करेक्ट। तो प्रियांजल थोड़ा सा अपने बारे में बताओ मुरादाबादीज को, यू नो, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगा, तुम इस स्टूडियो में आ तो गई हो, यहाँ माइक पे आज बैठी भी हो, आरजे वाली फील आ रही है या नहीं?
1: आरजे वाली फील आने में तो अभी बहुत टाइम है।
0: ओ, मतलब क्या मेरी चेयर वेयर चुरा के तो नहीं भागने वाली?
1: नहीं,
0: भाई
1: नहीं, ऐसा
0: कभी मैं बाहर और ये अंदर
1: करने वाले,
0: ऐसा तो नहीं होगा ना?
1: नहीं, मुरादाबाद के काफी लोगों को आपका आप पर बहुत भरोसा है, वो उन लोगों की आप आदत बन चुकी है उनको सुनना,
0: ये बात तो
1: मैं उनसे ये चीज नहीं छीन सकती बिल्कुल भी।
0: देखो मैंने प्रियांजल को पैसे नहीं दिए, सच बता रहा हूँ, इसने अपने मन से बोली ये बात। एंड एक काम करते हैं, प्रियांजल को थोड़ा और हैप्पी करते हैं, एक बढ़िया सा गाना चलाते हैं। ये बताओ आप कौन सा गाना सुनना चाहोगी, और हमारे लिसनर्स को कौन सा गाना सुनाओगी अपना फेवरेट?
1: लेट्स स्टार्ट विद आशिकी 2 का तुम ही हो।
0: अच्छा, ब्यूटीफुल ट्रैक, टाइटल ट्रैक है यार, इतना प्यारा गाना है। मूवी देखी है?
1: बिल्कुल देखिए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसीलिए तुम ही हो, मुझे लगता है माइक को देख के तो नहीं बोल रही है तुम ही हो, कभी इसकी भी तमन्ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
1: कुछ भी हो सकता है।
0: करेक्ट। वेल गाइस, एक काम करते हैं, बातें कम और गाने ज्यादा होंगे, और कॉन्वर्सेशन भी ऑफ कोर्स होती रहेगी आपके और मेरे साथ, और साथ में प्रियांजल भी है स्टूडियो में मेरे साथ। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, कहीं मत जाइए, रेडियो की सोई बिल्कुल मत घुमाइए। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल। आशिकी 2 का टाइटल ट्रैक सुन के ना सच बता रहा हूँ, मुझे श्रद्धा कपूर की वो प्यारी सी शक्ल याद आ रही है, बड़ी प्यारी सी लगी थी यार मुझे श्रद्धा इस गाने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आदित्य रॉय कपूर भी बहुत ही डैशिंग लगे थे नो डाउट। वैसे इसमें एक मेरे फेवरेट रेडियो जॉकी है और मेरे बहुत अच्छे कनेक्टिविटी में भी है, उन्होंने भी इस मूवी में जो है डेब्यू किया था। एंड ऑफकोर्स कौन है वो उनके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा वेरी सून। वेल प्रियांजल वेलकम बैक वंस अगेन, आपको कैसा लग रहा है, आप सो तो नहीं गई ना?
1: इतनी हाई एनर्जी है स्टूडियो की, इतनी हाई एनर्जी है आपकी
0: और इतना बढ़िया गाना था
1: सोने का कोई मतलब ही नहीं है।
0: एग्जैक्टली, सो प्रियांजल मेरे साथ स्टूडियो में है एंड प्रियांजल के बारे में थोड़ा सा मुरादाबाद को बताना चाहूंगा। मैंने खुद बताई, मुझे भी नहीं बताया टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्रियांजल थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को और मुझे भी बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, मुरादाबाद में क्या चल रहा है राइट नाउ, क्या कर रहे हो आप?
1: सो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम प्रियांजल हिंदुस्तानी है, मैंने बीटेक किया है IFTM यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड उसके बाद हमने अपना कॉर्पोरेट जर्नी शुरू किया, बट पैरेलली हमने काफी किताबें भी लिखी हैं। मेरी जो पहली बुक है वो द वॉर्म हग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हम जब अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हमारी लाइफ में बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को छोड़ सब पर ध्यान देते हैं, सबको हेल्प करने की कोशिश करते हैं,
0: 100%.
1: और जो सबसे ज्यादा इंसान हमारी लाइफ में जरूरी है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हम खुद हम उसे अंडर वैल्यू करते हैं। एंड मेरी बुक वही आपको बताती है कि वेन यू नो टॉक टू योर सेल्फ, यू नो द वाउंड्स दैट यू हैव, एंड उन जख्मों को आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता,
0: 100%.
1: आपके दर्द को आपके सिवा कोई समझ नहीं सकता।
0: True.
1: तो दैट इज वाई मेरी बुक का टाइटल है द वॉर्म हग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब आप मेरी बुक फर्स्ट चैप्टर से सेवेंथ चैप्टर तक पढ़ते हो ना, तब आपको लगेगा कि आप अपने आप को एक हग दे रहे हो, यू नो यू आर काइंड ऑफ हगिंग योर सेल्फ। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी मैंने जिंदगी में देखे हैं जिन्हें लाइफ टाइम किसी ने कभी हग ही नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को इस तरीके से मतलब समझा ही नहीं गया, उन लोगों को पढ़ा ही नहीं गया कि उनकी एक्चुअल वॉइस क्या थी, वो लोग क्या थे, पर जीवन में आने वाले दुखों ने दर्दों ने उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इट्स लाइक कि मेरी नियति कुछ थी पर मैं हूँ कुछ और क्या। सो व्हेन दैट इज व्हाई आई थॉट टू आई हैव यू नो एनकाउंटर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे जो रहे हैं हमारे साथ में भी, कि यू नो सो उन लोगों के लिए ये बुक समर्पित है। एंड तब मैंने लिखा था कि डर लगता है जिंदगी से, डर लगता है जो सबसे, डर लगता है मुझे जिंदगी से, डर लगता है मुझे सबसे, कभी कभी तो लगता है कि दुख और तन्हाई ही मेरी सहेली है, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी ही एक पहेली है, किस किस से छुपूं, किस किस से मुंह छुपाऊं, किस किस से बचूं, किस किस से मुंह छुपाऊं, कभी अपने आप को सहारा देकर मैं खुद को समझाऊं। समाज का रुख बदल दिया इन दरिंदों ने, हर लड़की का सुख छीन लिया इन हैवानों ने, बदलना होगा अब हर लड़की को, दिखाना होगा अब हर जालिम को, बहुत ले लिया माँ दुर्गा का रूप भी हमने, दिखाना होगा रूप माँ काली का इन हैवानों को। विद दिस नोट, ये मेरी पहली कविता थी, मेरी लाइफ की पहली कविता थी, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ डर था, और डर का एंड भी महाकाली पे हो रहा है, तो प्रॉपरली डर भी नहीं था, बट एक डर, आप सोचिए एक 12-13 साल के बच्चे के मन में उन न्यूज को देखकर एक डर पैदा होता है, जिससे उसको लगता है कि क्या ये दुनिया सच में सेफ है मेरे लिए। और आज जिस तरह से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज जो एनवायरनमेंट हमारे देश का हो चुका है, आनंद क्या आपको लगता है कि हमारे देश के 10-11-12-13 साल के बच्चे बच्चियां क्या सेफ फील करती होंगी, किस फ्यूचर की तरफ वो लोग देख रहे हैं? एंड हाउ कैन वी प्रॉमिस टू देम कि जब आप बड़े हो जाओगे तब यू विल बी हैप्पी? हाउ कैन वी? हम लोग बच्चों को इस दुनिया में ले तो आते हैं, पर ये दुनिया क्या सच में उनके रहने लायक है? क्या हमने छोड़ी है? बी इट पॉल्यूशन, बी इट रेप केसेस, बी इट एनीथिंग, हर चीज आज इतनी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो गई है कि कुछ भी नहीं है जो सेफ है। आई गेस मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ,
0: इट्स नॉट अ बोर, बट एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन एंड रियल टॉपिक जिसपे तुम बात कर रही हो, और मुझे भी ऐसा लगता है। वेल गाइस, आज का हमारा ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, डोंट वरी, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। वो जस्ट एक अपने दिल की थॉट थी जो उसने शेयर करी है। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स हर लड़की को राइट है अपनी बात बोलने का, हर किसी को एक मंच मिलना चाहिए जहां वो अपने दिल की बात रख सके। एंड मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन थी, एक अलर्ट मैसेज था जो मुझे लगता है सबको चाहिए जो तुमने दिया। और मुझे ये भी लगता है कि ये बात सोचने पे ऑफ कोर्स मजबूर करती है हम सभी को। बाकी और शोज में डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी प्रियांजल हमारे साथ है, हम लोग आज कुछ और यहाँ पर सेशन करने जा रहे हैं अभी, लेकिन कब करेंगे, एक गाने के बाद। एक बढ़िया से गाना सुनते हैं, एक गाना होगा मेरी पसंद का, उसके बाद वी कम बैक, सो डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। एक बहुत ही प्यारा गाना भी आपने सुना आनंद के साथ। प्रियांजल मेरे साथ स्टूडियो में है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। एंड प्रियांजल ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी हैं। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका लग रहा है मुझे देखने, बड़ी छोटी सी बच्ची लग रही है लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं बाबूजी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने किताब भी लिख डाली, सोचिए इन्होंने क्या नहीं किया। और भाई साहब हम एक इधर बैठ के बस गाना ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन खैर ये भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है। हर चीज हर कोई नहीं कर सकता प्रियांजल, राइट?
1: दैट्स राइट। बट जो आप कर रहे हैं मुझे वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है लोगों के।
0: वाओ, कैसे? बट कैसे?
1: ऐसे क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग आपको रोज सुनते हैं, इतने सारे लोगों की इतनी सारी उम्मीदें जब आपके ऊपर होती है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। हर दिन एक सा नहीं होता, कभी हमारा मन होता भी है काम करने का, कभी नहीं भी होता है। बट जो आप कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें उस चीज के लिए स्पेस ही नहीं रह जाता। एंड यू डू 100% एवरी डे, विच मैटर्स अ लॉट, विच सेज अ लॉट अबाउट व्हाट यू डू। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट इट।
0: थैंक यू सो मच। कोई तो है जो बिना पैसे के इतना पसंद कर रहा है, बाकी सब लोग तो पैसा मांगते हैं आप उनसे कि हम आपकी तारीफ तभी करेंगे। इस जोक सपाट में मजाक कर रहा हूँ। प्रियांजल आजकल का प्यार ना बड़ा ऐसा वाला हो गया कि मतलब जैसे ताजा ताजा फूल खिला, तोड़ा तो मामला खराब है ना, ऐसा वाला। मतलब अभी प्यार हुआ, थोड़ी देर बाद ब्लॉक भी हो गया है,
1: काफी सारे
0: एक्सपेक्टेशन और यू नो ऐसा लगता है कि आजकल ना अट्रैक्शन ज्यादा होता है प्यार कम, बट लोग अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं यार, और थोड़ी देर के बाद फिर वो उनका दिल टूट जाता है, फिर उनको रोना धोना भी नहीं आता। एक टाइम था जब प्यार के लिए लोग दूसरे के लिए मरते भी थे और रोते भी थे बहुत ज्यादा, उनके लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी। आजकल तो खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आजकल के प्यार को लेकर तुम्हारी क्या सोच है? यू कैन टेल मी, मुझे जरा बताओ। आप भी आज के जमाने के हो, हम भी आज के जमाने के, आप क्या सोचते हो?
1: हम बिल्कुल आज के जमाने के हैं, पर प्यार के बारे में जो मेरी सोच है वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल है। आई एम वेरी ओल्ड।
0: सेम हियर, सेम हियर।
1: मुझे तो वही लगता है कि यू नो अगर किसी पे दिल आ गया तो आ गया, फिर कहीं नहीं जाएगा।
0: वेरी नाइस।
1: तो उस पे मैंने कुछ लिखा था कि मेरे सिवा भी दुनिया देखती है, आप इन आंखों को बेईमान क्यों नहीं कहते।
0: वाह।
1: ये दो लाइंस लिखी थी मैंने कि अगर किसी एक इंसान पर आपका दिल आ गया तो यू नो इट शुड बी फाइनल।
0: करेक्ट।
1: जिंदगी तबाह हो जाए बस वही रहना चाहिए,
0: और मजा भी उसी में है।
1: उसी में मजा है।
0: आप अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो प्यार है ना वो सच्चा है, और सच्चा प्यार कभी भी खराब नहीं जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और जो कहते हैं ना जो पहली मोहब्बत होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म आपका साथ देती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन में वो प्यार की कमी है।
1: प्यार की कमी है, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन प्यार को जिस तरीके से पढ़ पा रही है, समझ पा रही है, वो पहले की जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आज की जनरेशन मेंटल हेल्थ में भी उतनी ज्यादा जागरूक है ना, कि वो एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हैं। आई नो कि काफी लोग मजाक बनाते हैं कि जेन ज़ी हमेशा ऐसी ऐसी टर्म्स
0: लेके आते हैं। जैसे मुझे, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मुझे जैसे लगा कि यार प्यार जो है ना वो ओल्ड स्कूल है, मतलब पुराना वाला प्यार जो था वो बहुत ही बढ़िया वाला था, क्योंकि वो जेन्युइन वाला था। आजकल का प्यार मुझे थोड़ा सा ना मतलब ऐसे वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग देता है, प्लस ट्रस्ट तो है ही नहीं, मैं सच बोलूं तो। मतलब आपका क्या मानना है, जैसे अभी आप कह रहे हो कि आज का प्यार जेन्युइनली बहुत ज्यादा पहले से बेटर है,
1: हाँ। really?
0: थोड़ा सा बताओ मुझे।
1: मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश दिल से करते हैं, ऐसा है। नहीं है
0: वो चैट जीपीटी की हेल्प भी लेते हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है, वो इंस्टाग्राम की हेल्प लेते हैं, गूगल पे जाके पूछते हैं।
1: इवोल्यूशन हर जगह जरूरी है, और अगर ए हमारी लाइफ में आ रहा है हम उसका यूज करें, दैट इज वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन के लोग सिर्फ बेंचिंग या यू नो ऐसा ब्रेकअप करके दूसरे से पैचअप कर लिया, ये एक हिस्सा है इस समाज का जहाँ पे ऐसा हो रहा है, पर आज भी ऐसे लोग हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं।
0: 100% आई एग्री विद यू। है मुझे ऐसा लगता है प्रियांजल, अगर मैं ऐसा हूँ जो दिल से प्यार करता हूँ तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे।
1: बिल्कुल होंगे,
0: हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है और उनको तराशने की जरूरत है। मुझे लगता है अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी नहीं हो जाती, बट ऐसा है, अगर आप अच्छे हो तो आपकी दुनिया अच्छी है। वो कहते हैं ना अगर आपके नजरे अच्छी है तो नजरिए अपने आप बनेंगे, एक कहावत भी है ना। तो मैं तो खैर बिलीव करता हूँ, लेकिन आजकल के प्यार के बारे में जो आपने बोला ये खैर मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि आजकल का प्यार पहले के प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल गाइज आपका इस पे क्या कहना है, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। प्यार की ढेर सारी बातें चल रही है, तो प्यार वाला गाना केसरिया ट्रैक लेकर रहा हूँ आपके लिए, अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से लौट कर आएंगे।

0: यार बातचीत तो लगातार चल रही है आपके साथ, और ऑफ कोर्स ये जो सेशन है वो आई एम श्योर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी वो मजेदार चीज आप सुन नहीं पाए प्रियांजल से, जिसका वेट कर रहे हो एंड जिसके बारे में मैंने भी बात करी थी ना। आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस। तो प्रियांजल रेडी है, अपना पूरा चिट्ठा खोल लिया है उस लड़की ने स्टूडियो में, एंड अब वो कह रही है कि अब मैं लिसनर्स को आनंद बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, नेकी और पूछ शुरू करते हैं, शुभकामनाएं देनी किस बात की। वंस अगेन प्रियांजल वेलकम है आपका, हमारे लिसनर्स आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाह रहे हैं, तो कुछ सुना दो यार। अभी हम प्यार की बात कर रहे थे ना, आई थिंक यार कर ही रहा था मैं। हाँ, तो बताओ कुछ सुनाने वाले हो।
1: मैंने एक लाइन लिखी थी है कि मेरे इंतजार की फिक्र छोड़ तू अब इत्मीनान से आ, मेरे इंतजार की फिक्र छोड़ तू अब इत्मीनान से आ, वफा होकर भी बेवफा बुलाएंगे तुझे, तू होकर उस इम्तिहान से आ, झुकी नजर कांपते कदम दबी आवाज सिले होठ, तू छोड़ कर सब शान से आ। कुछ लोग कहते हैं ना कि लोग जाते हैं वापस नहीं आ पाते, पर अगर आप सच्चा प्यार करते हो किसी से तो आप हमेशा इंतजार में रहते हो, तो उस इंतजार पर ये 100%
0: मैं अग्री करता हूँ। अच्छा प्रियांजल, ये प्यार की बात तो तुम्हें बहुत अच्छी करी है, मैं इसको थोड़ा सा दोस्ती की तरफ भी यू टर्न मारूंगा इसका। क्या सच में ऐसे फ्रेंडशिप में भी होता है? तुम्हें लगता है कि यू नो आज के टाइम में जितना हम प्यार को ढूंढते हैं, इतना लोग दोस्ती को भी ढूंढते हैं, है ना? चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो सब लोग दोस्ती में बहुत बिलीव करते हैं। इनफैक्ट प्यार तो है ही अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज, लेकिन दोस्ती भी बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग कहते हैं जो आपके रियल और जेन्युइन दोस्त होंगे, वो आपको अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आपको चाहे बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं आपके पास वो वापस आ जाएंगे, अगर आपके जेन्युइन दोस्त होंगे तो, और अगर वो टाइम पास होंगे तो वो नहीं आएंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या सच में ऐसा कुछ है?
1: मुझे लगता है कि दोस्ती इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। एक इकलौता ऐसा रिश्ता है जो भगवान हमें देते हैं कि आप खुद से डिसाइड करो।
0: एब्सोल्युटली, बाकी चीजें तो सब कुछ
1: डिसाइडेड है, बट ये दोस्ती ऐसा रिश्ता है चाहे वो आप मेल से हो या फीमेल से हो, आप खुद से डिसाइड करते हो। एंड आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है बहुत ज्यादा चीजें डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी थिंकिंग कैसे होने वाली है, आप किन चीजों पर भरोसा करोगे, किन चीजों से आप नफरत करोगे, किन चीजों पे आप अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाओगे, वो सब दोस्ती डिसाइड करती है। एंड रही बात दोस्ती और प्यार की, तो प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता तो मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी।
0: सही बात है।
1: तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि हम हमारे पार्टनर में हमेशा एक अच्छे दोस्त को देखें, क्योंकि एक लाइफ स्पेंड करने के लिए दोस्त का होना बहुत जरूरी है, जो हमें समझे, जो हमारी यू नो पीड़ाओं को समझे, जो हमारी मुस्कुराहटों को समझे, जो हमारे दर्द को समझे, और जो हमारा हमेशा साथ दो। दोस्ती बहुत जरूरी है। एंड रही बात फीमेल फ्रेंडशिप्स की, तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं जो कि यू नो हमेशा तैयार रहते हैं कभी भी।
0: आपके फ्रेंड्स तैयार रहते हैं?
1: या एक्चुअली यू नो फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत खूबसूरत होती है, एंड इस जनरेशन ने फीमेल फ्रेंडशिप्स एक अलग ही ऑरा दिया है, एक अलग ही लेवल दिया है। हमने हमेशा से सुना है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, पर मुझे लगता है कि औरत की सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है।
0: ये हर किसी जेंडर में ऐसा आता है, कुछ कहते हैं मेल मेल के दुश्मन होते हैं, कुछ कहते हैं जब एक फीमेल मेल से दोस्ती करती है तो वो ज्यादा उसको सपोर्ट करती है, फीमेल फीमेल के काम नहीं आती, मेल मेल के काम नहीं आता, मतलब तमाम तरह की बातें निकलती
1: हैं, बातें कहने के लिए बाजार बन जाती है।
0: बट मुझे ऐसा लगता है कि यार हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है, हर चीज अपने आप में खूबसूरत है, आप कितने खूबसूरत है ये बहुत मैटर करता है ना। अगर आप अच्छे हैं तो आपके दोस्त भी अच्छे हैं, आपका सर्कल भी अच्छा है। कौन क्या बोल रहा है ये बात की बात है, आप क्या बोल रहे हैं ये सबसे पहले वाली बात है ना। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके फ्रेंड्स भी अच्छा बोलेंगे, आप अच्छी चीज करोगे तो आपके दोस्त भी अच्छी चीज करेंगे, है ना। और दूसरी बात, जैसे भी प्रियांजल ने कहा कि आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा दोस्त चाहते हैं, वो डिसाइड करता है फिर आपका सर्कल और आपका फ्यूचर दोनों कैसा होगा।
1: राइट
0: गाइज, दोस्ती की बहुत सारी बातें हो गई हैं एंड सेगमेंट भी बहुत प्यारा जा रहा है, ये सेगमेंट ऑफकोर्स आपको पसंद आ रहा होगा आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, तेरा यार हूं मैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक है ये, इसको सुन के वापस आएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुनते रहिए आनंद को, एंड अब हम लेंगे जाने की आपसे इजाजत एक गाने के उस पर।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है। बहुत प्यारा गाना भी आपने सुना। जाने का समय हो गया है दोस्तों, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें यार, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? जाना तो पड़ेगा ना बाबा, अपुन को जाने के लिए आने के लिए जाना पड़ता है। आजकल जुबान बहुत फिसल रही है क्योंकि टाइम पे लंच नहीं हो पा रहा है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और प्रियांचल जाते जाते कुछ तैयारी कर रही थी कि यार मैं अच्छा सुनाकर जाऊंगी, तो अभिनंदन है आपका। वंस अगेन कुछ सुनाने के लिए आप बैठी हो, कौन सी पोएट्री है जो तुम छोड़ के जाओगी हमारे लिसनर्स के लिए?
1: बिल्कुल, तो मेरी पोएट्री कुछ इस तरह से है कि गफलत में आके फैसले यूं ही नहीं किए, गफलत में आके फैसले यूं ही नहीं किए, अपने जिगर से फासले यूं ही नहीं किए, टूटा है जब भी आप पर किया यकीन मैंने, मंजिल एक अलग रास्ते यूं ही नहीं किए। हमसे पूछो दिल को लगाते कैसे हैं, हमसे पूछो दिल को लगाते कैसे हैं, आंधियों में शमा को जलाते कैसे हैं, तुम कल के आए लोग, ये कल के आए लोग क्या बताएंगे तुम्हें, ये कल के आए लोग क्या बताएंगे तुम्हें, तुम कहो तो हम दिखाएं मोहब्बत निभाते कैसे हैं।
0: वाह,
1: रखे तजुर्बे लाख दिल में दबा, लेकिन एक बिखरने को तुमसे वास्ते यूं ही नहीं किए, मैं टूटे शीशे कांच सब लेकर के चलती हूँ, मैं टूटे शीशे कांच सब लेकर के ती हूँ, बेघर अक्स से आईने यूं ही नहीं किए। अक्स मतलब जो आईने में आपका रिफ्लेक्शन होता है,
0: दैट इज अक्स।
1: तो बेघर अक्स से आईने यूं ही नहीं किए। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच आनंद, बहुत मजा आया आपसे।
0: मुझे बहुत मजा आया, लवली टॉकिंग टू यू प्रांजल, थैंक यू फॉर कमिंग। जाते जाते कोई एक अच्छा सा मैसेज जो आप अपनी किताब आपने लिखी है या कुछ भी जो भी आप व्हाटएवर आप कहना चाहती हो लिसनर्स को, माइक तुम्हारे सामने है, लिसनर तुम्हें सुन रहे हैं, कुछ जो तुम्हें लगता है कि ये मैसेज डेफिनेटली जाना चाहिए, जो तुम कहना चाहती हो तमाम मुरादाबादी इसको जाते जाते।
1: बिल्कुल, मैं बस इतना कहना चाहता अभी लोगों से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि डोंट स्टॉप बिलीविंग इन काइंडनेस। आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भगवान ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू एवरी वन अराउंड यू, ठीक है। एंड मेरी बुक में द वॉर्मग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक किस्सा आता है जहाँ पे मैंने लिखा है कि आप दो पेड़ लीजिए, दोनों को अलग अलग एटमोसफेयर दीजिए, एंड एक पेड़ के साथ आप बहुत अच्छे से रहिए, उसको बहुत प्यार दीजिए, बट पानी दोनों का सेम आपको टाइम पे देना है, खाना पानी आपको टाइम पे देना है, बट एक पेड़ को आप थोड़ा नजरअंदाज करके रखिए, एंड विद इन 10 to 15 days आपको उन दोनों में डिफरेंस दिखेगा। वही डिफरेंस होता है हमारे आसपास के माहौल का, और सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है हमारा खुद पे।
0: तो
1: बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट, बी काइंड टू पीपल अराउंड यू, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास का माहौल ही सब कुछ है, हम भी किसी के आसपास का माहौल है, ठीक है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी आपसे बात करते हुए।
0: आई होप कि तुम्हें अब ये करके थोड़ा सा कूल फील हो रहा होगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आज के आप जैसे यूथ जब हमारे स्टूडियो में आते हैं, लोगों से इंटरेक्शन लाइव करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ये जो एक माहौल बनता है अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट वाला होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे टैलेंट को हमेशा एक मौका मिलना है ना। और एफएम मुरादाबाद आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है ये प्लेटफॉर्म। अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें डीएम करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, ऑफकोर्स आप करते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड हमें अपना टैलेंट भेजिए। हो सकता है नेक्स्ट आपका नंबर हो यहाँ पे इस चेयर पे जहाँ प्रियांजल है। बाकी ऐसी मोर डिटेल्स के लिए, अच्छे गानों के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलूंगा एक नए सफर में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक

0: पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर

0: संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening.
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आज हम करेंगे दिल से दिल की बात अखिल संग। और जो टॉपिक होगा ना वो थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। गैस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सपने और कुछ ख्वाहिशें जब मिलती हैं ना तो कुछ ना कुछ नए अरमान लेके आती है। हमें मैसेज करें 9837896896 पे। और आज कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो हमें विश कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपकी तरफ से कर देंगे उनको हैप्पी बर्थडे। तो करिए मैसेज 9837896896। आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करते हैं खूब सारी चटपटी बातें।

एक बार फिर से स्वागत है 89.6 मेगाहर्ट्ज आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अभी हमारी बात चल रही थी कि कुछ सपने और ख्वाहिश जो है ना, दोनों में ही फर्क होता है। तो क्या फर्क होता है और क्या सपने और क्या ख्वाहिशें होती हैं, उस पर करेंगे आज आपसे बात। और हम अपने पहले लिसनर से करते हैं थोड़ी सी चटपटी बातें, देखते हैं आज धैर्य जी। हाँ, सबको पता ही है कि हमारे पहले लिसनर जो हैं धैर्य हैं, तो आज करते हैं कुछ धैर्य से बात कि वो कौन से सपने और कौन से ख्वाहिशों के बीच में हैं आजकल।

ख्वाहिशों को तो कोई हिसाब नहीं होता, ख्वाहिशों का तो कोई हिसाब नहीं होता, मगर सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान हर रोज एक नई शुरुआत करता है। दोस्तों एक छोटी सी बात, ख्वाहिश नई गाड़ी, नया फोन, नई घड़ी, नए जूते, नया चश्मा, ये सब ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन माँ बाप का नाम रोशन करना, अपना घर बनाना या किसी जिंदगी या किसी की ज़िंदगी को बदल देना, ये एक सपना ही होता है। तो सपना सिर्फ आँखों में नहीं, हौसलों में रहता है। हमारे एक लिसनर का मैसेज आया है, पूजा जी का। पूजा जी मुरादाबाद MDA से कहती हैं, टीचर बनकर, सर मेरा सपना टीचर बनने का था।

0: और ख्वाहिशें फ़ौरन घूमने की हैं। तो पूजा जी बिल्कुल सही कहा आपने, टीचर बनकर जो है ना, आपका ही सपना नहीं, आपने हज़ारों लोगों का सपना पूरा करेंगे। और जो रही बात फ़ौरन घूमने की, तो बस ज़िद मत छोड़िएगा, एक बार तो फ़ौरन घूम के ज़रूर आइएगा। फ़ौरन घूम के जब आएंगे ना, तो हमें ज़रूर याद करेंगे कि हाँ हमने शेयर करी थी ये बात, और सर ने भी कहा था कि आप ज़रूर फ़ौरन घूम के आएंगे। आदिब जी हमें शायरी लिखते हैं और कह रहे हैं कि अखिल सर ये शायरी बिल्कुल स्पेशली सपनों के लिए है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। आदिल जी बहुत ही बढ़िया शायरी लिखी है आपने, और ये शायरी जो है कहते हैं ना, ये हमेशा जहन में रहती है आपके। और मैंने एक बार जब स्पीच अब्दुल कलाम जी की, हम एक स्पीच देख रहे थे वीडियो पे, तो जब देखी थी उन्होंने भी सेम है यही एक शायरी में अंदाज में बोला था, और तब से ये शायरी तो मेरे दिमाग में कहते ना हमेशा याद रहती है कि हाँ सपने वो हो नहीं होते जो आपको सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो कभी आपको सोने नहीं देते। मगर हाँ सो भी लीजिए सर, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपने लिसनर से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो आज। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: सर इस टाइम तो मैं खाना खा के वही अपनी और प्रोग्राम सुन रहा था, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिल खुश हो रही है सर।
0: बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं इस समय, ठंडी ठंडी
1: सर, काफी सुहाना मौसम हो रहा है रामपुर का। सर आप आइए, आपको चाय और आलू का समोसा खिलवाते हैं।
0: सर जरूर आएंगे, चाय और समोसे के लिए आपके पास जरूर आएंगे।
1: सर दूध में पत्ती लगाएंगे, घर का दूध हो रहा है सर, आप आइए, आपका स्वागत है।
0: जरूर जरूर जरूर साहब। तो आज कोई शायरी सुनाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आज?
1: सर शायरी सुना देंगे।
0: तो एक पहले शायरी सुना दीजिए, उसके बाद आज बात करते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पर आपसे थोड़ी बात करेंगे।
1: कहते हैं कि सर पहले शायरी या टॉपिक?
0: पहले शायरी।
1: शायरी शायरी शायरी पहले टॉपिक पूछ लो।
0: चलो आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, शायरी भी याद आ जाएगी। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है कि आप होते हैं ना जैसे लोगों के सपने और ख्वाहिश, तो सपनों और ख्वाहिश में क्या फर्क है आपके हिसाब से?
1: सर कहते हैं कि सपने तो सिर्फ सपने होते हैं, सच है ये कब अपने होते हैं। तो सपने तो सपने मतलब होते हैं ना, पूरे नहीं हो पाते हैं।
0: और ख्वाहिशें?
1: ख्वाहिशें सर किसी की पूरी हो जाती है और मतलब किसी की नहीं होती है,
0: मगर है दोनों में अलग अलग फर्क।
1: सर हम सोते हैं, सोते टाइम कितने सपने देखते हैं, सो आँख खुलती है, सपने सारे दूर हो जाते हैं।
0: तो कभी कभी ऐसा लगता है जो वो सपने देखे हैं वो भी पूरे करने हैं, ये नहीं लगता?
1: सपने तो मुझे सर सपने तो इतने दिखते हैं जो मेरी आंख लग जाती है, जब तक मैं उठता नहीं तो सपने सपने सपने, उसके बाद में आज तक कोई सपना पूरा नहीं हुआ।
0: सर आपकी तो आंख इसलिए लग जाती है ना, आप छत पे सो रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा आपके पास आ जाती है, तो भाई साहब आपकी क्या, कोई भी छत पे सो रहा होगा उसकी आंख लगी जाएगी।
1: सर उससे पहले आपकी आवाज मुझे बहुत कट रही है, मैं सुनने बात कर रहा हूँ तो कैसे, बाकी तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास।
0: अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
1: जी अब सर नेटवर्क थोड़ी इशू है आपकी तरफ से।
0: हाँ सर थोड़ा सा तो मुझे भी लग रहा है आज नेटवर्क का इशू है आज।
1: सर मौसम खराब है ना, मौसम की वजह से होता है।
0: मैं ये कह रहा था सर आपको तो ना आग तो आपकी इसलिए लग जाती है क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको चारपाई पे छत पे मिल जाती है, तो आपकी क्या कोई भी होगा तो उसकी भी आग ही लग जाएगी।
1: सर आपकी आवाज मतलब बहुत रुक रुक के चल गया, क्या क्या नहीं।
0: अब आ रही है मेरी आवाज आपके पास? बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आज। तो आज आज आप शायरी सुना दीजिए, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर आ रही है।
1: जी सर नहीं आ रही बिल्कुल भी, कट रही है बहुत।
0: सही कह रहे हो आप। कोई गाना आपका फरमाइश?
1: सर उससे पहले मैं फरमाइश बोल दूं सर, मूवी का नाम है बरसात के रात, गाने के बोले दादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। सर आप कोशिश कर लो नंबर सही हो जाए, आवाज कट के नहीं आए।
0: ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हमारे श्रोता, जो कह रहे हैं आपकी आवाज़ जो है ना सर गायब हो गई है। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ गायब हो जाती है, कोई बात नहीं। एक पहेली जो पूछता हूँ मैं आपसे, और आपको शायद अब आवाज़ अगर आ रही हो अच्छे से तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बांटोगे ना उतनी ही बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल सा जवाब है और आप लोगों को पता ही है, ये पहेली एकदम आम पहेली है। आम पहेली इसलिए पूछी गई कि कहीं से तो जवाब जो है ना एकदम तेज़ी से आएगा। तो 9837896896 पे आप अपना कॉल करें या मैसेज करें और कुछ बातें दिल की भी शेयर करें यार। तो सुनते हैं ये गाना, बदल कर वादा करके साजन नहीं आया। तो चलिए साहब, देखते हैं, हम तो वादा करते हैं गाना बदलें।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपने सपने भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए, ज़िंदगी सिर्फ गुजारना नहीं, जीना भी है ज़रूरी। तो ज़रूर है कि कम से कम कहते ना कि थोड़ा बहुत तो जीना पड़ेगा भाई। और हम लोग कभी कभी दूसरों के लिए, दूसरों क्या अपने ही कुछ लोगों के लिए जीना भूल जाते हैं। सोचते हैं कि पहले इनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मगर जहाँ तक पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे तभी तो हम दूसरे की भी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे। तो पहले अपनी ख्वाहिश पूरी भी ज़रूर करिए और थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। इधर उधर गुस्से में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है साहब, वो बगल वाला ना हॉर्न बजाता ही रहेगा जब तक उसे रास्ता नहीं मिलेगा। तो अपना आराम से उसको शोर मचाने दीजिए, आप अपना साइड से निकलिए, क्योंकि भाई साहब हमें तो मंजिल तक पहुंचना है ना। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आया है हमारे पास, हाय विक्की सागर मुरादाबाद से, गुड वाली इवनिंग है, कैसे हैं आप। दो लाइन मेरी तरफ से, किसी ने सही कहा है, इतना ही दूर जाना जिस समय समय से वापस आ पाओ। महेंद्र इंसान मेहनत कर जा, तुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी और जो तेरी मंजिल है तुझे ज़रूर मिलेगी। मेहनती इंसान को मैं एक्चुअली क्या, जब आपके मैसेजेस आते हैं तो मैं बिल्कुल लिटरली वैसे ही पढ़ देता हूँ जैसे आप नॉर्मली भेजते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मुझे पता है कि आप समझते हैं कि हाँ कभी कभी टाइपिंग में एरर होती है तो वो एकदम कैच कर पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। सपने किसी के भी एकदम से पूरे नहीं होते, लेकिन कोई मन में चाहे तो अवश्य पूरे होते हैं। तन को मेहनत करते रहना चाहिए। तो अपने हमेशा, यहीं तक सर ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया मैसेज किया है सर। और दूसरा मैसेज है हमारे पास लाइन पार प्रकाश नगर से, उन्होंने सिर्फ यही लिख दिया है लाइन पार प्रकाश नगर से, और नमन और निरांशी दोनों, जीना है तो हंसते जियो, नमन निरांशी दोनों बच्चों के लिए। ये साहब ने दोनों बच्चों के लिए लिखा है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, जीना है तो हंस के जियो यार, ऐसे रोते रोते कौन जिएगा। हमारे पास और हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने लिखा है मैसेज में, आपकी पहेली का आंसर है बुद्धि। क्या बात कही आपने, ज्ञान और प्यार दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि आप जितना बांटो ना उतनी ही बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है, आप कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप भी मस्त होंगी। आपकी आवाज़ बहुत अंदाज बहुत प्यारा है। ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से, मैं जब भी निकलता हूँ ना मैं नवीन नगर से ही होके निकलता हूँ ललिता जी, तो मुझे जैसे ही नवीन नगर आता है तो मुझे वो ध्यान आता है कि हमारे एक लिसनर हैं जो हमेशा कहते हैं ना बिल्कुल मस्त तरीके से रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे मैसेज करने का। सर खाना खा लीजिए, सर हम आपका शो भी सुन रहे हैं सर। ज़रूर पहले आप खा लीजिए फिर हम भी खा लेंगे शो के बाद। सर आपसे एक अंत में जो गाना, अच्छा सर आप जो अंत में गाना बजा के लगा कर जाते हैं वो बहुत अच्छे लगाते हैं सर, उसके लिए तन्हा दिल से तहे दिल से धन्यवाद। ना तन्हा नहीं हो तने, तहे दिल से धन्यवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने ये बताया। और मैं हमेशा अच्छा ही गाने लगा के जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे लिसनर्स आज बहुत अच्छे अच्छे, मतलब इतने मैसेजेस हैं कि मैं शायद एक आध के मिस कर जाऊँ तो बुरा ना मत मानिएगा। राम राम सीता राम, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम, अजीत कसाना। अजीत कसाना जी आपको भी बहुत बहुत राम राम। माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावनी जिला मुरादाबाद से, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अजीत जी। साउंड इज़ परफेक्ट एंड रॉकिंग, थैंक यू वेरी मच। हाँ मेरे को लग भी रहा था कि साउंड सही आ रही है, मगर वो छत पे हवा का आनंद ले रहे थे, ठंडी ठंडी हवा का, तो कभी कभी हो जाता है साहब कुछ आवाज़ें वहाँ तक पहुँचती नहीं जो आपके मन को छूनी चाहिए। तो हमारे इतने सारे लिसनर्स के आज मैसेजेस आ गए। एक हमारे पास है, हेलो नमस्कार अखिल सर, आप तो ज़्यादा दूर नहीं हैं, आए तो सही टाइम से, पहुंच तो गए ना, रास्ता तो नहीं भटके थे आप, जिला मुरादाबाद ग्राम भेजने से रिजवान खान और उस्मान खान जी। तो रिजवान खान साहब और उस्मान खान साहब, आज हम बहुत ही सही समय पहुंच गए थे, कोई रास्ता नहीं भटके। रिजवान साहब, हमारी हुई एक गाँव में, बहुत ही इंसान है, बहुत ही मिलनसार इंसान है। इन्होंने इतने अच्छे से कहते हैं ना स्वागत किया कि हम भूल गए कि हम किस काम के लिए गए थे उस गांव में। और बहुत ही धन्यवाद आपका, आपका, आपके परिवार का भी, और आपके साथ जो जो हमारे साथ वहां पे लिसनर्स थे हमारे, दीपक जी और प्रधान जी, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें रिजवान जी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हमने एक लिसनर से बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं वो आज। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है
0: सर। हमारा तो प्यार है आपके साथ सर, आशीर्वाद तो ऊपर से है सर।
1: जी सर, आपका भी बहुत जरूरी है सर।
0: और क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: बस आपका प्रोग्राम सुनना था, हम तो रहे नहीं गए।
0: मुझे मैं कहता हूँ, मुझे पता है, मुझे इसी बात का डर है आपसे किसी दिन रहा नहीं जाएगा और आप एकदम पैदल पैदल चल के लाइन पार तक आ जाओगे। तो आज क्या शायरी सुना रहे हैं आप?
1: साकिब अल्लाह की इजाजत के पीछे से नदी पैसे बोल रहे हैं मोहम्मद उस्मान साकिब गुप्ता।
0: नदी में कितना पानी है सर?
1: नदी में तो बहुत पानी है, आप बहुत पानी है।
0: हाँ, स्विमिंग करना है
1: आजकल बच्चों को, अपने रोग का थाम ही नहीं करते लोग बस।
0: क्या सर, आजकल
1: आजकल बच्चों को रोग का थाम ही नहीं करते, डांट के नहीं रखे हैं, बच्चे धूप पे रहते हैं।
0: हाँ नहीं, डांट के नहीं रखे, प्यार से रखे, बस मना कर दें कि हाँ भाई पानी ज्यादा है, नदी के पास नहीं जाना है।
1: बच्चों को गौर नहीं करते ये लोग।
0: हाँ हाँ, बच्चों को तो गौर करना चाहेगा,
1: बच्चे गौर करें तो अच्छा
0: रहता,
1: बच्चे बचे रहते हैं।
0: हाँ सर, बच्चों का बच्चे रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा मन तो कोमल होता ही है बच्चों का, हम कितना भी कहें मगर उन्हें भी लगता है कि अगर किसी कोई काम करने को मना किया है तो उसका मतलब कोई ना कोई इसके पीछे राज छुपा है, मगर उन्हें नहीं पता कि राज नहीं छुपा है। ये एक एक्सपीरियंस है जो बड़े लोग अपना बताते हैं कि नहीं भैया मत जाओ वहाँ पे, पानी अभी तेज है, उफान है, ज्यादा है, उस नदी के पास कोई खेल नहीं करनी है।
1: बच्चों को देखते नहीं है लोग, बात ये नहीं देखते कि रात को क्या बजे आ रहे हैं, दिन में क्या बजे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं।
0: सर सभी सभी अपनी जिंदगी में इतना भाग रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लो।
1: हाँ, हम ना पूछते हैं वो।

0: कै बजे आ रहा हूँ, कै बजे जा रहा हूँ, रात में या दिन में।
1: बिल्कुल सही। तो आज ऐसी आज ऐसी कोई शायरी बोल दो आप जो लोग सुने और अपने बच्चों को बताएं, देखो भाई साहब बात तो है इनकी शायरी में आज।
0: शायरी तो खैर मैं बात तो निकालूंगा आपको बताऊंगा, और अभी तो फिलहाल मैं ऐसी मोहब्बत वाली बात करता हूँ।
1: आज ये सर मोहब्बत वाली है,
0: बचपन की दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती।
1: क्या बात कही आपने, क्या बात कही, बचपन की दोस्ती कभी छोड़ी नहीं जाती।
0: ये दूसरी है, मोहब्बत में नशा तेरे इंतजार का है, इस दिल में नशा तेरे दीदार का है, ना होश में ला मुझे मत होश ही रहने दे, मेरे इन नैनों में नशा तेरे प्यार का है।
1: क्या बात कही है आपने, क्या बात, बहुत ही बढ़िया शायरी, बहुत ही अच्छे अंदाज। और इसी मैं कहता हूँ, इसी शायरी के बाद एक गाना भी बताइए जो आपके इस समय दिमाग में घूम रहा है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से बता दूं अखिल को ये गाना।
0: ये खुदा गवाह गाना सुना दे, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल।
1: जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत ही बढ़िया गाना, ये गाना इतना
0: अच्छा।
1: नहीं नहीं साहब, हमें अच्छा लगता है जब आपके हमारे सबके
0: टाइम भी होगा आदमी तो आपका प्रोग्राम सुन के और अपने एफएम के दौरे पहुंचेगा।
1: नहीं नहीं साहब, एफएम के दौरे नहीं पहुंचना है, जो बेचारा गाड़ी चला रहा है, जो हाईवे से ट्रक चला के गुजर रहा है, वो अपनी मंजिल पे पहुंचे और सुनता रहे अपने मन की गीत, अपने मन की बातें हमें बताता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत अच्छा लगा उस्मान जी, आपकी शायरी भी अच्छी लगी और आज आपने जो बात बोली है
0: एक
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उस्मान जी, जो आज इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बच्चे जो हैं थोड़े से शैतान होते हैं और वो नहीं मानते सुनते, मगर जब पता है कि नदी का उफान है, बारिश का मौसम चल रहा है, पानी पानी हर जगह भर जाता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास टोकना पड़ेगा कि नहीं, इस समय खेलने का समय नहीं है, दिन में खेलें और नज़र में खेलें, और खेलें भी तो थोड़ा सा दूर सा खेलें। इतना बढ़िया गाना सजेस्ट भी किया उस्मान जी ने, तो आज वही गाना भी चलते हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। उससे पहले एक मैसेज आया हुआ है हमारे पास, उन्होंने भी पहले का आंसर दिया है, इनका नाम है मोंटी वर्मा जी, लाइन पार सूर्यनगर से कह रहे हैं। और मोंटी जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ज्ञान, ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसे जितना आप बांटोगे ना वो बढ़ता ही रहेगा, तो बांटते रहिए ज्ञान। और मिलते हैं एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, तब तक हमें मैसेज करें और बताएं अपनी कुछ दिल की बात, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई एक ऐसा सपना जो हो गया हो पूरा और करना चाहते हैं शेयर। कभी कभी कुछ बांटने से ना तो बढ़ता ही है ना, तो बांटिए ना साहब, बताइए अपने दिल की बात और लोगों को भी लगे कि हाँ आज कुछ है इसमें जान। तब तक हम ये सुनते हैं बढ़िया सा खुदा गवाह का गाना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। पहले थोड़ा सा ट्रैक ट्विस्टी है, सुन के हैं, बताते हैं कि किसने गाया है, ये आपको बताना है।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना, हाँ जी आप ही का अपना रेडियो स्टेशन। कभी भी मन करे, कभी भी आपका, कहते ना दिल से जब भी आवाज निकले फटाफट 9837896896 पे डायल करें और बताएं अपने मन की बात और वो गाना जो बहुत ही दिल के करीब है। शायरी आई है हमारे पास, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है विक्रम जी, आपने इतनी बढ़िया शायरी मैसेज करी है हमें और बिल्कुल सही कहा है। हमारे साथ हमारे एक लिसनर हैं जो इस समय बहुत देर से हमारे साथ लाइन पर हैं, तो चलिए पहले उनसे बात करते हैं, वरना वो कहेंगे जी मेरा तो आज खाना भी पूरा नहीं हो पाया, आप जो है इतनी देर तक मुझे होल्ड पर रख देते हो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका और कहां पर हैं आप?
1: आपका रेडियो श्रोता मिस्टर रणजीत सिंह जेठालाल।
0: अरे जेठालाल जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप?

0: ख्वाहिश के चक्कर में जेबें ढीली हो रही हैं।
1: मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए।
0: क्या बात है,
1: का मजा लेना है तो ख्वाहिश कम रखिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही एकदम कहते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बोल दिया आज आपने
1: जी।
0: और सफर अगर लंबा करना है तो सामान ज्यादा रखें।
1: सफर आसान करना तो सामान कम रखें।
0: सर सफर तो आपने बिल्कुल सही कहा, आसान करना है तो, मगर सफर आसान आज की तारीख में सफर आसान कहाँ है।
1: सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए।
0: बहुत ही बढ़िया, बस जीते रहिए, मस्ती से रहिए। थोड़ी देर अगर कॉल देर से भी लगे तो गुस्सा मत होइए।
1: गुस्सा क्या है, लाइफ जी होगा उधर से आपका भी फोन करेंगे ना एक आध साल बाद, बोले भाई कहाँ है, बोले वो तो बोले फोन नहीं उठा, फोन नहीं उठा था, वो तो
0: अरे नहीं सर जेठालाल जी ऐसा कभी नहीं होगा। गाना कौन सा, बिल्कुल सही है। मैं भी सर भागता हुआ दौड़ता हुआ आऊंगा, उस दिन जरा ट्रैफिक कम करवाइएगा थोड़ा सा, स्टेशन के सामने बहुत ट्रैफिक रहता है। बजे वो गाना मगर इसलिए नहीं बजे कि भाई साहब जेठालाल जी इंतजार ही करते रहे हमारा। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जेठालाल जी आप?
1: अरे सर गाना तो वो ये है, काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता एक तुम्हें तो तकलीफ ना होती अगर आखिर घर का फोन मिल जाए तो।
0: बहुत ही बढ़िया गाना है, ये गाना ज़रूर प्ले होगा। और बहुत अच्छा लगा जेठालाल जी, आपकी कॉल आती है तो और अच्छा, मतलब कहते हैं ना एक हम तो शायरी के इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे जेठालाल जी की कॉल आएगी और हमें एक बढ़िया सी शायरी
1: सुनने को।
0: सर कभी कभी नेटवर्क याद नहीं कर पाते, हम तो पूरा याद कर रहे हैं। अरे नहीं सर जेठालाल जी ऐसा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल जी।
1: ओके सर, गुड नाइट।
0: गुड नाइट जी। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ जेठालाल जी, जो कहते हैं ना एकदम दिल से दिल की बात करते हैं, बिल्कुल एकदम दिल खोल के बात करते हैं। और इसी को तो कहते हैं कि कुछ भी कहना हो ना, कुछ भी करना हो तो ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं, कभी कभी दिल का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया गाना सुना है। इसके बाद हम लेंगे लास्ट कॉलर को और सुनेंगे उसकी भी दिल की बात। तो मिलाइए कॉल और देखते हैं कौन बनेगा हमारा लास्ट कॉलर, लकी कॉलर, जो इस शो के एंडिंग में हमारे साथ रहेगा। मैंने जो अभी आपसे पूछा था इस खुदा गवाह के सॉन्ग के बारे में, कि इससे पहले मैंने छोटा सा गाना प्ले किया था, वो भी खुदा गवाह का था, और वो सिंगर कौन है, आप में से किसी ने मैसेज किया है और मैंने ये पूछा था कि कौन है उसका नाम बताइएगा। मैसेज आया है उनका, हिमेश रेशमिया। नहीं नहीं नहीं, वो हिमेश रेशमिया नहीं है, वो आजकल छाए हुए हैं और जहाँ जहाँ शो करते हैं ना लाइव शो, तो समझिए कि स्टेडियम के बाहर तक भीड़ होती है। तो थोड़ा सा और गैस करिए और बताइए कौन है वो सिंगर। चलिए तब तक ये गाना करते हैं प्ले और मिलते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।
2: बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ख्वाहिशों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, पर सपना एक ही काफ़ी होता है जो ज़िंदगी की पहचान बन जाए। तो कहते हैं ना, ख्वाहिशें और सपने दोनों को ही जीवित रखना चाहिए। जब तक आप हैं, जब तक ये सब हैं, तब तक ही आप हैं। हमारे पास मैसेज आया है, हमारे एक फ्रेंड हैं आकाश चौधरी जी का, कहते हैं आप अरमान ना होंगे तो ख्वाहिशें कौन करेगा, और ख्वाहिशें ना होंगी तो अखिल जी को FM पे फरमाइश कौन करेगा। क्या बात कही है आपने आकाश चौधरी जी, बिल्कुल सटीक बात कही। जब तक ख्वाहिशें नहीं होंगी तब तक कैसे कोई फरमाइश कर देगा। आपका रात का कार वाला मित्र आकाश चौधरी, बिल्कुल सही कहा, कार वाले मित्र ही चाहिए होते हैं जो इस समय कार में कहीं भी घूमते हुए मिल जाए और कहें कि चलो जी आज एक राइड फिर से हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए कहते हैं, आज हमारा जो है ना कोटा वो हो गया है पूरा। और पहली का जो जवाब था ना, इतने सारे दोस्तों ने दिया है कि सच में अच्छा लगा कि सबको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जितना बांटो उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो ज्ञान और प्यार दोनों जितना बांटोगे ना दोस्त उतना ही बढ़ता रहेगा। हमारे पास एक मैसेज अमन जी का आया है और कहते हैं अखिल सर मेरे सपने जो है ना एक अच्छा इंसान बनने का है। तो अमन जी ये क्या बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया। सबसे बड़ा सपना वही होता है जो दुनिया में एक बेहतर कहते हैं ना इंसानियत की पेशकश करे। तो बेहतर बनिए साहब, अच्छे इंसान बनिए और वो करिए जो कहते हैं आपके दिल से निकल रही आवाज़। जितना आप अपने दिल की बात सुनेंगे और दिमाग को साथ में लेके चलेंगे उतना ही बेहतर इंसान बनेंगे। इधर उधर की बातों को सुन के जो लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे काम के लायक है उसे ही रखें, जो भी चीज़ अटपटी लगे ना उसे वहीं का वहीं ख़त्म कर दे। एक फाइनल शायरी जाने से पहले, ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, सपने ज़िंदगी बदल देते हैं। ख्वाहिशें दिल को खुश करती हैं, सपना इंसान को कामयाब बना देता है। आज याद रखिए कि ख्वाहिश जो है ना दिल की आवाज़ होती है और सपना आपकी ज़िंदगी का मकसद। ख्वाहिशें पूरी हों या ना हों लेकिन सपना कभी मत छोड़िएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल और फिर मिलेंगे इसी वक्त मंडे को। मंडे टू फ्राइडे ठीक 9 से 10 होती हैं दिल से दिल की बात, जहाँ कहते हैं ना थोड़ी बहुत तो मुस्कुराहट चलनी चाहिए ना चेहरे पे। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077